आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सुप्रभात आगरा।

0: अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर सवेरे के 6 बजे ही अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सवेरे के 6:05 और 15 सेकेंड हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा लोकप्रिय रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

साईं तेरी याद में मिलता सुख अपार, मन में अभिलाषा यही आवे तेरे द्वार।

हे दीन बंधु दीनानाथ, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं, हमारे अंतर्यामी हैं। आप दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। आपकी शरण में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। हम आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं प्रभु, आपकी जय जयकार हो।

0: द्वार तुम्हारे आए हैं, अखियां प्यासी जन्म जन्म की हाथ पसारे आए हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने पंडित तेजपाल सिंह और सुरेंद्र पाल सिंह, मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में भक्ति रचनाएं सुनी। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आइए सुनते हैं संत दादू के विचार।
1: इस भौतिक संसार में आनंद सभी का अंतिम काम है। आनंद की अमृत धारा को प्राप्त करने के लिए ही हमारे समस्त क्रियाकलाप होते हैं, किंतु लाख चेष्टा के बावजूद भी उस अमृत तत्व की एक बूंद भी हमारे मुख में नहीं पड़ती। इसका क्या कारण है? यदि हम इस तथ्य पर विचार करें तो निष्कर्ष अमृतत्व की सिद्धि में सतत व्याघात उपस्थित करता है। अतः मन ही हमारा प्रबल शत्रु है, ये इंद्रियों का सम्राट है, जिसे वश में करना ही समस्त प्रकार की साधनाओं का लक्ष्य है। मन उस मतवाले मेडल की तरह है जो पूर्णतः अनियंत्रित होकर महावत के अंकुश की चिंता नहीं करता। मन की शक्ति का अनुमान भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि संख्यातीत साधक भी उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे, किंतु कितने साधकों ने हठी और पागल मन को अंकुश देकर अंतर्मुखी बनाया। मन मरकर भी जीवित हो उठता है। समुद्र में जितनी लहरें हैं, मन में उतने मनोरथ भी पलते रहते हैं। जैसे जैसे हम इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे, इच्छाएं भी सुरसा की भांति अपना मुख प्रसार करती जाएंगी। अतः इच्छाओं का नियमन आनंद की उपलब्धि के लिए आवश्यक है। इंद्रियां अनेक हैं और सभी अपने अपने रस की प्राप्ति के लिए लालायित रहती हैं। हमें समस्त प्रकार के विषय विकारों से ऊपर उठना होगा। जब तक वशियों की परिसमाप्ति नहीं होगी, तब तक आत्यंतिक कल्याण की उपलब्धि कल्पना मात्र है। वास्तव में सच्चा शूर वही है जो मन की प्रखर धारा को ऊर्ध्वमुखी बनाकर अपने परम आराध्य के चरणों में उसे केंद्रित कर देता है। मन का सहज रूप तब स्पष्ट हो जाता है जब द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। ये द्वैत भाव ही माया है जिसके मोह जाल में मूर्ख मन उलझ जाता है। माया के स्थूल और सूक्ष्म दो रूप होते हैं। यदि मन वैराग्य भाव की भूमिका में कंचन और कामिनी जैसी स्थूल माया का परित्याग कर एकांतिक साधना की तैयारी के लिए एकांत वन प्रांत में चला भी जाता है, तब भी सूक्ष्म माया उसका साथ नहीं छोड़ती। मान सम्मान प्राप्ति की आकांक्षा बनी ही रहती है। इस छीनी माया का निरसन अति कठिन है और जब तक साधक इससे ऊपर नहीं उठता, तब तक उसे संतत्व की सिद्धि नहीं होती। निर्विकारी और उठस्थ मन को सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती। मन की चंचलता समाप्त करने के लिए कोई आधार तो चाहिए ही। इसके लिए परमात्मा का स्मरण ही दृढ़ आधार है। जब मन पूर्णतः राममय हो जाता है, तब उसकी समस्त चंचलता तिरोहित हो जाती है। जैसे पानी में नमक घुलकर एकाकार हो जाता है, जैसे जल में दूध मिलकर अभिन्न हो जाता है, और जैसे अग्नि के रूप और गुण को तप्त लोहखंड ग्रहण कर लेता है, वैसे ही मन के नियंत्रित हो जाने पर आत्मा और परमात्मा में अविच्छिन्न संबंध स्थापित हो जाता है।
0: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संत दादू के विचार। कार्यक्रम का प्रसारण

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। छह बजकर 30 मिनट और 30 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी आगरा से अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट्स और शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर्स। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल, इसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे साहित्यिक पत्रिका सर्जना का अंक, इसमें आज वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा संस्कृति का सजीव दस्तावेज है रंगमंच। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुशील कुमार सक्सेना। इसी कार्यक्रम में कहानी प्रसारित की जाएगी, शीर्षक होगा कायाकल्प, कहानीकार होंगे श्री अरुण डंक। और कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे काव्य पाठ, कवि होंगे श्री रज्जाक अहमद।

कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर एमसी अग्रवाल की वार्ता। विषय रहेगा कंपोस्ट की उपयोगिता। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी, आधुनिक समय में आयुर्वेद का महत्व। वार्ताकार होंगे डॉक्टर यशपाल सिंह परमार। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास हम प्रसारित करेंगे 7:31 पर। पूर्वाह्न 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज फिल्म निर्माता निर्देशक महबूब खान पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हम प्रसारित करेंगे 11:30 पर। इस कार्यक्रम में आज के विषय हैं स्वस्थ तन मन तो मुस्कुराए जीवन। एक और विषय रहेगा अन्नदान महादान। और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे मासिक धर्म स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता आवश्यक विषय पर। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें आज हमारी बहनें सुनेंगी चर्चा स्वस्थ नारी से मजबूत परिवार। ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में। इसी कार्यक्रम में सुश्री कविता चौधरी की वार्ता प्रसारित की जाएगी महिलाओं के लिए बचत निवेश का गणित। और क्रम रहेगा कुछ तुम कहो कुछ हम। आज गुरुवार है। आज अपराह्न 3:30 पर कार्यक्रम होगा रेडियो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में आज भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और प्राकृतिक उपचार। इस विषय पर डॉक्टर रामवीर सिंह से भेंट करेंगे अनिंद्र सिंह। युवाणी कार्यक्रम में 5:30 हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा महिला स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता। क्रम रहेगा आज का सवाल। इसी कार्यक्रम में सुश्री हिबा जाफरी की वार्ता प्रसारित की जाएगी स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में बाधक है कुपोषण। क्रम रहेगा क्वेस्ट वर्ल्ड हेल्थ प्लस और टिप ऑफ द डे। ग्रामीण लोक कार्यक्रम में 6:00

का विषय रहेगा ईद उल अजहा। चर्चा का दूसरा विषय रहेगा महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस। इसके अलावा विश्व भूख दिवस और विश्व महावारी स्वच्छता दिवस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ग्रामीणों कार्यक्रम में किसान भाई एक वार्ता भी सुनेंगे, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। वार्ताकार होंगे श्रीमती नीरज सिंह। मंडी भाव बताए जाएंगे, मौसम की जानकारी दी जाएगी और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे हमारे श्रमिक श्रोता सुनेंगे चर्चा। विषय रहेगा श्रमिक और सेहत। क्रम रहेगा देश दुनिया, आज का प्रश्न ज्ञान सागर और सेहत से संबंधित कुछ टिप्स दिए जाएंगे। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर डॉक्टर अनुपम सारस्वत की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा हम, हमारा भोजन और शून्य भूख। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश शाम 7:31 पर। इस कार्यक्रम में आज बकरीद के अवसर पर भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा बकरीद का त्योहार और कुर्बानी के मायने। वार्ताकार होंगे जनाब सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी और आपसे भेंट करेंगे अनिंद्र सिंह। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिव जी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेशी। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर एमसी अग्रवाल की वार्ता। विषय है कंपोस्ट की उपयोगिता।
1: पौधों का भोजन 20 सरल पदार्थों से बना होता है, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की पूर्ति जल एवं वायु से होती है, तथा शेष 17 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, सोडियम, कोबाल्ट आदि के लिए पौधे भूमि पर निर्भर करते हैं। विभिन्न फसलों हेतु इन तत्वों की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक तत्व पौधों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दूसरे तत्व। जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अधिक उपजदायी फसलों के चलन तथा फसल सघनता वृद्धि के कारण इन तत्वों का और अधिक मात्रा में भूमि से दोहन हो रहा है। इससे भूमि में उनकी मात्रा में लगातार कमी होती जाती है। जीवांश खादों जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जिनमें सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रयोग की जा रही है, तथा खेती रसायनिक खादों, उर्वरकों, जिनमें एक या दो तत्व ही पाए जाते हैं, पर आधारित है। फलस्वरूप अन्य पोषक तत्व की भूमि में कमी होती जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि इन तत्वों के आपसी संतुलन बिगड़ जाता है। इस प्रकार भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तथा मनुष्य की तरह मिट्टी भी बीमार हो जाती है, जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित होती है। पुनः इन उर्वरकों से किसी तत्व की अधिक मात्रा होने पर दूसरे तत्व की उपलब्धता कम हो जाती है, जिसके कारण भी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए डीएपी अधिक मात्रा में प्रयोग करने से जस्ता की कमी हो जाती है, जिससे उत्पादन में जस्ता की कमी के कारण गिरावट आती है। यदि हम भूमि परीक्षण के आंकड़ों का विवेचन करें, उनसे स्पष्ट है कि यहाँ के भूमियों में जीवांश का स्तर 0.02 से लेकर 0.04% के ही बीच है। एक स्वस्थ मिट्टी में जीवांश

0: की मात्रा 0.5% से अधिक होनी चाहिए। यहाँ की भूमियों में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की पहले से ही कमी थी, परंतु पोटेशियम, जो कि यहाँ की भूमियों में पर्याप्त मात्रा में था, की मात्रा में भी लगातार कमी आ रही है। भूमियों में इसका स्तर उच्च से मध्यम तक आ पहुँचा है। इसी प्रकार धान गेहूं के खेतों में जस्ता, तिलहन के खेतों में गंधक तथा कहीं कहीं लोहा की भी कमी आ रही है। इस प्रकार उर्वरक आधारित कृषि में अन्य तत्वों के स्तर में कमी आ रही है, जो पोषक तत्व असंतुलन को बढ़ावा दे रहे हैं। पुनः यदि जीवांश खाद की तरफ दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होगा कि अधिकांश गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में हो रहा है तथा मात्र वर्षा के दिनों में ही गोबर खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रत्येक ग्रामीण खेत में पशुओं का अवशेष चारा, फार्म तथा घर के अवशेष पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनकी कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। इस प्रकार कंपोस्ट खाद की पोषक तत्वों की पूर्ति तथा पोषक तत्व असंतुलन दूर करने का महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। आज के समय कंपोस्ट की क्या उपयोगिता है? उर्वरकों के लगातार प्रयोग से भूमि की जल रोकने की क्षमता में कमी आती है। कंपोस्ट खाद के प्रयोग से जमीन की जल रोकने की क्षमता बढ़ती है। पौधों की वृद्धि जड़ क्षेत्र में उपलब्ध नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार अधिक उत्पादन होना संभव होगा। कंपोस्ट खाद के द्वारा मिट्टी में दानेदार कड़ी रचना विकसित होती है। ऐसी भूमियों में जल तथा वायु का उचित संचार होने से पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। कंपोस्ट खाद के प्रयोग से भूमि में जीवधारियों की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, विशेषकर केंचुएं, जो मिट्टी में कई गुना नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कैल्शियम आदि तत्वों की वृद्धि करते हैं। कंपोस्ट खाद में सभी तत्वों की पूर्ति होने से उनका पारस्परिक असंतुलन दूर होगा तथा मिट्टी की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा में भी वृद्धि होगी। उर्वरकों में उपलब्ध नाइट्रेट तथा फास्फेट जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करते हैं। कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन तथा फास्फेट धीरे धीरे प्राप्त होती है, अतः किसी समय भूमि में इनकी अधिक घुलनशील मात्रा न होने के कारण प्रदूषण में भी गिरावट आएगी। उर्वरकों के लगातार उपयोग से मृदा प्रतिक्रिया पीएच मान क्षारता की ओर बढ़ रहा है। जीवांशित कंपोस्ट खाद में पीएच में वृद्धि को रोकने का गुण होता है, जिसके कारण पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता अप्रभावित रहती है। उर्वरकों के लगातार उपयोग से भूमि की भौतिक दशा खराब होती है। कंपोस्ट खाद भूमि की भौतिक दशा को सुधारती है। कंपोस्ट पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के संरक्षण में सहायक है। कंपोस्ट खाद में पोषक तत्व धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होते हैं। किसी समय पोषक तत्वों के अधिक मात्रा न होने से रिसाव द्वारा उनकी कम हानि होती है। वर्तमान समय में अवशेष पदार्थों का निस्तारण प्रमुख समस्या है। कंपोस्ट खाद में अवशेष पदार्थों के प्रयोग होने से इनके निस्तारण में भी की भी समस्या नहीं रहती है। अब हम कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इस विधि के अंतर्गत खरपतवार, भूसा, फसलों, डंठल, चारे आदि के अवशेष से कंपोस्ट खाद को तैयार कर सकते हैं। फार्म के अवशेष पदार्थों से कंपोस्ट बनाने के लिए 15 से 20 फीट लंबा, 5 से 6 फीट चौड़ा तथा 3 से 3.5 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। फार्म के एक अवशेष पदार्थ को भलीभांति मिलाकर इसकी 1 फीट मोटी परत बिछाई जाती है। इसके ऊपर गोबर तथा पानी का घोल या मिट्टी तथा पानी का घोल छिड़क कर नम बनाया जाता है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एमसी अग्रवाल की वार्ता। विषय था कंपोस्ट की उपयोगिता। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 6:55 हुए हैं। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा।

0: और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 7:10 हुए हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर यशपाल सिंह परमार की लघु वार्ता। विषय है आधुनिक समय में आयुर्वेद का महत्व।
1: इतिहास गवाह है कि मानव जीवन के स्वास्थ्य की चिंता की सृष्टि के समय से ही आदि देवों द्वारा की जा रही है। समय परिवर्तन के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व में वृद्धि हुई और विभिन्न देशों में विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का उदय विश्व के विभिन्न देशों में हुआ। प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों में एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी, नेचुरोपैथ, चीनी, तिब्बती एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। इनमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों, विशेषकर सबसे अधिक प्रचलित एलोपैथ, केवल लक्षणों के आधार पर रोग की चिकित्सा करती है, किंतु आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा के साथ साथ मनुष्यों के आहार विहार, रहन सहन एवं विभिन्न चर्याओं जैसे दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या आदि का अनुसरण करने का निर्देश भी देती है। रोगी की चिकित्सा एवं स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य का संरक्षण आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। प्रचलित आधुनिक चिकित्सा पद्धति की शीघ्र लाभकारी औषधियाँ, खासकर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग चिकित्सकों द्वारा अंधाधुंध किया जा रहा है। ऐसा देखा जाता है कि रोगियों को एक ही रोग के लिए एक साथ बहुत सी एंटीबायोटिक्स एवं अन्य औषधियों का सेवन कराया जाता है। इसे MDT या मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। सिद्धांततः इस थेरेपी से रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं का नाश होता है। इसके दूसरे पक्ष को देखें तो अनुसंधानों से यह पता है कि उक्त दवाएं रोग के जीवाणुओं के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करती हैं, तथा एक रोग की दवा लेने से किसी अन्य रोग का उद्भव हो जाता है। आयुर्वेद रोग की प्रगति, देश, काल, बल, ऋतु आदि का ध्यान रखकर रोगी की चिकित्सा करता है। उसके बड़े हुए दोषों को साम्यावस्था में लाता है और शरीर के दूषित मलों को शरीर से बाहर निकालता है। धातुओं का पोषण करता है जिसके फलस्वरूप रोग समूल नष्ट हो जाता है। साथ ही शरीर की आंतरिक शक्ति का विकास होता है। आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धांत पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इसके अनुसार समदोष, समाग्निश्चय, समधात्मल क्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय, मन स्वस्थम इदेते, अर्थात जिसके सत्व, रज, तम आदि मानसिक एवं वात, पित्त, कफ आदि शारीरिक दोष सभी अग्नियां, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एवं मल का निष्कर्षण की सभी क्रियाएं सम एवं सुचारू हों, तथा जिसकी आत्मा, इंद्रिय एवं मन प्रसन्न हों, वह स्वस्थ है। पाश्चात्य दोषों के लोग एलोपैथ चिकित्सा पद्धति की औषधियों के दुष्प्रभावों के कारण निरापद चिकित्सा पद्धतियों को पसंद कर रहे हैं और उन्हें जानने की तीव्र जिज्ञासा रखते हैं। इसी कारण विश्व के विभिन्न देशों ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को न केवल मान्यता दी है बल्कि अपने यहाँ आयुर्वेद महाविद्यालय खोलकर विधिवत अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया है। इधर हम अपनी ही पद्धति आयुर्वेद को गौड़ मानकर अन्य पैथियों की ओर अग्रसर हैं। हमारे आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के शिक्षकों, छात्रों एवं चिकित्सकों का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वे तन, मन एवं धन से समर्पित होकर अपने ही देश की चिकित्सा पद्धति को अपनाएं एवं इसका लाभ जन जन तक पहुंचाएं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि हल्दी एड्स के वायरस को मारने में सहायक है। सदाबहार के पौधे से कैंसर की विनक्रिस्टीन एवं ब्लास्टीन नाम की दवा बनाई जाती है। सदाबहार तो TNT जैसे विस्फोटक एवं उसके दुष्परिणामों को समाप्त करने में सहायक हो सकता है। अमेरिका में इसकी खोज चल रही है। आज भारतवर्ष सहित पूरे विश्व के वैज्ञानिक आयुर्वेदिक औषधियों पर शोध में सक्रिय हैं। हमारा आयुर्वेद शास्त्र सर्वविदित, सुविस्तृत एवं शाश्वत है। अंत में हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद निरापद, पूर्ण वैज्ञानिक, शाश्वत एवं सरल चिकित्सा पद्धति है। हमें सही रहते विदेशों से आयात होने से पूर्व अपने प्रयासों को तेज करना होगा, जिसके फलस्वरूप मानव संपूर्ण स्वास्थ्य अर्जन कर एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सके।
0: आधुनिक समय में आयुर्वेद का महत्व। अभी आप ये लघु वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर यशपाल सिंह परमार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं देशभक्ति परक गीत। 7:18 हुए हैं। देशभक्ति परक गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें।

0: मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने की दी सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा एसआईआर आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वो भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि कल से लू से राहत की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से

प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। श्री योगी ने आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जून माह तक पूरा करने का निर्देश दिया है।

0: एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है।
1: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है SIR कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम ₹30 होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह UP रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रदेश भर में आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई की शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बांदा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक PDS योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने के लिए सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा SIR आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा लोकप्रिय रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। इसे आप मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुनते हैं। 7:32:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास के सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप? गर्मी बहुत है और गर्मी होने के कारण दिन भी बड़े होते हैं। इन दिनों में मई और जून का महीना है तो सूरज बहुत जल्दी निकल आते हैं और हमारी आंख भी बहुत जल्दी खुल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे भी घर पर रहते हैं, तो जल्दी आंख खुलने से हमें यह फायदा हो सकता है कि हम सुबह टहलने चले जाएं, क्योंकि सुबह का जो तापमान भी रहता है काफ़ी कम रहता है, दिन में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और टहलने की तो बात छोड़िए, घर से निकलना भी दूभर हो जाता है। और ऐसे में जब हम सुबह टहल कर आते हैं, योग अभ्यास करके आते हैं, तो आते ही पानी पी लेते हैं, तो खाली पेट पानी से थोड़ा सा बचिए, बल्कि बेहतर हो कि एक दो घूंट पानी पीने के बाद में और कुछ नाश्ता वगैरह या कुछ हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ खाने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खाना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और खाने के बिना तो शायद कोई नहीं रह सकता। जैसे पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसी तरह से खाद्य पदार्थ भी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, यूं कहें कि प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर खाद्य पदार्थ ना हो तो आप सोचिए कि हम कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं और किस तरह से हम अपने कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो खाद्य पदार्थों से ही मिलती है। अभी पिछले दिनों हम कहीं बाहर थे और हम देख रहे थे अपने कमरे से, रेलवे स्टेशन के पास हमारा एक कमरा था और शाम का समय था, तो कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं या मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे ही परिवार के कुछ लोग जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, लगभग 3-4 बच्चे, और जिनकी उम्र रही होगी 2-3 साल से लेकर 5-6-7 और 10 साल तक के बच्चे भी थे, उसमें युवा भी थे, बुजुर्ग थे, सभी तरह के उस लोग थे। 7-8 लोगों का एक छोटा सा परिवार था और वहाँ रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ के नीचे उन्होंने 2-3 ईंटें रख कर और थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहाँ अपने खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू की। बच्चे आसपास खेलते रहे, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और जो युवा लोग थे जिसमें महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, वो अपना खाना बनाने में लगे हुए थे। हम ये देख रहे थे कि रहन सहन उनका कैसा भी हो, एक बार उनके तन पर कपड़े हों या ना हों, उनके पास सोने की जगह हो या ना हो,

सर पर छत हो या ना हो, लेकिन खाने के लिए भोजन अवश्य होना चाहिए। और वो भोजन किस तरह से उपलब्ध होता है ये तो जो व्यक्ति खाता है या व्यवस्था करता है वही जानता है, लेकिन उन लोगों को देखकर हमको ये लगा कि वो किसी भी तरह से भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि युवा लोग थे, वो चाहे तो कुछ काम भी कर सकते हैं, लेकिन यही उनका काम है, भीख मांगना ही उनका कार्य है। और जब वो इसी तरह से जीवन यापन करते हैं तो अगर हम उनको ये कहें कि नहीं आप कोई काम कर लीजिए तो हो सकता है ना भी करें, लेकिन कुल मिलाकर किसी तरह से भोजन की व्यवस्था कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह से कर ही लेता है। संकट तब आता है जब किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तब खाद्य संकट अपने चरम पर होता है, या यूं कहें कि एक तरह से जब उपलब्धता नहीं होती है तो भुखमरी पैदा हो जाती है, यानी हम भूख से परेशान हो जाते हैं। और जिस क्षेत्र में खाद्य संकट होता है वहां के जो लोग रहने वाले हैं, फिर खाने पीने की जो भी वस्तुएं उपलब्ध हो सकती है किसी भी तरह से उन्हीं से जीवन यापन करते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जिस तरह से हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिन खाद्य पदार्थों के सहारे हम गुजारा कर रहे हैं, वो कितने पौष्टिक हैं, कितनी पोषणता उनके भीतर है जो हमारे शरीर को सही तरह से ऊर्जा दे पाए। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कहने का तात्पर्य यह है कि पर्याप्त भोजन अगर उपलब्ध नहीं है तो एक तरह से ये भुखमरी ही कहलाती है। हमारे आसपास खाने के लिए कुछ तो है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो क्या नहीं हो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब हम यूं समझें कि आपके घर के आसपास कोई किराना स्टोर या बाजार नहीं है, या फिर वहां तक जाने के लिए कोई परिवहन की सुविधा नहीं है। कई बार तो ऐसी जगह होती हैं जहां हम रहते हैं और वहां भोजन या किसी तरह के आपूर्ति की संभावना नहीं होती है। इसका मतलब ये भी है कि आप अपना भोजन खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ऐसा करने के लिए जमीन या संसाधन होने चाहिए। अगर वो नहीं है तब भी आपको परेशानी हो सकती है। तो जिन क्षेत्रों में भोजन की भारी कमी है वहां रहने वाले कई लोगों के लिए पानी की भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पौष्टिक भोजन और सुरक्षित पानी दोनों की कमी बच्चों को या परिवारों को, चाहे कोई भी हो, उनको बीमार कर देता है और कुपोषित कर देता है। अब जब आपको खाद्य संकट की बुनियादी समझ हो जाए तो आप भूख से निपटने के लिए कोई न कोई इंतजाम कर ही लेते हैं। खाद्य पदार्थों की कमी का मतलब है किसी क्षेत्र में पर्याप्त भोजन का ना होना, और खाद्य सुरक्षा का मतलब है भोजन की उपलब्धता तो है लेकिन सीमित है और अनिश्चित है, भले ही वो उपलब्ध हो। खाद्य असुरक्षा का अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके पास केवल ऐसे विकल्प हों जिनके स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषण ना हो। अगर हम भूख की बात करें तो भूख सिर्फ पेट की गुड़गुड़ाहट से कहीं अधिक है। भूख का मतलब है पेट का खाली होना और उसे भरने के लिए भोजन का न होना, या फिर लगातार भोजन से वंचित रहने की स्थिति भी भूख कहलाती है, और ये हमारे लिए एक कुपोषण का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। जब किसी व्यक्ति को अपने शरीर के पोषण और विकास के लिए आवश्यक भोजन नहीं मिलता है तो फिर हम बीमार हो जाते हैं और अपने जीवन यापन के लिए बहुत ही असंभव परिस्थितियां पैदा कर लेते हैं। अब यह है कि हम भूख से कैसे निपटा जाए, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि हम ऐसे क्षेत्रों में जहां पर्याप्त भोजन नहीं है, और हम ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, या हम इतने सक्षम हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम किसी भी तरह से उन लोगों तक जो भूख से परेशान है या जहां भोजन उपलब्ध नहीं है वहां किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत मदद करके हम भोजन उपलब्ध करा दें, क्योंकि भोजन की जो उपलब्धता जिसका न होना हर जगह नहीं होता है,

लेकिन जहां नहीं है वहां के लोगों से पूछिए कि कितनी परेशानी होती है। तो अगर आप सक्षम हैं और आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी की भूख मिटा सकते हैं, तो आप ये प्रयास जरूर कीजिए, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई भी जीव हो। जीव से हमारा मतलब यह है कि जो हमारे आसपास के जो पशु हैं, जानवर हैं, जिनमें कुत्ते भी शामिल हैं, बिल्ली शामिल हैं, या और भी हमारे गाय, भैंस, बकरी जो भी हैं, उनको भी खाने की जरूरत होती है। तो किसी न किसी तरह से हम सबको मिलकर एक साथ इस पर काम करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हम भुखमरी से कैसे निजात पा सकते हैं। खुद अगर हम सक्षम हैं तो दूसरों को किस तरह से इस भुखमरी से मुक्त कर सकते हैं, एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज विश्व भूख दिवस है, इसलिए हमने थोड़ी सी आपसे ये चर्चा कर ली है, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए, बहुत कुछ कहने के लिए है, बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन सीमित समय में, सीमित संसाधनों में हम अपने स्तर पर, स्वयं के स्तर पर कितना क्या अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, तो हमें जरूर विचार करना चाहिए।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद आसपास की सूचनाएं खास आपके लिए।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़।

0: और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसें होंगी उपलब्ध। परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक। मिश्रित आबादी में बकरीद पर रहेगी ड्रोन से पुलिस की नजर। प्रदेश में बनेंगे आवासीय बालिका विद्यालय और दहतोरा में बनेगा श्रमजीवी छात्रावास। आसपास की इन सूचनाओं के साथ मैं विशेष कुमार शर्मा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले कनेक्टिविटी और निवेश परियोजनाओं को रफ्तार देने की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून से पहले जेवर एयरपोर्ट पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करने और शुरुआती चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर के 5 लाख से अधिक सार्वजनिक वाहनों की भी अब निगरानी होगी। निजी बसों, टैक्सी और नेशनल परमिट वाले ट्रकों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगेगी। परिवहन विभाग ने 1 जनवरी 2019 से पहले पंजीकृत वाहन स्वामियों को डिवाइस लगवाने का आदेश दिया है। 2019 के बाद के वाहनों में VLTD एक्टिवेट करना होगा। डिवाइस न लगवाने पर वाहनों को परमिट नहीं मिलेगा और न ही फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है। जनगणना कार्य और शिक्षक समायोजन प्रक्रिया के चलते बेसिक शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे वर्षों से गृह जिले का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षक और शिक्षिकाओं में निराशा बढ़ गई है। सरकारी आदेश के अनुसार जनगणना का पहला चरण 20 जून से 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में होगा। जनगणना कार्य पूरा होने यानी अगले वर्ष 31 मार्च तक स्थानांतरण न करने के निर्देश हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षक 5 जुलाई तक वेबसाइट www.awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पुरस्कार के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। श्रेणी 1 में उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और श्रेणी 2 में पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया स्वनामांकन आधारित है। इसमें पूर्व या वर्तमान कुलपति, निदेशक, प्राचार्य और शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। बकरीद पर कमिश्नरेट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का पूरा जोन इस बात पर है कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी, सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और प्रमुख मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। मिश्रित आबादी क्षेत्रों में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। भीषण गर्मी आगरा में सितम ढा रही है। बुधवार को सुबह से शाम तक आसमान से आग बरसी तेज धूप और लू में शहरवासियों के साथ ही पशु पक्षी भी व्याकुल नजर आए। शहर में बुधवार को सुबह से तेज धूप निकली। 8 बजे से ही धूप आंखों को चुभने लगी। गर्म हवा चलती रही। अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर गुरुवार रात से गर्मी से राहत मिल सकती है। गुरुवार को दिन में लू चलेगी और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण 15, 16 और 17 जून को होगा। दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से अंकों की श्रेष्ठता और आरक्षण नीति के आधार पर श्रेणीवार पदों के अनुरूप लगभग 2.7 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा।

0: उत्तर प्रदेश में 80 आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। यहां कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई छात्राओं को कराई जाएगी। ऐसे ब्लॉक जहां पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उपलब्ध नहीं है, वहां पर इनका निर्माण किया जाएगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। कानपुर नगर और औरैया में भी एक भी केजीबीवी नहीं है। ऐसे में यहां पर सभी ब्लॉक में आवासीय बालिका विद्यालय का निर्माण होगा। कानपुर देहात में 9, फिरोजाबाद में 7, बागपत में 4 और इटावा में करीब 3 आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र और अन्य शहरों की कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए धेतोरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। इन्हें किफायती दरों पर छात्रावास दिया जाएगा। धेतोरा में 5 मंजिला छात्रावास को मंजूरी मिली है। यह 5 मंजिला भवन 500 बेड की क्षमता वाला होगा। आधुनिक कॉम्प्लेक्स में मॉड्यूलर किचन, डाइनिंग एरिया, लाइब्रेरी, 3 मेडिकल रूम, मनोरंजन कक्ष, योगा सेंटर, स्पा और ब्यूटी पार्लर जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार निकिता पुत्री जितेंद्र कुमार निवासी पवन विहार टेढ़ी बगिया थाना ट्रांसमुना जनपद आगरा। निकिता दिनांक 26 अप्रैल 2026 से दोपहर 1 बजे से नंगला रामबल से लापता है। निकिता की उम्र 24 वर्ष है। कद 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ। शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरा सामान्य है। घटना के समय सफेद रंग का शलवार सूट और चप्पलें पहनी हुई थी। निकिता के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी थाना ट्रांसयमुना जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार तन्नु निवासी शिवपुरी बल्केश्वर थाना कमलानगर जनपद आगरा। तन्नु दिनांक 12 फरवरी 2026 सुबह 11 बजे से अपने घर से लापता है। तन्नु की उम्र 17 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ है। शरीर की बनावट सामान्य, चेहरा गोल है। तन्नु के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी थाना बल्केश्वर कमलानगर आगरा को सूचित किया जा सकता है। एक अन्य सूचना के अनुसार मनीषा श्रीवास्तव निवासी के नगर थाना सिकंदरा जनपद आगरा। मनीषा श्रीवास्तव दिनांक 28 अप्रैल 2026 से अपने घर से लापता है। मनीषा श्रीवास्तव की उम्र 65 वर्ष है। कद 5 फीट 2 इंच, शरीर सामान्य और बाल लाल और बड़े हैं। मनीषा श्रीवास्तव के बारे में कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी थाना सिकंदरा जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास कार्यक्रम समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 8 बजे हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर

0: राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का

0: जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा फेयर प्राइस शॉप्स है, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराव और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल रेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू, हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के सात अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन-उल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले दो दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार जोशो-खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे रंगोली फिल्म का सदाबहार गीत। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हसरत जयपुरी के शब्द हैं, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है बॉयफ्रेंड, आवाज मोहम्मद रफी की। करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, कि एक ही निगाह कि बस खाक हो गए।

बॉयफ्रेंड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, तर्ज राजेश रोशन की। फिल्म का नाम है ये है जिंदगी, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये था आनंद बख्शी का लिखा गीत, तर्ज बनाई थी राजेश रोशन ने, फिल्म का नाम था ये है जिंदगी। छोटी सी मुलाकात, इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार

शंकर जय किशन। खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, क्या मिले आप जो लोगों के मिलाने से मिले।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे गाया था मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। किशोर कुमार की आवाज में दुश्मन फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता।

गीतांजलि कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, विपिन ससदेव और साथियों के स्वर में सावन कुमार का लिखा हुआ गीत। तर्ज बनाई है महेश किशोर ने, फिल्म का नाम है सनम बेवफा। तज दिया था कल जिनको हमने तेरी चाहत में, आज उनसे मजबूरन ताजा आशनाई की।

सनम बेवफा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, विपिन ससदेवा और साथियों के स्वर में। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
1: प्रदेश सरकार द्वारा गांव के सरकारी स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9000 से बढ़ाकर 17000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा के बाद बागपत में भी उत्साह का माहौल है। बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में प्रत्येक विकास खंड से चयनित एक एक अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित करते हुए चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक ने लाभार्थियों को चेक वितरित करते हुए कहा कि गांव के बच्चों को नई दिशा देने में अनुदेशकों की बड़ी भूमिका है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर अवसर और आधुनिक शिक्षा वातावरण मिले, इसके लिए अब मानदेय बढ़ने से अनुदेशकों का मनोबल और मजबूत होगा, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और स्कूल के वातावरण पर दिखाई देगा। चपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षक और

0: अनुदेशक दोनों अहम कड़ी हैं। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के संबंध में सीडीओ अनिल कुमार ने विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीडीओ ने कहा कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्ध प्राचीन एवं महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की पहचान कर उनकी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का उद्देश्य जिले में उपलब्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं ज्ञानवर्धक पांडुलिपियों का संरक्षण, सूचीकरण एवं दस्तावेजीकरण करना है। फेम इंडिया द्वारा जारी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2026 सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची में देश के 100 उत्कृष्ट जिलाधिकारियों को स्थान दिया गया है। बागपत जनपद के जिलाधिकारी अस्मिता लाल का नाम भी इस सूची में शामिल हुआ है। यह सम्मान उन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है जिन्होंने जमीनी स्तर पर विकास, सुशासन, नवाचार एवं जनहित कार्यों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। डीएम अस्मिता लाल के नेतृत्व में जनपद में विभिन्न विकासात्मक, नवाचार एवं जन कल्याणकारी पहले प्रभारी रूप से संचालित की जा रही हैं। बढ़ती गर्मी एवं हीटवेव की चुनौती को देखते हुए विद्यालयों में कूल रूफिंग पहल लागू किए जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों को गर्मी से राहत प्रदान कराना, सुरक्षित एवं अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संस्थागत क्षमता विकसित करना है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए विद्यालय परिसरों में तापीय आराम सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य, उपस्थिति एवं शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस पहल के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों की कंक्रीट छतों पर सफेद प्रावर्तक कोटिंग, विद्यालय परिसरों में ग्रीन शेड एवं बांस आधारित संरचनाएं, कक्षाओं के आसपास वृक्षारोपण तथा रूफ टॉप सोलर के साथ कूल रूफ तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा। जनपद स्तर पर इस योजना में विशेष प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को दी जाएगी जिससे छोटे बच्चों को भीषण गर्मी तथा हीट वेव के प्रभाव से बेहतर सुरक्षा मिल सके। जनपद में लोक निर्माण विभाग ने छोटी बड़ी सड़कों का कायाकल्प करने के लिए लगभग 677 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है जिसे स्वीकृति के लिए जल्द ही शासन को भेज दिया जाएगा। विधायकों, सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर सड़कों तथा पुलों के निर्माण की यह कार्य योजना तैयार की गई है। इन सड़कों के बनने से लाखों लोगों को गड्ढों से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन सुगम होगा। लोक निर्माण विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सड़कों के निर्माण, मरम्मत तथा पुलों के निर्माण की कार्य योजना तैयार की है। छोटी बड़ी 253 सड़कों का 564 किलोमीटर निर्माण एवं मरम्मत कार्य होगा। इनमें 138 सड़कों का नव निर्माण होगा तथा बाकी की मरम्मत होगी। इनके अलावा 12 सड़कों का चौड़ीकरण होगा। बागपत सहकारी चीनी मिल का 66 साल बाद विस्तारीकरण होने जा रहा है। इसके लिए निविदा मांगी गई है। 3,72,49,00,000 रुपए के बजट का प्रस्ताव सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है। विस्तारीकरण के बाद चीनी मिल की पेराई क्षमता 25 से बढ़कर 50,000 कुंतल प्रतिदिन हो जाएगी। इससे 40,000 किसानों को फायदा मिलेगा।
1: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीतेश श्रीवास्तव का।
2: फतेहपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी और सराहनीय पहल शुरू की है। लगातार घटते भूजल स्तर और अस्तित्व खो रहे तालाबों को बचाने के लिए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने खुद मैदान में उतर के बीते दिनों अभियान की शुरुआत की। एराया ब्लॉक के सिमोरी गांव में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने फावड़ा चलाकर तालाब खुदाई का शुभारंभ किया और लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया। प्रथम चरण में जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और जनपद के कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि जनपद फतेहपुर में एक नई पहल शुरू की गई है जिसको मिशन 300 नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में करीब 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए कब्जा मुक्त कराया जाएगा और तालाब का एक नया स्वरूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आकांक्षा रहती है कि ग्राम समाज की भूमि कब्जा मुक्त हो और उसको जल संचयन के लिए भी इस्तेमाल हो। आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें जल संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। पौराणिक काल में तालाब जल संचयन का काम करते थे, उसमें यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डेवलपमेंट और रेवेन्यू विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि बारिश के पहले प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए सीमांकन कर खुदाई करवाएंगे।
3: आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसमें हमारे जो तालाब हैं जो पौराणिक काल से वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं, वाटर को संचित करते हैं, तो उसमें ये

0: अहम भूमिका निभाएंगे।
1: फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा एक महीने में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 15 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि पुलिस इन अपराधियों पर निगरानी रखे। इसके साथ ही 6 अभियोग गैंगस्टर के तहत दर्ज कराया गया है, जिसमें 24 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले की पूरी एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट को लाइन हाजिर कर दिया है। एक ही आदेश में 15 पुलिस कर्मियों पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसओजी और इंटेलिजेंस विंग में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित टीम की ओर से लगातार कोई प्रभावी इनपुट नहीं दिया जा रहा था, जिससे अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र प्रभावित हो रहा था।
2: पिछले एक माह में अपराध में रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई काफी कुछ कार्रवाई किए हैं, जिसमें से हमने करीब 15 ऐसे अभ्यस्त अपराधी थे जिनकी हमने हिस्ट्रीशीट खोली है। इसके साथ साथ अन्य बड़े बड़े वर्कआउट भी हुए हैं इस समय, और विशेषकर जो महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग किया करते थे या बाकी अन्य चोरियों के जो हमारे नकबजन काफी समय से नकबजनी कर रहे थे शहर के अन्य क्षेत्रों में या तहसीलों में, उन पर भी हमने कार्रवाई करी और इसी तरह से फतेहपुर पुलिस आगे भी कार्रवाई करती रहेगी।
1: फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले की पूरी एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट को लाइन हाजिर कर दिया है। एक ही आदेश में 15 पुलिस कर्मियों पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसओजी और इंटेलिजेंस विंग में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित टीम की ओर से लगातार कोई प्रभावी इनपुट नहीं दिया जा रहा था, जिससे अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र प्रभावित हो रहा था। फतेहपुर जनपद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य स्व निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत खागा स्थित रानी चंद प्रभा महाविद्यालय के प्रांगण में बीते दिनों सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्य मंडल के 4 जनपदों में से 184 जोड़ों का विवाह धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लाभार्थियों के विवाह उनके परंपराओं एवं रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 85,000 की सहायता राशि पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में भुगतान की जाएगी। फतेहपुर जनपद की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात तहसील कार्यालय खाया का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील के बड़े बकायेदारों की फाइलों का निस्तारण एवं रखरखाव सही ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारी से कहा कि समय समय पर नियमित तहसील के सभी पटलों का निरीक्षण करें। तहसीलदार कोर्ट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वादों की फाइलों को देखा और कहा कि धारा 67 के जो भी पुराने वाद हैं उन्हें तत्काल निस्तारण कराएं एवं अन्य वादों का निस्तारण भी साथ समय कराएं। तहसील कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पत्रावलियों के रखरखाव एवं साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: जिले की हलचल में आज आपने सुनी बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
5: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दिन भर की भाग दौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। 9:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा। यह है कार्यक्रम का पहला गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, गीत शैलेंद्र का है, फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

ये दो आवाजें थी मुकेश और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था अनाड़ी। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आइए एक बार फिर सुनते हैं शैलेंद्र के बोल, धुन एक बार फिर शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है सूरज, आवाज शारदा की।

शारदा के स्वर में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की गीत रचना। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम था सूरज। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद की तर्ज है, आवाज मोहम्मद रफी की।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी का गाया हुआ। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। लोफर फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल आप सुन रहे थे। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था लोफर। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं प्रेमचंद की तर्ज पर प्रेम धवन के बोल। फिल्म का नाम है रात के अंधेरे में। आवाज मोहम्मद रफी की।
1: अगर बेवफा तुझको

रात के अंधेरे में, इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे प्रेम धवन ने, धुन बनाई थी प्रेमचंद ने। इसके साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजूषा अब खत्म हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। लोक संगीत इस कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं आशा कटारा। आइए सुनते हैं आशा कटारा के गाए ब्रज लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं आशा कटारा के गाए ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं एक और लोक रचना, कलाकार एक बार फिर आशा कटारा।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशा कटारा के गाए ब्रज लोकगीत। लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर समय मिला लीजिए। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सुरसरिता और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर विशेष कुमार शर्मा। आवाज की दुनिया के दोस्तों को विशेष कुमार शर्मा का नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
1: भली बुरी सबकी सुनी, बहुत सहा अपमान, पढ़े लिखन में

मत मानो। अरे जुल्म भयो नारी ने करते।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे लल्लू राम फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। कार्यक्रम का अगला गीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। सुर से

कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में है। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार उषा खन्ना। फिल्म का नाम है साजन की सहेली।

साजन की सहेली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे गाया था मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित ने। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी उषा खन्ना ने। आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है सुर सरिता और इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा।

खिलौना फिल्म का एक सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

खिलौना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए एक बार फिर सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है राम अवतार, आवाज मोहम्मद अजीज की।

राम अवतार फिल्म का गीत आपने सुना, इसे गाया था मोहम्मद अजीज ने। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर साहिर की गीत रचना। फिल्म का नाम है इज्जत, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी।

नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी से भी निभाया हो। आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में इज्जत फिल्म का गीत। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित राजन साजन मिश्र का ख्याल गायन। प्रस्तुत है आपका गाया राग रामकली। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं ले साहिब को नाम। द्रुत ख्याल की बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं सगरी रैन के जागे। आपके साथ हारमोनियम पर महमूद धौलपुरी और तबले पर ईश्वरलाल मिश्र ने संगत की है। तो आइए सुनते हैं पंडित राजन साजन मिश्र का गाया राग रामकली।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन साजन मिश्र का गाया राग रामकली। आपके साथ हारमोनियम पर संगत की थी महमूद धौलपुरी ने और तबले पर संगत ईश्वर लाल मिश्र की थी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। पूर्वाहन के 11 बजे हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ रेडियो की विशेषता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कभी कभी मैं सोचती हूं कि सिनेमा आखिर है क्या? क्या ये महज 2.5 घंटे का मनोरंजन है या फिर सफेद पर्दे पर रोशनी और साए का कोई तकनीकी खेल? क्या है ये सिनेमा? दरअसल इंसानी जज्बात का वो आईना है जिसमें एक पूरा दौर, एक पूरा मुल्क और उस मुल्क की मिट्टी की खुशबू सांस लेती है। और जब इस आईने को तराशने वाला कोई सच्चा जौहरी मिल जाए तो वो सिनेमा को इतिहास बना देता है। आज हमारी जो ये महफिल है, हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये एक ऐसे ही मसीहा के नाम है जिसने भारतीय सिनेमा की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी आंखों में अंगारे थे मगर दिल में मजलूमों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो जो खुद कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं गया, जिसने कभी कोई किताबी तालीम हासिल नहीं की, लेकिन जब जब वो कैमरे के पीछे खड़ा हुआ तो हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हथौड़े और दराती के निशान से देश का स्वाभिमान जगाने वाले मदर इंडिया के अमर रचनाकार, निर्माता, निर्देशक महबूब खान की। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा। महबूब खान के बारे में इस कार्यक्रम में हम और भी बातें करेंगे, बहुत सारे किस्से और कहानियां आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, महबूब खान की गाथा की शुरुआत किसी चमचमाते हुए स्टूडियो या मखमली सोफे से नहीं होती। इस कहानी का आगाज होता है साल 1907 से। 1907 में गुजरात के नवसारी जिले के एक छोटे से गुमनाम गांव बिलीमोरा से। वहां था एक साधारण सा घर जहां एक लड़का बड़ा हो रहा था। पिता पुलिस में थे, लिहाजा घर का जो मिजाज था वो बेहद कड़क था। सब चाहते थे कि लड़का पढ़ लिख कर कोई अदब की नौकरी करे, लेकिन उस लड़की की रूह में तो कोई और ही बवंडर उठ रहा था। जब भी गांव के मेलों में मूक फिल्में दिखाई जाती, वो लड़का अपनी सुध-बुध खोकर पर्दे को ऐसे ताकता रहता मानो अपनी तकदीर देख रहा हो। और फिर आया वो दिन जब महज 16-17 साल की उम्र में जेब में एक भी पैसा ना होने के बावजूद भी वो लड़का घर से भागा और रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में बिना टिकट के सवार हो गया। दिल में कोई खौफ नहीं था, बस आंखों में एक ही धुन, एक ही जिद सवार थी, बंबई, ख्वाबों की नगरी बंबई पहुंचना था। जब वो लड़का बंबई के भीड़भाड़ वाले स्टेशन पर उतरा तो इस अनजान शहर की रफ्तार ने उसे डराया नहीं। उसने समंदर की लहरों को देखकर मन ही मन कहा था, एक दिन इस शहर को मेरे नाम की आदत हो जाएगी। लेकिन माया नगरी इतनी आसानी से किसे पनाह देती है। शुरुआत हुई फाकों से, फुटपाथ की रातों से और स्टूडियो के बाहर चौकीदारों के धक्कों से। महबूब खान ने इंपीरियल फिल्म कंपनी में एक मामूली से एक्स्ट्रा के रूप में काम शुरू किया। कभी भीड़ में पीछे खड़े हुए तो कभी सेट पर घोड़ों की नाल भी साफ की। लेकिन जब

भी कैमरा ऑन होता, उनकी पारखी आंखें भीड़ में खड़े होकर भी डायरेक्टर के हर इशारे को, रोशनी के हर कोण को अपने जहन में महफूज कर लेती थी। और यही थी शुरुआत इस कहानी की।

साथियों, हुनर वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। महबूब खान के भीतर की इसी तड़प और सिनेमाई समझ को पहचाना उस दौर के मशहूर सागर मूवी टोन के मालिकों ने। ये बात है साल 1935 की। 1935 में महबूब खान को बतौर निर्देशक पहली फिल्म मिली और वो पहली फिल्म थी अल हिलाल। ये फिल्म जब पर्दे पर उतरी तो आलोचक हैरान रह गए। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने कभी डायरेक्शन का कोई कोर्स नहीं किया था, वो पर्दे पर जज्बात और दृश्यों का ऐसा शाहकार रच रहा था जो आवाम के दिलों को छू गया। इसके बाद तो महबूब खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वतन और एक ही रास्ता जैसी बेमिसाल फिल्में बनाई, लेकिन साल 1940 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर गाड़ दिया। जानते हैं फिल्म का नाम क्या था? फिल्म का नाम था औरत। इस फिल्म में उन्होंने भारतीय नारी के उस रूप को पर्दे पर उतारा जो सिर्फ सहती नहीं है बल्कि वक्त आने पर चंडी का रूप भी धर सकती है। महबूब खान की फिल्मों का सबसे बड़ा फलसफा यही था कि उनकी कहानियों के केंद्र में हमेशा देश का आम इंसान या फिर कोई गरीब किसान, मजदूर और सबसे बढ़कर औरत की अंदरूनी ताकत होती थी। तो आइए अब सुन लेते हैं अल हलाल फिल्म से ये कव्वाली।

साथियों, महबूब खान सिर्फ कहानियों के जादूगर नहीं थे, वो पर्दे पर भव्यता के बेताज बादशाह थे। ये बात है साल 1949 की, जब महबूब खान ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अंदाज। दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस, जरा कल्पना कीजिए, हिंदी सिनेमा के तीन सबसे बड़े दिग्गज और वो भी एक ही फ्रेम में। उस दौर में इन तीनों

एक साथ लेकर आना और एक ऐसी आधुनिक त्रिकोणीय प्रेम कहानी बुनना जो समाज के द्वंद को दिखाए, सिर्फ महबूब खान के बस की ही बात थी। लेकिन उनके हौसले बस इतने से कहां थमने वाले थे। फिर आया साल 1952, जब उन्होंने भारत की पहली और बेहद भव्य टेक्निकलर फिल्म बनाई और वो फिल्म थी आन। इस फिल्म में दिलीप कुमार, निम्मी और नादिरा थे। इस फिल्म की भव्यता और इसके गानों का फिल्मांकन ऐसा था कि इसे लंदन के वेस्ट एंड में भव्य स्तर पर रिलीज किया गया। जब हॉलीवुड के नामचीन निर्देशकों ने इस फिल्म को देखा तो वो दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए कि तकनीक की कमी के बावजूद भारत का एक निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म कैसे रच सकता है। तो आइए सुनते हैं आन फिल्म का ये गीत।

और अब हमारे प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं इतिहास के उस सुनहरे मुकाम पर जहां पहुंचकर महबूब खान का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। वो साल था 1957 और फिल्म रिलीज हुई मदर इंडिया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये आजाद भारत की माटी का महाकाव्य है। उत्तर प्रदेश के गांव की तपती दोपहर, धूल के बवंडर और आंधियों के बीच महबूब खान ने इस फिल्म के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। जब नरगिस के नाजुक कंधों पर वो भारी हल थमाया गया तो वो सिर्फ एक फिल्म का दृश्य नहीं था, वो इस देश के किसान की सदियों पुरानी भूख और उसके संघर्ष की दास्तान थी। सूरकोर लाला के जुल्म, बाढ़ के भयावह दृश्य

अंत में अपने ही सगे बागी बेटे बिरजू पर कानून और लाज की खातिर गोली चला देने वाली मां राधा, इसे किरदार ने इतिहास रच दिया। जब मदर इंडिया ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकित हुई तो दुनिया ने भारतीय सिनेमा का लोहा माना। हॉलीवुड की दहलीज पर खड़ा वो बिना पढ़ा लिखा बिली मोरा का लड़का दुनिया के सबसे बड़े फिल्मकारों की आंखों में आंखें डालकर अपनी मिट्टी की कहानी सुना रहा था। महज एक सिंगल वोट के अंतर से मदर इंडिया ऑस्कर की ट्रॉफी से चूक गई, लेकिन उसने दुनिया के नक्शे पर भारतीय सिनेमा का जो परचम लहराया उसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है।

साथियों, अगर आप गुजरे जमाने के सिनेमा के कद्रदान हैं, तो आपने फिल्मों की शुरुआत में महबूब प्रोडक्शंस का वो आइकॉनिक लोगो जरूर देखा होगा। एक बड़ा सा हथौड़ा और दराती का निशान, जो इस बात का गवाह था कि महबूब साहब दिल से समाजवाद और मजदूरों के कितने करीब थे। साल 1951 में उन्होंने बंबई के बांद्रा इलाके में महबूब स्टूडियो की शानदार शुरुआत की। यह सिर्फ एक स्टूडियो नहीं था, बल्कि कला का मंदिर।

मंदिर था, जहां गुरुदत्त की कागज के फूल से लेकर न जाने कितनी ऐतिहासिक फिल्मों की शूटिंग हुई। महबूब खान जब अपने स्टूडियो में चलते थे तो उनके कड़क मिजाज और हाथ में मौजूद हंटर से अच्छे अच्छे स्टार्स भी कांपते थे, लेकिन उनका दिल इतना मोम था कि सेट का अदना सा स्पॉट बॉय भी उन्हें खान साहब या अब्बा कहकर पुकारता था।

के इस महान सिकंदर ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। महबूब खान आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए छोड़ गए हैं एक ऐसा सिनेमा जो हमें लड़ना सिखाता है, हमें अपनी माटी से प्यार करना सिखाता है। आज भी जब बांद्रा के महबूब स्टूडियो के दरवाजे खुलते हैं तो वहां की हवाओं में उनकी बुलंद आवाज की गूंज महसूस की जा सकती है। तो आज के इस कार्यक्रम, आज के कलाकार में बस इतना ही। आज हमने याद किया सिनेमा के उस फनकार को जिसने हमें बड़े ख्वाब देखना और उन्हें जीना भी सिखाया। इसी के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार अब यहीं संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। पूर्वाहन के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए मेरा यानी रेडियो की विशेषता का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये जो हमारा जीवन है ना, ये ईश्वर की कलम से लिखी गई एक बेहद हसीन नज्म है। लेकिन कोई भी नज्म मुकम्मल और खूबसूरत तब बनती है जब उसका हर लफ्ज, हर बहर और हर काफिया अपनी सही जगह पर हो, पूरे संतुलन में हो। और ठीक इसी तरह हमारा ये इंसानी समाज भी एक साज की तरह है। और इस साज की सबसे सुरीली तान तब गूंजती है जब इसके तार यानी हमारी सेहत, हमारी संवेदनशीलता, हमारी करुणा, हमारी दया पूरी शिद्दत से एक सुर में धड़कते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम हवा के झोंकों पर तैरते हुए कुछ ऐसे ही अनकहे अनछुए लेकिन हमारे वजूद के लिए बेहद लाजमी पहलुओं पर बातचीत करेंगे। आज हम बात करेंगे उस आधी आबादी की जिसके कंधों पर पूरी कायनात का बोझ है, मगर जो अपनी मुस्कान के पीछे अपने सारे दर्द छुपा लेती है। हम बात करेंगे उस चुप्पी की जिसने सदियों से हमारी बेटियों की गरिमा को बेड़ियों में जकड़ रखा है। और हम बात करेंगे उस बुनियादी भूख की जो इस धरती के हर जीव का सबसे पहला सच है। तो अपनी चाय की प्याली संभालिए, रेडियो की आवाज को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज हम फिर से आपसे बेहद पते की बात करने वाले हैं।

0: मुखड़ा चूम लूं मैं, तेरा मुखड़ा चूम लूं मैं, सर को रख दूं सीने पे।
1: ना

0: किसी को जिसने सुख दिया हो, किसी का जिसने चैन लिया हो, बोलो वो सुख पाएगा?
1: नहीं।

तो साथियों, आइए आप सुन लेते हैं कि जुगनी आज कौन सी फतेह की बात करने वाली है। अक्सर जब हम किसी घर के आंगन से गुजरते हैं तो वहां तुलसी के पौधे की महक और बर्तनों की खनक के बीच एक और आवाज सुनाई देती है। जरा सोचिए, कौन सी है वो आवाज? वो है घर की स्त्री की थकी हुई लेकिन ममता से भरी हुई आवाज। किसी सूफी संत ने कहा था कि जिस घर की औरत बीमार या उदास हो, उस घर की दीवारें भी रोती हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि स्वस्थ तन मन तो मुस्कुराए जीवन, लेकिन जब इस बारे में बात की जाती है या इसे कहा जाता है तो ये महज कोई किताबी जुमला या कोई आकर्षक नारा सा लगता है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। ये समूची सृष्टि की खुशहाली का सबसे बड़ा फलसफा है। जी हाँ, स्वस्थ तन मन तो मुस्कुराए जीवन। माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूपों में ढली नारी पूरे परिवार की रीढ़ होती है। सुबह सूरज के उगने से पहले जागने वाली और रात को सबके सो जाने के बाद बिस्तर पर जाने वाली ये जादूगरनी हर किसी की पसंद नापसंद, दवा पानी, खाना पीना सबका हिसाब रखती है। लेकिन अफसोस, जानते हैं क्या है कि इस पूरी जद्दोजहद में जो एक डायरी हमेशा कोरी रह जाती है, वो है उसकी खुद की सेहत की डायरी, उसके स्वास्थ्य की डायरी। हमारे समाज में ये एक आम सी रिवायत बन गई है कि घर की महिलाएं अपनी हर छोटी बड़ी बीमारी को अरे कुछ नहीं है ऐसा कहकर टाल देती हैं। कमर का दर्द हो, लगातार रहने वाली थकान हो या आंखों के आगे छाता हुआ अंधेरा, वो इसे अपनी नियति मान लेती हैं, या कभी उम्र का दोष। लेकिन दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि एक बीमार माँ कभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और एक तनावग्रस्त स्त्री कभी एक खुशहाल घर का निर्माण नहीं कर सकती। आज की नारी सिर्फ

चौके चूल्हे तक सीमित नहीं है, वो दफ्तरों के कंप्यूटर से लेकर आसमान के हवाई जहाजों तक उड़ा रही हैं। इस दोहरे मोर्चे पर लड़ते लड़ते वो एनीमिया तो कभी थायराइड, कभी ऑस्टियोपोरोसिस तो कभी डिप्रेशन जैसी साइलेंट किलर बीमारियों की गिरफ्त में आ रही हैं। और ये तो मात्र कुछ बीमारियों के नाम हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो महिलाओं को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम बतौर एक समाज, एक परिवार की तरह इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कदम है वो तो है पोषण में बराबरी। सबसे पहले हमें थाली में होने वाले भेदभाव को खत्म करना होगा। अक्सर घरों में क्या होता है, आपके घर में भी होता होगा, कि जो पुरुष होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनको ताजा और पौष्टिक खाना खिलाने के बाद जो बच जाता है वो महिलाएं खाती हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। हालांकि समय बदला है तो ये भेदभाव घर की बच्चियों के साथ तो कम हुआ है, लेकिन घर में रहने वाली जो बड़ी उम्र की स्त्रियां हैं उनके साथ ये भेदभाव वो खुद करती हैं। लेकिन हमें ये बदलना होगा। महिलाओं के भोजन में आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स की प्रचुर मात्रा होनी ही चाहिए। और जानते हैं दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है नियमित स्वास्थ्य की जांच हो। जैसे हम अपनी गाड़ियों की हर 6 महीने पर सर्विसिंग कराते हैं ना, वैसे ही घर की महिलाओं की साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए, हीमोग्लोबिन टेस्ट होना चाहिए और इसके साथ ही मैमोग्राफी जरूर करवानी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा कदम है कि मानसिक सुकून और थोड़ा सा स्पेस दें, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो या आपकी दोस्त हो। उनके मानसिक स्वास्थ्य को मजाक में न लें। यदि वो चिड़चिड़ी हो रही हैं या उदास हैं तो उनके पास बैठें, उनकी बातें सुनें, उन्हें दिन भर के कामों से कुछ वक्त, जिसे हम मी टाइम भी कहते हैं, यानी खुद के लिए वक्त आप दे सकते हैं, जहां वो अपनी पसंद का संगीत सुन सकें, किताबें पढ़ सकें या महज आराम कर सकें। अब जरा आप ही बताइए, आपने लास्ट टाइम कब अपनी मम्मी को अपनी पसंद का गाना सुनते हुए देखा था? याद नहीं आ रहा होगा ना। अब जानते हैं चौथा कदम क्या है? जिम्मेदारियों का बंटवारा। तभी तो मम्मी अपनी पसंद का गाना सुन पाएंगी। घर के कामों का बोझ सिर्फ एक अकेले इंसान पर ही क्यों हो? खाना बनाने, सफाई करने या बच्चों की देखभाल में परिवार के पुरुष सदस्यों को भी बराबरी का हाथ बटना चाहिए, ताकि महिलाओं पर से शारीरिक और मानसिक दबाव कम हो सके। याद रखिए, जब तक एक नारी का तन और मन भीतर से नहीं चहकेगा, तब तक आपके घर का आंगन कभी पूरी तरह से मुस्कुरा नहीं सकता।

साथियों, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी मम्मियाँ, हमारी बहनें, हमारी पत्नी, हमारी दोस्त इसी तरह गुनगुना सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जब हम महिला स्वास्थ्य की इस नाजुक और पावन डोरी को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, तो इसी सेहत के मुहाने पर एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ आकर हमारा ये तथाकथित सभ्य समाज अक्सर अपनी आँखें फेर लेता है। स्वस्थ तन और मन की जो बुनियाद किशोरावस्था से पड़ती है, उसका एक बहुत बड़ा प्राकृतिक और अनिवार्य हिस्सा है मासिक धर्म यानी पीरियड्स। ये कायनात का वो हसीन नियम है जिसके बिना इंसानी नस्ल का आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं था। ये मातृत्व का उत्सव है, जीवन के सृजन की पहली गवाही है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस विषय की इबादत होनी चाहिए, उसे हम लोक लाज, अंधविश्वास, शर्म और एक अजीब सी अवांछित चुप्पी की चादर में दफन कर देते हैं। आज के इस दौर में भी मासिक धर्म स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बेहद आवश्यक है। और इस बात पर बात करना सिर्फ जरूरत नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त सामाजिक क्रांति की मांग है। जरा सोचिए उस 13-14 साल की मासूम बच्ची के बारे में, जिसके शरीर में जब ये कुदरती बदलाव पहली बार आता है तो वो डर से कांप उठती है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई है, और उस पर सितम ये है कि हमारे घर की दकियानों सी रवायतें उसे अछूता घोषित कर देती हैं। उसे एक कोने में बिठा दिया जाता है, रसोई में जाने की मनाही हो जाती है, और यहाँ तक कि इस विषय पर बात करने को भी पाप या बेशर्मी मान लिया जाता है। आज भी हमारे देश में कई घरों की यही स्थिति है। और इस सामाजिक शर्म का नतीजा ये होता है कि लड़कियां अक्सर पैड्स की जगह गंदे नमी वाले कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें छुपकर सुखाती हैं या धूप भी नहीं पहुंचती उन्हें। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी PID, या फिर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम UTI के नाम से जानते हैं, और यहां तक कि ये बात गर्भाशय के कैंसर तक भी पहुंच सकती है। इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए और अपनी बेटियों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए हमें तुरंत कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, और इसकी शुरुआत सबसे पहले हमसे ही होगी। सबसे पहले तो संवाद की शुरुआत करें। माताओं को चाहिए कि वो अपनी बेटियों के बड़े होने का इंतजार ना करें, बल्कि 11-12 साल की उम्र में ही उन्हें इस प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में बेहद प्यार और वैज्ञानिक तरीके से समझाएं, ताकि वो अपने शरीर में आने वाले बदलावों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। इस विषय से शर्म का टैग तब तक नहीं हटेगा जब तक पुरुष इसमें शामिल नहीं होंगे। एक पिता, एक भाई और एक पति को इसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा।

जब एक भाई बिना किसी झिझक के अपनी बहन के लिए दुकान से सैनिटरी पैड लाकर देगा, तब असली बदलाव आएगा। हर घर, हर सरकारी और निजी स्कूलों में स्वच्छ और सुरक्षित सैनिटरी नैपकिन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स की उपलब्धता अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही स्कूलों में लड़कियों के लिए साफ सुथरे टॉयलेट्स होने चाहिए, रनिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान हमने अक्सर ऐसा सुना है कि अचार को अगर छू लिया तो वो खराब हो जाता है, लड़की अपवित्र हो गई है। ऐसी बहुत सारी भ्रामक और वैज्ञानिक आधार से परे अंधविश्वासों को हमें अपने घरों से निकालना होगा। ये कोई अशुद्धि नहीं है, बल्कि ये तो जीवन की शुद्धि की शुरुआत है। जब मासिक धर्म को लेकर हमारे समाज की आंखें शर्म से झुकने के बजाय समझदारी से खुलेंगी, तभी हमारी बेटियां खुले आसमान में पूरे आत्मसम्मान के साथ उड़ान भर पाएंगी।

साथी, जीवन और स्वास्थ्य के बारे में अगर हम थोड़ा और देखें, थोड़ा और सोचें, तो चाहे हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करें या मासिक धर्म के दौरान जरूरी ऊर्जा की, इस पूरी मशीनरी को चलाने वाला ईंधन आखिर आता कहाँ से है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये ईंधन हमें मिलता है अन्न से, उस भोजन की एक एक कौर से जिसे हम ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ आकर दिल पर एक गहरी चोट लगती है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया और चांद तारों पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के बड़े बड़े सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी सरजमी के किसी अंधेरे कोने में कोई बूढ़ी आंखें, कोई मासूम बच्चा सिर्फ एक निवाले की आस में दम तोड़ देता है। इसी मर्मस्पर्शी एहसास से जन्म लेता है हमारा

आज का तीसरा विचार जो है अन्नदान महादान। हमारे उपनिषदों में लिखा है अन्नम बहु कुर्वीत तद व्रतम, यानी अन्न का सम्मान करो, उसे बढ़ाओ और उसे सब तक पहुंचाओ, यही सबसे बड़ा व्रत है। अन्न सिर्फ पेट की कसमसाती हुई आग को शांत नहीं करता, बल्कि ये एक इंसान के टूटते हुए आत्मसम्मान और उसकी बुझती हुई जिंदगी को दोबारा जिंदा कर देता है। जरा सोचकर देखिए, वो माँ जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जो एनीमिया से जूझ रही थी, या वो भर्ती हुई बच्ची जिसे पीरियड्स के दौरान भारी रक्तस्राव होता है, उन्हें किसी भी महंगी दवा से पहले जिस चीज की शिद्दत से दरकार है वो है भरपेट शुद्ध भोजन। यदि शरीर में अन्न ही नहीं होगा तो स्वास्थ्य और स्वच्छता की इस इमारत ताश की तरह ढह जाएगी। आज की दुनिया का मंजर बड़ा अजीब है। एक तरफ तो हमें आलीशान होटल देखने को मिलते हैं, शादियां देखने को मिलती हैं, दावतों में टनों के हिसाब से बचा हुआ खाना कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है और वहां केवल मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। ठीक उसी होटल की दीवार के पीछे फुटपाथ पर बैठा एक इंसान उसी कचरे में अपने हिस्से का वजूद तलाश रहा होता है। ये तमाशा हमारी इंसानियत पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अगर हम सब वाकई इस दर्द को मिटाना चाहते हैं और अन्नदान के सच्चे मर्म को जीना चाहते हैं, तो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा का जो जीवन है, उसमें कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहले तो उतना ही थाली में लें जितना व्यर्थ नाली में न जाए। इस नियम को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। चाहे घर हो या फिर कोई समारोह हो, भोजन को अपनी भूख के हिसाब से ही परोसें। भोजन की बर्बादी को रोकना भी अन्नदान का सबसे पहला और प्रभावी रूप है। दूसरा कदम है कि जब भी आपके घर में कोई पार्टी हो, उत्सव हो या आयोजन हो और उसमें खाना बच जाए, तो उसे तुरंत फेंकने के बजाय अपने शहर के रोटी बैंक या किसी एनजीओ से संपर्क करें, ताकि उस भोजन को सुरक्षित तरीके से रात में ही जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। अपने घर में रोज कम से कम एक या दो एक्स्ट्रा रोटियां जरूर बनाएं। जब आप दफ्तर या काम पर निकलें और रास्ते में कोई असहाय, भूखा बुजुर्ग या बच्चा दिखे, तो उसे पैसे देने के बजाय वो सम्मान पूर्वक भोजन का पैकेट सौंप दें। अपने बच्चों के जन्मदिन या किसी भी त्योहार के अवसर पर महंगे रेस्टोरेंट में हजारों रुपए उड़ाने के बजाय किसी अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम या रैन बसेरे में जाकर वहां के लोगों के साथ मिलकर अन्न और अनाज का दान करें। इससे बच्चों में भी करुणा के संस्कार पैदा होंगे। याद रखिए, किसी भूखे को तृप्त करने के बाद जो दुआ आंखों से निकलती है वो सीधे ईश्वर के दरबार तक पहुंचती है।

साथियों, बदलाव की शुरुआत किसी दूसरे के घर से नहीं होती। बदलाव का दिया हमें अपने खुद के दिल में और अपने खुद के आशियाने में खुद ब खुद जलाना होता है। तो आइए आज ये संकल्प लें कि हम अपने घर की स्त्रियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। इस धरती पर किसी भी इंसान को भूख के साए में नहीं रहने देंगे। इसी खूबसूरत और पावन उम्मीद के साथ अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न किया जाए। तो इसी के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब यहीं खत्म हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओ आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
2: जी,
3: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति

0: भी किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
1: जी,
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है, दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

IRT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम दिस इज माई टाउन।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
3: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की

0: जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
0: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
5: ऐसे नहीं,
6: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का? तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
7: माँ।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से 3-3 फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
0: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही

0: महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का।

0: यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
1: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
0: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।

अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और अब इसी

0: विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गजनी से। आवाज है जावेद अली की, बोल प्रसून जोशी के हैं और धुन बनाई है AR रहमान ने।

जावेद अली के गाए गजनी फिल्म के इस गीत के बाद अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे गाया है शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल ने। बोल रजत अरोड़ा के हैं, धुन शंकर एहसान लॉय ने बनाई है और फिल्म का नाम है चांदनी चौक टू चाइना।

चांदनी चौक टू चाइना। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत को लिखा था रजत अरोड़ा ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का था। कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और अंतराल के उस पार एक और गीत आपकी प्रतीक्षा में है।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। लीजिए अब सुनिए सुर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने, निदा फाजली के बोल हैं धुन, MM करीम ने बनाई है।

सुनिधि चौहान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे निदा फाजली के बोल। संगीत MM करीम का था, फिल्म का नाम था सुर। आइए आप सुनते हैं नए तराने कार्यक्रम का अगला तराना, बचना है हसीनों फिल्म से। आवाजें हैं सुनिधि चौहान हार्डकोर और राजा हसन की, अनविता दत्त गुप्ता के बोल हैं, संगीत विशाल शेखर का है।

0: अभी आप सुन रहे थे बचना है हसीनो फिल्म से ये गीत। गीत को गाया था सुनधि चौहान, हार्डकोर और राजा हसन ने। अनुभूता दत्त के बोल थे और संगीत विशाल शेखर का था।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: अपने रेडियो सेट पर इस समय आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का आगरा केंद्र और हमारे यहाँ से प्रसारित किया जा रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। आइए आप सुनते हैं दोस्ताना फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान ने। कुमार के बोल हैं और संगीत विशाल शेखर का है। तो लीजिए सुनिए दोस्ताना फिल्म से ये गीत।

दोस्ताना, जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। कुमार के बोल थे और धुन विशाल शेखर ने बनाई थी। कार्यक्रम नए तराने में आ जा

पत्नी, गजनी, चांदनी चौक टू चाइना, सुर, बचना है हसीनों और दोस्ताना फिल्मों के गीत सुने। इन गीतों को गाया था जावेद अली, शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, हार्डकोर, राजा हसन और साथियों ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न हुआ।

0: मीडियम वेव 198.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की

0: अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है, इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर दो मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim Police during Alankaran Parade held in Gangtok.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
1: होगा। Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the Education Minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले।
4: चिल्ड्रन शुड रिसीव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स थ्रू स्कैन कॉपीज। द आंसर शीट्स शुड रीच देम ट्रांसपेरेंटली। दिस इज अ प्रोविजन अंडर द ओएसएम सिस्टम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सीबीएसई हैज इंप्लीमेंटेड दिस सिस्टम। सम डिस्क्रेपेंसीज हैव कम टू नोटिस इन इट। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड इट विल बी करेक्टेड प्रॉपरली। वी विल मेक श्योर दैट नो जेन्युइन क्वेरी रेज्ड बाय एनी स्टूडेंट रिमेन्स अनआंसर्ड।
1: The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul Azha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month will be released soon. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will submit his resignation to the governor this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed this while leaving the breakfast meeting called by Siddaramaiah. He said Siddaramaiah has been told by the Congress High Command to resign and accordingly he will submit his resignation at Lok Bhavan. He further informed that D.K. Shivakumar will take over as the Chief Minister. Bharatiya Janata Party BJP leader from Punjab, Kewal Singh Dhillon, has been appointed as the state president of the party's Punjab unit today. He has been given the charge

0: of Punjab Unit by the party's national president, Nitin Naveen. Iran's Revolutionary Guards today said they targeted a U.S. base this morning in retaliation to American strikes near Bandar Abbas Airport. Tehran did not disclose the location of the base that was attacked, but Kuwait, a U.S. ally, said earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. The festival of sacrifice, Eid al-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे मरहले को मोसर तरीके से नाफिज करने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मुहिम सिर्फ बुनियादी ढांचे की तामीर तक महदूद न रहे बल्कि मामूल के मुताबिक निगरानी, आवामी शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकों के कोऑर्डिनेशन से ठोस नतायज यकीनी किए जाएं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं पेशरफत मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म ने रियासतों से कचरा प्रोसेसिंग और गोबरधन प्लांटों समेत ठोस वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल करने के अहकाम दिए। मीटिंग में रेलवे, बिजली और सड़क हलकों के तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए लागत वाले 7 खसूसी प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: काबीना की इक्तिसादी मामलों की कमेटी ने अवामी तकसीम निज़ाम के तहत राशन, नकलो हमल और मैनेजमेंट इमदादी स्कीम सार्थक पीडीएस को जारी रखने की इजाज़त दे दी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने 25,530 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत में वजीर बराए इत्तला तो नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह स्कीम अवामी तकसीम निज़ाम को जदीद बनाने में तआवुन करेगी।
3: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमद रफ्त के लिए पहले मरहले में 110 इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी यकीनी करने के अहकाम दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी मीटिंग में सदारत करते हुए वजीर आला ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गीडा हलके में 500 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने की पेशरफत का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 15 जून से मुजव्वजा परवाज से कबल अवामी नकलो हमल निज़ाम को पूरी तरह मुस्तहकम किया जाए। मीटिंग में वजीर आला ने रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से तौसी पर भी जोर दिया। عید الاضحیٰ کا تہوار آج پوری ریاست میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار پیغمبر حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دینے کے جذبے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔

0: है। सुबह से ही इस मौके पर मसाजिदों में खुसूसी नमाज का एहतमाम किया गया, जिसके बाद कुर्बानी के फराइज अदा किए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत लखनऊ समेत गोरखपुर, आगरा, कौशाम्बी, कानपुर शहर, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, चित्रकूट, रायबरेली, बिजनौर, अयोध्या, आजमगढ़, इटावा, शामली, वाराणसी, मेरठ, जौनपुर, उन्नाव, अमरोहा, प्रयागराज और सहारनपुर में हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान नमाज अदा की गई। वाज रहे कि रियासती हुकूमत ने पहले ही सभी सीनियर पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करके ये यकीनी करने को कहा है कि कोई नई रवायत शुरू न हो और न ही पाबंदी शुदा जानवरों की कुर्बानी दी जाए। दरियसना गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है। रियासत में शदीद गर्मी और लू का सिलसिला कल भी जारी रहा। कई अजला में दर्ज हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बांदा में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से लू से राहत का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत के कई हिस्सों में कल से आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का कयास जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, जालाबारी और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। दरियस्ता मशरकी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। कुछ मकामात पर जालाबारी के भी इम्कान हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुनने के इंतजार में बैठी सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी रचना का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, इस भीषण गर्मी में कैसी हैं आप लोग? अब भाई ये पूछने का कोई सवाल तो नहीं है, पर फिर भी अपना ध्यान रखिएगा। सखियों, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत चर्चा से होती है, जिसमें हम अपने घर संसार से जुड़े नए नए विषयों पर बात करते हैं। तो सखियों, आज की चर्चा का विषय भी बहुत खास है और वो विषय है स्वस्थ नारी से मजबूत परिवार। एक महिला सिर्फ घर संभालने वाली नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की ताकत होती है। वो हर रिश्ता, फिर चाहे वो माँ का हो, बेटी का हो या पत्नी का हो, बड़ी निष्ठा और सहजता के साथ निभाती है। लेकिन इन सब के बीच वो अपने परिवार की चिंता में अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करती रहती है। और होता भी है, अक्सर हम महिलाएं अपने परिवार की चिंता सबसे पहले करते हैं और अपने स्वास्थ्य की अनदेखी हम करते रहते हैं, जिससे कि हमें आगे चलकर बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। सखी, उसके साथ साथ मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने परिवार की चिंता मत करिए, लेकिन याद रखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप परिवार की देखभाल कर पाएंगी, तभी परिवार भी खुश और मजबूत रहेगा। तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक जरूरत है। इसीलिए अपना खूब सारा ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन करें, समय पर आराम करें और साथ ही नियमित व्यायाम या योग करें और मन को खुश रखने की कोशिश करें। और भाई, हर वो काम करें जो आपको खुशी दे, और इसके साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। जैसे अपनी बात खुलकर कहें, तनाव को दिल में बिल्कुल भी ना रखें और अपने सपनों को भी महत्व दें, क्योंकि सखियों, एक आत्मविश्वासी और स्वस्थ महिला ही पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। तो भाई, आज से ही रखिए खूब सारा ध्यान और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखकर अपने परिवार का भी आप पूरा ध्यान रख सकती हैं। तो बहनों, ये तो हुई एक छोटी सी चर्चा। अगले सेगमेंट पर बढ़ने से पहले फिलहाल रुकते हैं यहाँ एक ब्रेक के लिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सखियों, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट परवरिश रिश्ते नाते में। बात जब बच्चों की परवरिश की होती है तो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी परवरिश करनी पड़ती है, और आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जो है समय की अहमियत। जी हाँ बहनों, समय हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। सखियों, जो बच्चा बचपन से ही समय का महत्व समझ लेता है वो आगे चलकर जीवन में अधिक सफल और जिम्मेदार बनता है। और सखियों, इसीलिए माता पिता और शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को समय का सही उपयोग करना जरूर सिखाएं। बच्चों को छोटी छोटी आदतों से आप समय की कीमत समझा सकती हैं, जैसे समय पर उठना, पढ़ाई करना, खेलना और समय पर ही सोना। जी हाँ बच्चों, जी हाँ बहनों, आजकल बच्चे समय पर सोने के लिए अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं फोन में, जो कि नहीं होना चाहिए। जब बच्चे नियमित दिनचर्या अपनाते हैं तो उनमें अनुशासन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। और भाई, जैसा कि मैंने कहा, आज मोबाइल और इंटरनेट के दौर में बच्चों का काफी समय बेकार चला जाता है, इसलिए जरूरी है कि उन्हें समय का संतुलित उपयोग करना सिखाया जाए और उन्हें पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ खेल, क्रिएटिविटी और परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी जरूर प्रेरित करें। सखियों, अगर बच्चे समय की अहमियत जान जाएंगे तो वो जीवन की हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो भाई, हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को टाइम की इम्पोर्टेंस जरूर समझाएं। सखियों, जीवन की चुनौतियों को कम करने के लिए हमें अपने मन को भी तो तरोताजा रखना होगा। तो आइए अपने मन को तरोताजा करते हैं इस प्यारे से सॉन्ग से।

सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद अब चलिए अपने घर को सजा लेते हैं। सखियों, हमारे घर की खूबसूरती सिर्फ महंगे सामान से नहीं बल्कि हमारी क्रिएटिविटी से भी बढ़ती है। हम अपने घर को सजाने के लिए कई सारी चीज़ें बाजार से ले तो आते हैं और बस लाकर घर में यूं ही सजा देते हैं या रख देते हैं, लेकिन सखियों, अपने हाथों से बनाई गई चीज़ की बात ही कुछ अलग होती है। अब एक छोटे से फोटो फ्रेम की बात करें तो ये देखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर ये हम खुद अपने हाथ से बनाएंगे तो उसकी कुछ बात ही अलग होगी। और भाई, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी यादों को सजाने के साथ साथ घर को भी सुंदर बनाती है। इसे आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकती हैं। अब इसे बनाने के लिए भी बाहर से कुछ बहुत ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। इसे बनाने के लिए पुराने कार्डबोर्ड, आइसक्रीम स्टिक्स, कलर्ड पेपर्स, बटन या मोती का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। एक सुंदर सा फोटो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को मनचाहे आकार में काट लें, बीच में फोटो के अनुसार जगह निकालें और अब इसे कलर्ड पेपर या पेंट से सजा दें। आप चाहें तो उस पर सूखे फूल, ग्लिटर, सीपियां या मनचाही जो भी चीज़ें आपके पास हों उनसे आप सजा कर इस सुंदर से फोटो फ्रेम को अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं। और इसके बाद अपनी मनपसंद तस्वीर लगाकर फोटो फ्रेम को दीवार या टेबल पर डेकोरेट कीजिए। और भाई, सबसे बड़ी बात, हाथों से बनाई गई चीज़ों में एक अलग ही अपनापन होता है। ये न केवल समय का एक अच्छा उपयोग भी है बल्कि बच्चों और महिलाओं के लिए एक क्रिएटिव एक्टिविटी भी है। आप चाहें तो ऐसे फोटो फ्रेम बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं। तो है ना मज़ेदार बात कि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ का मज़ा ही कुछ अलग है।

0: सखियों, अभी हमने बात की अपने घर को सजाने की, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ हम महिलाओं को अपने भविष्य के लिए बचत और निवेश जरूर करना चाहिए, और इसे किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कविता चौधरी द्वारा प्रस्तुत इस वार्ता के माध्यम से, जिसका विषय है महिलाओं के लिए बचत निवेश का गणित।
1: बीते कुछ सालों में महिलाओं ने बड़ी दूरी तय की है। आज वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। पुरुष सदस्यों पर उनकी आर्थिक निर्भरता दिन ब दिन घट रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में ग्लोबल वर्कफोर्स में कम से कम 30 करोड़ महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। बावजूद इसके पुरुषों को महिलाओं की तुलना में 34% ज़्यादा पेड वर्क मिलता है। महिलाएं अब भी अपना ज़्यादातर समय अनपेड वर्क जैसे कि घर का काम, बच्चों की देखभाल और दूसरे लोगों की सेवा में लगाती हैं। अगर आप 25 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं तो हो सकता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी सूची में सबसे नीचे हो, जबकि वास्तव में यह सबसे ऊपर होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह एक चुनौती भरा वित्तीय लक्ष्य है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप महिला हैं। एक महिला होने की वजह से आपको किसी पुरुष की तुलना में ज़्यादा बड़ा रिटायरमेंट फंड जुटाने की आवश्यकता होती है, और इसलिए किसी पुरुष की तुलना में आपको उससे दुगनी बचत करनी होगी। अगर आप भी यह नहीं समझ पाई हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आइए हम आपको समझाते हैं। भविष्य के बारे में हम और आप कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। हो सकता है कल को आप अकेली रह जाएं, या आपकी शादी कामयाब ना रहे, या यह भी हो सकता है कि कल को आपको अपने बच्चों के साथ अकेले जीवन व्यतीत करना पड़े। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में ऐसी महिलाओं की संख्या 7.4 करोड़ के आसपास है। ये महिलाएं या तो विधवा हैं, या तलाकशुदा हैं, या फिर कुंवारी हैं। साल 2001 से 2011 के बीच इस तरह की महिलाओं की संख्या में 39% की वृद्धि हुई है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर महिला के साथ ऐसा होगा, लेकिन बेहतर तैयारी करने में बुराई ही क्या है।

अब हम आपको कुछ ऐसे खास कारण बताते हैं जिसकी वजह से आपको पुरुषों की तुलना में अधिक बचत करने की जरूरत है। देश में महिला और पुरुष के बीच आज भी काफी फासला है। भारत में महिलाएं अपने पुरुष सहकर्मियों की तुलना में 20% कम कमाती हैं, और इस कम आमदनी की वजह से आपको अधिक बचत करने की जरूरत है। महिलाएं सिर्फ कमाई ही कम नहीं करती, बल्कि उनकी औसत कामकाजी उम्र भी कम होती है। इसका कारण बच्चों की देखभाल की वजह से अक्सर काम छोड़ने जैसी प्राथमिकताएं होती हैं। एक औसत के हिसाब से महिलाएं पुरुषों की तुलना में 7 साल तक कम काम करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस अवधि में आप कुछ भी बचत नहीं कर पाएंगी। एक बार काम से ब्रेक लेने के बाद महिलाएं दोबारा अगर जॉब ज्वाइन करती भी हैं, तो उन्हें दोबारा पहले की तुलना में कम वेतन से जॉब ज्वाइन करना पड़ता है। इसका मतलब यह भी है

कामकाजी उम्र भी कम होती है। इसका कारण बच्चों की देखभाल की वजह से अक्सर काम छोड़ने जैसी प्राथमिकताएं होती हैं। एक औसत के हिसाब से महिलाएं पुरुषों की तुलना में 7 साल तक कम काम करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस अवधि में आप कुछ भी बचत नहीं कर पाएंगी। एक बार काम से ब्रेक लेने के बाद महिलाएं दोबारा अगर जॉब ज्वाइन करती भी हैं तो उन्हें दोबारा पहले की तुलना में कम वेतन से जॉब ज्वाइन करना पड़ता है। इसका मतलब यह भी है कि आपको रिटायरमेंट संबंधी लाभ भी कम मिलेंगे। महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। इसका मतलब सीधा सा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक रिटायरमेंट फंड की जरूरत होगी। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च को देखते हुए भी इस फंड की जल्द खत्म होने की आशंका रहती है और इस हिसाब से भी महिलाओं को ज्यादा बचत करने की जरूरत है। आज के समय में सरकार की तरफ से भी महिलाओं को भी बचत करने के लिए भरपूर प्रोत्साहन मिल रहा है। कई वित्तीय मामलों में उन्हें छूट या विशेष लाभ देने के प्रावधान हैं। हम यहाँ ऐसे ही वित्तीय फायदों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हर महिला को जानना चाहिए। बैंक्स में महिलाओं के लिए खास बचत खातों की स्कीम मौजूद है। ये खाते आज भी महिलाओं की वित्तीय निवेश और लाइफस्टाइल की जरूरतों को पूरा करते हैं। इनमें तमाम तरह की रिवॉर्ड और कैशबैक ऑफर दिए जाते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने वाली महिलाओं को इनकी पेशकश की जाती है। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय महिलाओं को प्रीमियम अदा करने में भी छूट दी जाती है। एक ही पॉलिसी के लिए पुरुषों की तुलना में उन्हें कम प्रीमियम देना पड़ता है। और तो और कई ऐसी सरकारी प्रोजेक्ट्स की स्मार्ट पॉलिसियां भी हैं जहां पुरुषों के लिए मासिक प्रीमियम जितना है उससे कहीं कम महिलाओं के लिए है। तो कई बैंक्स में महिलाओं के लिए होम लोन्स की ब्याज दरें कम हैं। यह अंतर लगभग 0.05% तक हो सकता है। लंबी अवधि में यह बड़ा फर्क पैदा करता है। कार लोन में भी ये बात लागू होती है। अब अगर इस सब छूट को मिलाकर हम देखें तो ये एक बचत साबित हो सकती है। और इतना ही नहीं, कई राज्य सरकारें महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी और ट्रांसफर ड्यूटी में भी छूट देती हैं। इससे प्रॉपर्टी सस्ती पड़ती है। अगर हम एग्जाम्पल लें दिल्ली, यूपी, तो जहां पुरुषों के लिए स्टाम्प ड्यूटी 6% है वही महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी 4% है। और तो और महिलाओं में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नीतियां बनाने के साथ साथ कई स्कीम शुरू की हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया। इसके तहत महिला उद्यमी को मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग सेक्टर के क्षेत्र में 10 लाख रुपए से लेकर 100 लाख रुपए तक का बैंक लोन दिया जा सकता है। और आज 21वीं सदी की महिला की भूमिका पिछले कुछ बीते वर्षों की तुलना में पूरी तरीके से बदल चुकी है। वे रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा हर क्षेत्र में पुरुषों से बराबरी करना चाहती हैं। इससे उनकी महत्वाकांक्षाओं में काफी बदलाव आया है। वे खुलकर जिंदगी जीना चाहती हैं, अपनी शर्तों पर और अपने हिसाब से। अपनी हर पसंद को वो पूरा करना चाहती हैं और इसके लिए उनका वित्तीय रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगी। अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए महिलाओं को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अब वे सिर्फ पुरुषों पर निर्भर रहना नहीं चाहती। वे खुद कमाकर अपने स्वाभिमान और अपनी स्वतंत्रता दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना चाहती हैं। और इस तरह वित्तीय प्रबंधन और नियोजन महिलाओं के लिए काफी अहम है क्योंकि उनको बाहर की दुनिया और घर की दुनिया के बीच संतुलन बिठाते हुए उन्हें हर वो चीज करनी है जो वो करना चाहती हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाओं की जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। समाज में उनकी भूमिका बदल रही है और ऐसे में वे चाहती हैं कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने लिए जिंदगी के कुछ बेहतरीन पल ढूंढें। एक सर्वे के अनुसार पिछले एक दशक में देश में 25 से 35 साल की उम्र में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या करीब करीब 50% तक बढ़ी है। मगर सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि इस दौरान 50 वर्ष से अधिक उम्र वाली तलाकशुदा महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। इनमें से सिर्फ 1/3 महिलाओं ने ही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए अपना भविष्य सुरक्षित किया हुआ था। इसका मतलब है कि तलाक लेने वाली 3 में से 2 महिलाएं किसी अन्य पर निर्भर है और इस तरह न चाहते हुए भी उन्हें फिर से निर्भरता का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं के प्रति सामाजिक आर्थिक सुरक्षा ढांचा काफी कमजोर है और हमारा समाज महिलाओं को लेकर नीरस है। हालांकि चीजें बदल रही हैं, लेकिन समानता के तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर आने में कई दशक लग सकते हैं और इसी वजह से अब महिलाओं को निवेश और बचत के प्रति सजग होना जरूरी है। कहते हैं कि महिलाओं के पास बचत करने की एक अच्छी आदत होती है और बचत करने के लिए निवेश करना होगा। ऐसा करने के लिए उनका पैसा भी बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी भी। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है वित्तीय मामलों की समझ।

0: जब एक महिला ऑफिस का काम संभाल सकती है, घर संभाल सकती है, तो उसे अपने पैसों की बचत के लिए भी अपनी समझ बढ़ानी होगी। आप जो खर्च करती हैं उस पर ध्यान दें, जितना जरूरी हो और जहां जरूरी हो वहीं खर्च करें। अगर आप कोई चीज खरीदती हैं तो पहले खुद से पूछिए कि क्या वाकई आपको उस सामान की जरूरत है। अगर हाँ तो बेशक आप उसे खरीदिए, लेकिन अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपने बचत का एक हिस्सा गंवा रही हैं। इस तरह आप छोटे से छोटे पैसों से भी बचत की आदत डाल सकती हैं। जरूरी नहीं कि बड़ी रकम के साथ ही बचत की जाए। आप छोटी छोटी FDs या बच्चों के नाम पर कोई योजना या म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकती हैं। मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि बचत और निवेश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए उन्हें समान ही माना जाना चाहिए, क्योंकि बचत के तहत धन को आपात स्थिति के लिए रखा जाता है, जबकि निवेश अनुशासित तरीके से संपत्ति सृजित करने का जरिया है। आखिर कब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगी, क्योंकि प्रकृति ने महिलाओं को पुरुषों से अधिक उपयोगी बनाया है। और अब से किसी को मत कहने दो कि तुम कमजोर हो या मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुम एक औरत हो। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी, जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, न कोई शिकायत न कोई थकान।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी महिलाओं के लिए बचत निवेश का गणित विषय पर वार्ता, और वार्ताकार थी कविता चौधरी। सखियों, अब कुछ बातें कर लेते हैं ज्ञान विज्ञान की, और आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बना रहा है, जिसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहा जाता है। सखियो, आजकल साइबर क्राइम करने वाले मोबाइल फोन और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके लोगों को डराते हैं। वो कभी पुलिस अधिकारी, तो कभी बैंक कर्मचारी, तो कभी साइबर क्राइम अधिकारी बनकर फोन करते हैं, और वो बोलते हैं कि आपका बैंक खाता, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर किसी गलत कार्य में इस्तेमाल हुआ है और आपको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। और ऐसा सुनकर बुजुर्ग या महिलाएं घबरा जाते हैं, और ऐसे में डर और घबराहट की वजह से महिलाएं या बुजुर्ग उनकी बातों के जाल में फंस जाते हैं, और साइबर अपराधी वीडियो कॉल करके घंटों बात करते रहते हैं और फिर बातों बातों में ही पैसे ट्रांसफर करने का दबाव डालते हैं। इसीलिए सखियो, याद रखिए, कोई भी सरकारी एजेंसी ना तो फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी करती है, ना ही किसी को तुरंत पैसे भेजने के लिए कहती है। अगर ऐसा कोई भी फोन आपके पास आए तो सबसे पहले तो बिल्कुल घबराए नहीं और तुरंत कॉल काट दें, और अपने परिवार के किसी सदस्य से जरूर बात करें, और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। क्योंकि बहनों, आज के समय में डिजिटल जानकारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी घर और परिवार की जिम्मेदारी। तो सखियों, सजग रहिए ऐसे स्कैम से और खुद को कीजिए अपडेट। तो सखियों, इस छोटी सी जानकारी के साथ ही आइए अब सुनते हैं ये एक प्यारा सा सॉन्ग।
2: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा, चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गरिया।

सखियों, इस गीत के साथ ही मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभाती हैं, लेकिन अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। तो बहनों, हमें ये समझना होगा कि महिलाओं का स्वास्थ्य केवल उनका व्यक्तिगत विषय नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। जब महिलाएं स्वस्थ और आत्मविश्वासी होंगी, तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। तो आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि अपने घर की हर महिला के स्वास्थ्य और सम्मान का ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्वस्थ नारी ही मजबूत परिवार और मजबूत देश की पहचान है। तो बहनों, इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है। अपनी रेडियो सखी रचना को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति

अभी बहनें सुन रही थीं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। ये समय रहता है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वाणी जयराम के गाए हुए भजन। आइए सुनते हैं ये पहला भजन।

अभी आप सुन रहे थे वाणी जयराम के गाए हुए भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, P.V. Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने

0: सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
1: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
3: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी

0: भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील

0: शील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर दोपहर के 2:30 और 17 सेकंड हुए हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम परवीन सुल्ताना की राग भैरवी में गाई ये ठुमरी।

अभी आप सुन रहे थे बेगम परवीन सुल्ताना की राग भैरवी में गाई ठुमरी। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी की भैरवी में गाई ये ठुमरी।

पंडित भीमसेन जोशी की राग भैरवी में गाई ठुमरी। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं परख फिल्म के गीत के साथ। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, बोल शैलेंद्र के हैं संगीत सलिल चौधरी का।

परख फिल्म के इस गीत के बाद लीजिए अब सुनिए सीआईडी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है शमशाद बेगम ने, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और धुन ओपी नैयर ने बनाई है।

और अब ये अगला गीत फागुन फिल्म से, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, कमर जलालाबादी के बोल हैं, धुन ओपी नैयर ने बनाई है।

अभी आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का गीत। अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हमने लिया है नागिन फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, बोल राजेंद्र कृष्ण की और धुन हेमंत कुमार ने बनाई है।

नागिन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंद।

पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। लीजिए अब सुनिए लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

जब जब फूल खिले। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म ताजमहल से। साहिर लुधियानवी के बोल हैं और संगीत रोशन का है।

अभी आप सुन रहे थे ताजमहल फिल्म का गीत। आवाजें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। साहिल लुधियानवी के बोल थे और धुन रोशन ने बनाई थी। लीजिए अब सुनिए रवि के संगीत पर शकील बदायूनी के बोल। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, फिल्म का नाम है उम्मीद।

उम्मीद फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी के बोल थे और संगीत रवि का था। इस गीत के बाद गीत गुंजन कार्यक्रम का अगला गीत जंगली फिल्म से। आवाज़ एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी की है, बोल हसरत जयपुरी के और धुन शंकर जयकिशन ने बनाई है।

ये थे जंगली फिल्म का गीत। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, बोल हसरत जयपुरी के थे और गीत को संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का अगला गीत इंतकाम फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की है, बोल राजेंद्र कृष्ण के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई है।

इस गीत को हमने लिया था फिल्म इंतकाम से। आवाज लता मंगेशकर थी, बोल राजेंद्र कृष्ण के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल। संगीत आदि बर्मन का है, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: का फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और संगीत आर डी बर्मन का। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और प्राकृतिक उपचार। इस विषय पर डॉक्टर रामवीर सिंह से बात कर रहे हैं अनिंद्र सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार। वर्तमान समय

0: के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और प्राकृतिक उपचार। इस विषय पर डॉक्टर रामवीर सिंह से बात कर रहे हैं अनिंद्र सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार। वर्तमान समय कितनी भागा दौड़ी का समय है, ये भी सोचने की हमारे पास शायद फुर्सत नहीं है कि हम कितने भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए ही अगर समय न निकाल पाएं तो ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? ये जो समस्याएं हैं जिंदगी की, ये हमारे स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं पैदा करती हैं। ये जो चिंताएं हैं स्वास्थ्य की, बड़ी आसानी से इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में छोटी छोटी चीजें जो है वो शामिल करके इनको अपने आप से हम दूर कर सकते हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा हमारी वो जीवन पद्धतियां हैं जो हमारे साथ, हमारी संस्कृति में बरसों बरस से साथ चल रही हैं। आज उन्हीं सब पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर रामवीर सिंह जी। डॉक्टर साहब जो है वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य हैं और आज हम उनके माध्यम से अपने श्रोताओं को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अवगत कराएंगे जिनसे शायद हमारे श्रोता आज अछूते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, नमस्कार।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं इसमें शायद हम तब्दीलियां करना चाहें तो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी भागदौड़ वाली है और इसके हिसाब से ही हमें अपने आप को ढालना है। क्या ख्याल है आपको?
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: तो ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य जो है हमारा बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है तब जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल टूल्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और उनसे बच के रह पाना वो शायद मुमकिन है नहीं आज की तारीख
2: में। नहीं है।
1: तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं किस तरह की हमारे साथ आड़े आ रही हैं और कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो ज्यादातर हमारे समाज में खास तौर पर देखने को मिल रही हैं।
2: देखिए, मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जितने भी मानव निर्मित संसाधन हैं
1: जी,
2: ये विकरण उत्पन्न करते हैं जिसका सीधा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। हमारा जो ब्रेन है वो उस तनाव में अपने आप ही आ जाता है। अच्छा, इसके पीछे कुछ वजह और भी हैं, जैसे हमारा शारीरिक अनुशासन
1: जी
2: जो है ही नहीं बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को अनुशासित करना होगा, कब खाना है, कब पीना है, कब रेस्ट लेना है, इन सारी चीजों का ध्यान रख के और हल्का पुल्का योग और एक्सरसाइज करके हम अपनी इन मानसिक समस्याओं को ठीक कर सकते हैं
1: जी।
2: और इसके लिए ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बस छोटी छोटी चीजें हैं अगर उन्हें हम अपने जीवन में ले आए जिन्हें हम भूल चुके हैं एक्चुअली, जैसे जैसे हमारे जीवन में उतारते जाएंगे समस्याएं ठीक होती जाएंगी अपने आप।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं, ये अमूमन हम सब लोग इस बात से सहमत हैं, हमारे श्रोता भी शायद इससे सहमत ही होंगे कि ये बातें जितनी सुनने में अच्छी लगती हैं कि ऐसा छोटी छोटी चीजें हम कर लें अपने जिंदगी में तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन जितनी आसान ये कहने में और सुनने में लग रही हैं उतनी ही मुश्किल शायद वो हमारी प्रैक्टिस में वो आ ही नहीं पाती। तो क्या वजह ऐसी होती है कि वो चीजें जो हम सोचते तो हैं कि छोटी छोटी हमें करनी चाहिए और कर नहीं पाते?
2: इसके पीछे सर जो सबसे बड़ी वजह है वो है टाइम से ना सोना और ना टाइम से जगना।
1: मतलब हमारी दिनचर्या ही खराब है,
2: शुरुआत ही खराब है हमारी। हमें कायदे में सूरज निकलने से पहले जग जाना चाहिए, जो संभव ही नहीं हो पाता, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी परिवेश, दोनों में ही अब ये सिस्टम हो गया है कि लोग जगते ही नहीं है 7-8 बजे तक। अच्छा, क्यों नहीं जगते? क्योंकि रात को देर तक मोबाइल देखना होता है उन्हें। और ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी लोग मोबाइल पर ऐसे ही चीजें देखते हैं फालतू की, लेकिन ज्यादातर अगर मैं कहूं कि more than 80% लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही रात भर जागे रहते हैं।
1: मतलब उसको अवॉइड किया जा सकता है,
2: किया जा सकता है, ये तो हमारे हाथ में है ना।
1: कुछ ही लोग होंगे जिनको शायद कुछ काम के चलते उस वक्त
2: यूज करना पड़े,
1: नाइट तक उसको
2: जागना पड़े उसको, तो वो मैनेज कर सकते हैं भाई, दिन में इतना वक्त निकाल लें कि 1 घंटा आराम के लिए मिल जाए। यही सारी चीजें हैं जिन्हें हमें शामिल करना है।
1: हमारी दिनचर्या का प्रबंधन हमें ठीक करना है।
2: शुरुआत ही हमें जगने से करनी पड़ेगी। एक दिन दो दिन परेशानी हो सकती है, लेकिन ये चीजें जैसे आदत से छूटी है ना, वैसे ही हमारी आदत में आ भी जाती हैं।

0: बात करने की देर है बस। आप एक दिन जगिए, दूसरे दिन, तीसरे दिन अपने आप आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाएंगी उसी वक्त पे।
1: मतलब आपका कहने का ये है कि हम जाग तो रहे हैं, लेकिन शायद हम जाग नहीं रहे हैं,
0: हाँ,
1: हम नींद में हैं।
0: नींद में है,
1: तो उससे हमें जागने की जरूरत है कि
0: जरूरत
1: कैसे
0: है।
1: हम अपने आप को जगा पाएं, और जो हमारी प्रबंधित जीवन शैली होनी चाहिए,
0: हाँ,
1: रेगुलर, जिसमें नियमितता हो, उस तरह की जीवन शैली हमें जीने की आवश्यकता है, जहां
0: बिल्कुल,
1: हम प्रकृति के साथ शायद अपने आप को
0: कनेक्ट
1: ज्यादा
0: करके, जोड़ के
1: जोड़ के जी पाए।
0: जी पाए। हम प्रकृति से अलग हो गए हैं, इसीलिए समस्याओं में हैं। मानसिक रोग सिर्फ हमारे ब्रेन के तनाव को ही नहीं कहेंगे, हार्ट यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब में मानसिक रोगों का बड़ा योगदान होता है। तनाव जितना ज्यादा, ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा, शुगर अगर है तो वो बढ़ जाएगी। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है।
1: ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े
0: कनेक्टेड
1: हुए
0: हैं,
1: हैं।
0: कनेक्टेड हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है दो चीजों से चलता है, एक पेट, एक दिमाग। पेट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का। इसमें हम क्या डाल रहे हैं,
1: कितना डाल रहे हैं
0: कितना डाल रहे हैं
1: और क्यों डाल रहे
0: और
1: हैं?
0: किस टाइम पे डाल रहे हैं मतलब वही आपका ही, क्यों डाल रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो टाइमिंग के साथ में खाना व पीना ये बहुत जरूरी है। अगर हम सही टाइम पे गलत भोजन भी कर लें, कुछ तला भुना कुछ भी बाहर का खा लें, तो वो भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा,
1: क्योंकि शरीर की जरूरत है उस
0: जरूरत है
1: वक्त।
0: उस समय। और गलत टाइम पे किया हुआ सही भोजन मेरे
1: अच्छे
0: पास,
1: से अच्छा आप खा
0: हाँ
1: लें,
0: हाँ
1: फिर
0: बहुत
1: भी
0: से
1: वो नुकसान
0: पेशेंट आते हैं,
1: करेगा।
0: वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सलाद भी खाता हूँ टाइम से, मैं जूसेस पीता हूँ, पानी भी बहुत अच्छी मात्रा में लेता हूँ, लेकिन
1: और
0: मैं फिर भी
1: ड्राई
0: परेशान
1: फ्रूट्स भी
0: हूँ।
1: खा रहा हूं।
0: हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, फिर भी आप कहते हैं ये सब करो इससे आराम मिलेगा, पर मुझे तो नहीं मिलता। अब अगर उनसे हम बातचीत करें और तह तक जाएं, तो पता चलता है कि भाई जो चीज़ खाने का जो टाइम है तुम उस पर तो ले ही नहीं रहे हो, तो
1: बिल्कुल।
0: इसलिए वो सही चीज़ें नुकसानदायक साबित हो रही हैं।
1: तो शरीर की जो बॉडी क्लॉक है वो हमें समझनी पड़ेगी, जो
0: बिल्कुल
1: नेचर की क्लॉक है उसको समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह होती है तो चिड़िया चहचहा के जो है हमें जगाना चाहती हैं,
0: बिल्कुल
1: और हम शायद कमरे में एसी चला के उन चिड़ियों की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते।
0: बिल्कुल
1: सूरज की रोशनी जो हमारी खिड़की से दस्तक देती है कि भाई जाग जा, लेकिन हमने पर्दे
0: पर्दे
1: टांग
0: डाल
1: रखे
0: रखे
1: हैं,
0: हैं।
1: तो शायद उन पर्दों को उन चिड़ियों की चहचहाट तक पहुंचने की जरूरत
0: अब
1: है अब,
0: जरूरत है,
1: क्योंकि देर इसमें अगर होती है तो फिर शायद वो बड़ी
0: भुगतेगा
1: घातक हो
0: कौन, शरीर भुगतेगा उसको।
1: और भुगत भी रहा है।
0: बिल्कुल, अगर शरीर ही कष्ट में है तो फिर जीवन सुखमय कैसे हो सकता है।
1: तो कहने का मतलब आपने जो बताया कि लाइफस्टाइल हमारा, जो हमारी जीवनचर्या है, वो हमारा जो खान पान, डाइट, और जो हमारे इर्द गिर्द जो डिजिटल दुनिया है, वो उनकी जो अधिकता है हमारे दैनिक क्रियाकलापों में, उस पर कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वो कारक हैं जो हमारी, आपने कहा कि दो तरह की हेल्थ होती है, एक हमारी पेट की हेल्थ और
0: एक
1: एक
0: ब्रेन
1: दिमाग की
0: की,
1: हेल्थ। तो मानसिक स्वास्थ्य और हमारी गट हेल्थ,
0: गट हेल्थ
1: दोनों ही दोनों इन्हीं के चलते खराब हो रखी
0: खराब
1: है,
0: हो रखी
1: ये
0: है।
1: तो हमें समझ में आ गया। अब बात आती है कि जो हम कह रहे थे कि छोटी छोटी चीजें हम अगर कर लें तो वो हमारी इस जिंदगी को बेहतर कर सकते, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते। तो इसमें योग जो है, ऐसा सुनते हैं, और सुनते क्या, हम पढ़ते भी आए हैं, हमारे शास्त्रों में भी बहुत अच्छे तरीके से ये बातें कही गई हैं, और हम विश्व गुरु भी रहे हैं, और शायद यही वो बातें हैं जिन्होंने हमें विश्व गुरु का दर्जा दिलाया था। आज हमें फिर उनको समझने की जरूरत है कि किस तरह से योग जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी हैं, उनको शायद आप ज्यादा बेहतर बता
0: हाँ
1: पाएंगे।
0: बिल्कुल, हमारा शरीर है इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन लेने का जो तरीका है, ऑक्सीजन को कैरी कौन करेंगे, लंग्स, फेफड़े करेंगे उसको।
1: बिल्कुल
0: और फेफड़े जितने ज्यादा मजबूत बनेंगे उतना ही बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलेगा। बॉडी के अपशिष्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही ज्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर निकल पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम योगा करें। योगा करने से ही हमारे जो लंग्स हैं वो इतने मजबूत बनते हैं, अच्छा आकार भी फैलता है उनका। भाई जैसे जैसे हमारा सीना चौड़ा होगा सांस लेने पर, वैसे वैसे हमारे लंग्स भी बढ़ते हैं। जैसे आप गुब्बारे में हवा भरें, जब वो हवा निकालते हैं ना, तो वो
1: तो
0: पुरानी
1: गुब्बारे का
0: शेप में नहीं
1: साइज जो है
0: आता,
1: वो थोड़ा सा
0: बदल चुका
1: बदल
0: होता है
1: चुका
0: वो।
1: होता
0: तो
1: है।
0: सेम चीज हमारी बॉडी के ऊपर लागू होती
1: तो
0: है,
1: हम लंग्स में जितनी हवा पहले भर रहे हैं
0: भरें
1: तो उसी के हिसाब से हमारी कैपेसिटी
0: बढ़ती
1: बिल्डअप
0: है।
1: होती रहती है।
0: हाँ,
1: जी
0: तो सबसे पहला तो योग का नियम है कि श्वास के ऊपर कंट्रोल होना, उसको कंट्रोल करना,
1: जी
0: कैसे लेना है, कहाँ छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है। योगा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल ही श्वास लेना और छोड़ना होता है।
1: अच्छा, आप जो बता रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है योगा में, अब बीते अगर हम पीछे एक दशक में जाएंगे तो

0: जहाँ पर योगा जो है वो हमारे सबके जिंदगी में फिर से लौटा है। लेकिन शायद जो आप कह रहे हैं कि हमें कब कैसे करना है वो जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: हाँ
0: तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से योग या ध्यान या कुछ और उनके प्रति हमें अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी?
1: देखिए, सबसे पहला नियम तो ये होता है किसी भी कसरत का, चाहे
0: जी
1: वो योगा से हो रही हो या वो दंड बैठक हो या फिर आप जिम जा रहे हैं, कोई भी कसरत खाली पेट सबसे उत्तम बताई गई है आयुर्वेदा में। लेकिन हम इन चीजों को फॉलो आज के टाइम में नहीं कर पा रहे हैं। कुछ खा के एक्सरसाइज करना, कौन सा योगा कब करना है, योगा तो ऐसा है कि खाली पेट वाला भी है और खाने के बाद वाला भी है, तो हमें कौन सा योगा कब करना है इसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा शरीर उसका फायदा ले पाएगा,
0: बिल्कुल
1: नहीं तो वो नुकसानदायक है हमारे लिए। तो इन चीजों का सही जानकारी हमें तभी मिल पाती है जब एक सही योग गुरु हमें मिले और जो ये सारी चीजें हमें बताए,
0: मार्गदर्शन सही दे।
1: मार्गदर्शन सही करें। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी पार्टिकुलर क्लास को ज्वाइन करें, आप नहीं कर सकते या आप मान लीजिए फीस देने में सक्षम नहीं हैं। तो बाबा रामदेव, जिन्होंने योग को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है, सवेरे से उनका टीवी पर प्रोग्राम आता है, सवेरे 5 बजे से आप देखना शुरू कर दीजिए। शुरू तो उनका 3 बजे से हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त से,
0: बिल्कुल,
1: पर आप मत जगिए, आप 5 बजे से ज्वाइन कर लीजिए।
0: जब से आप कर
1: हाँ
0: सकते
1: हाँ
0: हैं
1: वो बहुत
0: वो अपनी
1: छोटी
0: अपनी
1: छोटी
0: सहूलियत
1: चीजें,
0: है,
1: बहुत छोटी छोटी जानकारियां भी बार बार अपने
0: कार्यक्रमों में वो बताते रहते
1: बताते
0: हैं।
1: रहते हैं वो, तो वहां से ज्ञान मिलेगा कुछ। और ज्ञान तो आजकल बिखरा पड़ा है, कहीं से भी ले लीजिए,
0: बस समझना ये है आपको कि वो सोर्स जो है वो ऑथेंटिक होना
1: ऑथेंटिक
0: चाहिए।
1: होना चाहिए।
0: चलिए, ये तो हम श्रोताओं पर छोड़ देते हैं कि किस
1: हाँ
0: तरह उनको अपने इस ऑथेंटिक सोर्स को तलाशना है।
1: बिल्कुल।
0: हम अब आएंगे कि ध्यान और प्राणायाम और योग, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपने शरीर को संतुलित करना चाहते हैं, और ये शायद ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिलो दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। तो क्या प्रभाव पड़ता है अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो?
1: देखिए, ध्यान, जैसे ही हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं, ध्यान भी एक योग है, श्वास को कंट्रोल करना और अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को
0: एक जगह केंद्रित
1: एक
0: करना।
1: जगह केंद्रित करना। कहाँ करना? दोनों आंखों के बीच और नाक से ऊपर, ये जो ग्लैंड होती है यानी दोनों नेत्र बिंदुओं के बीच में, इस पे पूरा ध्यान केंद्रित करना ही ध्यान लगाना होता है। जैसे ही इस प्रक्रिया को हम बाया प्रैक्टिस रोजाना शुरू करते हैं तो हम इसमें सक्षम हो पाते हैं।
0: जी
1: हो सकता है किसी को 1 हफ्ता लगे, किसी को 15 दिन, किसी को 1 महीना, लेकिन ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ध्यान का एकाग्र होना शुरू होता है, हमारे ब्रेन में सेल्स को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। तो जितने भी तनाव हम रोजाना झेलते हैं अपने रोजाना के जीवनचर्या में, चाहे वो जॉब की टेंशन हो, चाहे वो
0: पारिवारिक
1: पारिवारिक
0: समस्याएं हो।
1: समस्याएं हों, वो सब झेलने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वही इस चीज को डिसाइड करती हैं कि कितना तनाव झेल सकते हैं,
0: उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करती।
1: कैपेसिटी बिल्डअप करती हैं, और वो कैपेसिटी ऑक्सीजन से बिल्ड होती है। जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन में जाएगा उतना ही ब्रेन हमारा मजबूत होगा उन टेंशनों को झेलने के लिए, वो किसी भी प्रकार की हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सब लिखित हैं, पुस्तकों में लिखित हैं, एविडेंसेस हैं साइंस के इसके ऊपर।
0: जी। अच्छा, हमारे श्रोता जो है वो सभी आयु वर्ग के हो सकते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें युवा भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। तो क्या इन सब लोगों के लिए, खास जो वर्ग हैं समाज के, उनके लिए क्या योग की या ध्यान करने की क्या अलग-अलग तकनीकें होती हैं या कुछ ऐसा है?
1: देखिए, मैं बताऊं, ध्यान और प्राणायाम एक ही चीज है मेरी नजर में,
0: जी
1: वो कोई भी आयु वर्ग का कर सकता है, लेकिन उसको किस लेवल पे लेके जाना है, बाकी और योगा एक्सरसाइज जो होती हैं वो उम्र के हिसाब से होती हैं। जैसे एक बच्चा है, वो कोई भी फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज कर सकता है, बॉडी को स्ट्रेच कुछ भी दे सकता है वो, तो उसके लिए वो स्ट्रेच वाला योगा हुआ, पावर योगा कह सकते हैं उसको। युवाओं के लिए वो एक अलग तरीके का योगा होता है जिसमें उनको अपनी बॉडी को स्वच्छ रखना है। ऐसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो वो ना तो बॉडी को ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर हम कहें कि भाई आपको ध्यान योग करना है तो उस उम्र में ध्यान लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए अलग तरह के योगा होते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ती है एक सही,
0: मार्गदर्शक की,
1: हाँ,
0: आपको योग के गुरु की तलाश करनी
1: तलाश
0: पड़ेगी।
1: करनी चाहिए किसी
0: अच्छा,
1: भी माध्यम से।
0: ठीक बात। ये तो बात हो गई योग ध्यान
1: जी
0: प्राणायाम
1: जी
0: की।
1: जी
0: अब आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा पे। तो प्राकृतिक चिकित्सा को हमारे श्रोता किस तरह समझें और ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह से कारगर हो सकती है और ये कैसे अलग है थोड़ी और चीजों
1: हाँ
0: से,
1: हाँ
0: वो भी समझना बड़ा जरूरी है।
1: प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का ही

0: एक हिस्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब जो चीजें प्रकृति ने जिस रूप में दी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना, इस्तेमाल करना, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। जैसे एक लौंग है, हर किचन में होती है, दांत में दर्द हो, दाढ़ में दर्द हो, आप उस लौंग को उस दर्द वाले दांत के नीचे दबा लीजिए और बस चूसना है उसे, गोली से अच्छा इम्पैक्ट आपको मिलेगा।
1: जी
0: तो वैसे ही हमारे आसपास प्रकृति के तमाम स्रोत अवेलेबल हैं जो हमें इस चिकित्सा में मदद कर सकते हैं। खान पान, अगर हम बात करें अब से करीब 30-40 साल पुरानी,
1: जी
0: तो दिनचर्या बहुत अच्छी थी उस समय। लोग जल्दी जगते थे, जल्दी सोते थे, जल्दी खाते पीते थे, हर चीज का एक टाइम उनका फिक्स होता था कि इतने से इतने बजे तक खाना खाना है, इसके बाद फिर ये काम करने हैं, फिर ये नींद लेनी है, फिर खाना पीना है, फिर काम करने हैं, सारी चीजें उनकी फिक्स थी। आजकल कुछ फिक्स ही नहीं है।
1: अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब मैं महसूस करता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ाव जो है, प्रकृति में सिर्फ हमारा और प्रकृति का ही जुड़ाव नहीं कहेंगे हम इसे, प्रकृति में हमारे सहचर भी हैं बहुत सारे, जिनको हम पशु पक्षी कहते हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठा के चलना, वो भी शायद इसी प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक हिस्सा है। जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी पुराने लोगों का जो एक शेड्यूल हुआ करता था, अब उसमें उनको सुबह गाय है, भैंस है, बकरी है, तो इन सब की सेवा करने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनको नहलाने धुलाने के लिए उनको समय देना होता था। और गाय की सेवा करना का मतलब है कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये सब अपने आप में एक औषधि के रूप में काम करता है।
0: प्राकृतिक चिकित्सा ही तो है ये,
1: प्राकृतिक चिकित्सा ही है। और जो पहले हम घरों में रहते थे, वो गोबर से उनकी लिपाई होती थी, उनकी पुताई होती थी, तो ये शायद उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन था।
0: हाँ हाँ
1: जो प्राकृतिक चिकित्सा की जिसकी हम आप बात कर रहे हैं,
0: बिल्कुल। अच्छा, पहले कहा करते थे कि ग्रामीण एरिया में लोग बीमार नहीं पड़ते, उसके पीछे वजह यही थी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए गोबर और गौमूत्र से अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता। अगर यही बात हम आज के युग में कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या बोल दिया हमने ऐसा।
1: पुराने ख्यालात का बताते हैं।
0: अच्छा, प्राकृतिक चिकित्सा में और बहुत सारी चीजें आती हैं। खान पान तो सबसे पहले नंबर पर आ ही रहा। हम अपने रोजाना के खान पान में फलों को किस तरह शामिल करते हैं, फल प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है।
1: अच्छा, एक चीज और मैं ऐड कर दूं यहाँ कि आजकल फलों का जो सेवन होता है, हमको ये बताया जाता था कि मौसमी फल खाने चाहिए,
0: मौसमी ही खाने चाहिए,
1: और आजकल किसी भी मौसम में कोई भी फल मिल जाता है, तो ये भी एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: इस चीज का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, अज्ञानता बस हम कुछ कर रहे हैं वो अलग चीज है, चलिए ज्ञान ही नहीं है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता कर रहे हैं
1: तो
0: उसका
1: मूर्ख
0: समाधान कैसे होगा?
1: फिर हम मूर्ख कही जाएंगे।
0: तो ये हमें पता है कि गर्मियों में खरबूज आता है, तरबूज आता है, केला एक ऐसा फल है जो 12 मास होता है,
1: कभी भी खाया जा
0: कभी
1: सकता
0: भी खाया जा सकता है। पपीता एक ऐसा फल है जो कभी भी खाया जा सकता है। प्रकृति ने जितने भी फल बनाए हैं वो बनाए ही इसी प्रकार हैं, मौसम के अनुसार, ताकि हमारे शरीर को उनसे वो एनर्जी मिल सके, वो मिनरल्स मिल सके, वो विटामिन्स मिल सके जिनकी हमें जरूरत है उस मौसम में। गर्मी में वाटर कंटेंट ज्यादा चाहिए होता है, तरबूज भरपूर पानी है, खरबूज
1: खीरा
0: भरपूर पानी है, खीरा कितने अच्छे आते हैं। अगर हम ये बात करें बरसात के मौसम में, तो बरसात के मौसम के लिए अलग खट्टे फल आना शुरू हो जाते हैं उस समय, आलू बुखारा, आड़ू, जामुन, अमरूद, ये सब खट्टे फलों में आते हैं।
1: करौंदा आ जाता है।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: जी
0: तो ये खाने चाहिए। विटामिन सी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बरसाती मौसम में,
1: क्योंकि
0: वो
1: संक्रमण ज्यादा
0: हाँ
1: होता है।
0: संक्रमण ज्यादा होते हैं उस मौसम में। जाड़ों में हमें वो चाहिए जो हमारे शरीर को गर्मी पैदा करे।
1: जी,
0: तो सेब ये उस समय के फल हैं, इनसे हमें गर्मी मिलती है।
1: अच्छा, ये तो हो गई वो चीज जो हम खान पान पे ध्यान दे सकते हैं। कुछ प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ पद्धतियां भी हैं शामिल जो पहले प्रेविलेंट थी। जल चिकित्सा, मसलन एक मिट्टी चिकित्सा होती थी कि पूरे शरीर पे लेप कर देते थे, हैं, हमारे जो गांव में हमें याद है कि जो सिर धोती थी महिलाएं घर में, वो भी एक अलग तरह की मुल्तानी मिट्टी से धोया करती हैं। तो ये सब चिकित्सा भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को या शरीर को,
0: हम सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य ही क्यों बात कर रहे हैं, हम पूरे शरीर की बात कर रहे हैं।
1: जी जी,
0: ये सारी चीजें पूरे शरीर को रक्षित करती हैं किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए, किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी के लिए। आप यकीन मानिएगा, अगर आप मुल्तानी मिट्टी से नहाना शुरू कर दें
1: जी
0: रोजाना, एक हफ्ते में आपका बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा सिर्फ मिट्टी से।
1: ये चीजें हमें समझने की हैं।
0: थोड़ा पानी पीने के क्रम को भी हमें समझना पड़ेगा। नियम है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसा हर एक के शरीर के लिए लागू नहीं होता। अगर आपके शरीर को खाने के बाद पानी की जरूरत है, आपको पानी पीना चाहिए, वो आपके लिए औषधि समान होगा। मेरे शरीर को नहीं जरूरत है तो मुझे नहीं पीना है, तो ये

0: सारी चीज़ें शरीर टू शरीर यानी बॉडी टू बॉडी
1: डिफर करते
0: डिपेंड
1: हैं।
0: करती हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारा शरीर क्या मांगता है। बॉडी की नीड का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें भूख लग रही है 12 बजे, पर हमारा लंच तो होगा 2 बजे, फिर क्या करें? तो उसका तरीका है कि भाई आप फल फल हमको सवेरे 8 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक इस्तेमाल करने चाहिए अधिकता में। थोड़ा बहुत तो कभी भी खा सकते हैं। सलाद सलाद हमको शाम को 7 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं
1: आजकल तो दावत ही शुरू होती है 8 बजे,
0: है।
1: और फिर वहां भी सलाद खाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं
0: हाँ।
1: है।
0: बहुत से पेशेंट मेरे पास आके कहते हैं कि भाई हम तो सलाद बहुत खाते हैं डॉक्टर साहब, रात को तो कभी नहीं मिस करता सलाद को, मैं कभी कभी तो सलाद खा के सो जाता
1: वहीं तो
0: हूँ।
1: गड़बड़ कर रहे हैं।
0: अब आप बताइए, जिस समय पानी की जरूरत ही नहीं है शरीर को, उस समय आप पानी ले रहे हैं। सलाद में 60% से ज्यादा पानी होता है, तो इतने पानी की जरूरत रात को नहीं होती कभी भी। और नियम है कि शाम को 7 बजे के बाद जैसे सूरज डूबे खाना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ पी सकते हैं पानी दूध, तो केवल इतना ही हम कर लें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब अगर कोई बीमारी लग भी गई है तो उसके लिए प्रकाश चिकित्सा होती है। आप धूप में बैठ जाएं घंटे भर के लिए, सर के ऊपर ठंडा तौलिया रख के, आप देखिए शरीर में कितने मूलभूत परिवर्तित महसूस करेंगे। आप एक अलग तरह की ऊर्जा आप महसूस करेंगे अपने शरीर में।
1: दरअसल डॉक्टर साहब ये बातें ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में समय जो है बड़ा कीमती हो गया है, और ये जो चीज़ें हैं कि अपने आप को धूप में 5 मिनट बिठाएं, वो 5 मिनट भी आदमी निकालना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास वो 5 मिनट भी नहीं है शायद, तो वो उसको टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा।
0: हाँ, नहीं वो 5 मिनट तो मोबाइल देखने में जा रहे हैं
1: हाँ, कि जो आपने 5 के 15 मिनट मोबाइल देखने में निकाल दिए, उसमें से कम 5 मिनट निकालिए जहां पर अपने आप को आप समय दे पाए, अपने शरीर को उस तरह जिस तरह प्रकृति चाहती है उस तरह उसके साथ सामंजस्य बिठा पाए।
0: अगर हम उगता हुआ सूरज देखते हैं रोज, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा हो गई। इंफ्रारेड रेज सबसे ज्यादा होती हैं, जो हमारे बॉडी के इन्फेक्शन को इरेज करती हैं। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा नहीं होती सवेरे के टाइम में, तो नुकसान होने के चांस बहुत कम हो गए हमारे शरीर में।
1: विटामिन डी भी मिल जाती है।
0: विटामिन डी मिलेगी, विटामिन डी बनती है बॉडी में सूर्य के प्रकाश से।
1: जी, आजकल तो सैसे लेने पड़ते हैं
0: हाँ
1: विटामिन
0: हाँ
1: डी के,
0: हाँ हाँ
1: सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम शायद धूप में अपने आप को एक्सपोज ही नहीं कर रहे हैं।
0: हाँ ये जितनी भी जांचें आप करा के देखेंगे ना, तो लगभग हर स्त्री हर पुरुष में विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये दोनों ही कम पाए जाते हैं। फलों से दूरी है, सलाद से दूरी है, इसलिए ये सारी चीजें कम हैं। अब इसके लिए सप्लीमेंटेशन लेना शुरू कर देते हैं।
1: जी, फिर कभी इस पे
0: हाँ
1: आएंगे।
0: हाँ हाँ
1: अब हम आते हैं कि भाई अगर हमें प्राकृतिक चिकित्सा या योग से जुड़ना है एक सामान्य व्यक्ति को, तो कैसे शुरुआत की जा सकती है?
0: एक पहले स्कूलों में पीटी हुआ करती थी।
1: जी
0: पीटी भी अपने आप में एक योगा होता है। अगर हम कुछ ना करें, हम कुछ ना जानें, तो थोड़ा अपने बचपने को याद कर लें और जो उछल कूद पीटी में करते थे वो करना शुरू कर दें। इतना तो हो गया योगा के लिए। अगर हम बात करें प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, तो हम अपने खान पान को केवल नियमित कर लें। दोपहर का खाना किसी भी कीमत पर 2 से 2.5 लास्ट हम खा लें। शाम का खाना 7 बजे तक हम ले लें, और सलाद खाने के साथ न खा के
1: अलग से
0: अलग
1: खाएं।
0: अलग खाएं। पहले सलाद खाएं फिर खाना खाएं। दोनों के ही बीच में कोई टाइमिंग गैप नहीं रखनी है। पहले सलाद फिर खाना, जितना भाई मन। अगर हम इतना ही करना शुरू कर दें तो एक हफ्ते में हमारे शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं, और वो दिखाई देते हैं। सामने वाले को भी और खुद को तो महसूस होना शुरू हो ही जाता है।
1: हम देखना नहीं चाह रहे बस,
0: देखना नहीं चाह रहे, देखिए जानना पड़ेगा, और सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा,
1: उनको अपना
0: मानना
1: अमल में लाना
0: पड़ेगा,
1: पड़ेगा, अमल में
0: मानना
1: लाना पड़ेगा।
0: पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को एक चीज़ ये समझाएं कि हमारे शरीर की आवश्यकता क्या होती है, हमको कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, हमारे शरीर को मतलब कितनी ज़रूरत होती है, वो भी हमें जानना ज़रूरी है।
0: इसको। हम कुछ यूं समझ सकते हैं, जैसे एक 60 किलो का व्यक्ति है,
1: जी
0: तो उसके शरीर के वजन के अनुसार 60 × 10 600 ग्राम। 600 ग्राम उसको ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए, चाहे वो फल ले या कुछ भी उसकी जो इच्छा है, पर ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ सबसे हैवी होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे डे की एनर्जी को डिसाइड करता है।
1: 600 ग्राम, अगर
0: छः सौ
1: 60 किलो
0: ग्राम
1: किसी का वजन है उससे 10 टाइम ये कर लें,
0: हाँ, दस
1: उतने
0: गुना
1: ग्राम,
0: करके उतना ग्राम कर ले
1: ठीक
0: उसको।
1: है।
0: और अगर हम लंच की बात करें, तो 300 ग्राम 60 किलो व्यक्ति के लिए सलाद हुआ, वजन गुणा 5।
1: यानी 60 किलो वजन है, इंटू 5 कर लें,
0: हाँ हाँ
1: उतने ग्राम हमें
0: सलाद
1: सलाद
0: खाना
1: खाना
0: ही
1: है।
0: खाना है।
1: जी,
0: उसके बाद में जितनी भूख है उसकी, वो घर का बना हुआ खाना खाए, सादा सिंपल, जितना
1: शरीर फिर जितना ग्रहण करे,
0: ग्रहण करे।
1: ठीक।
0: सलाद पहले खानी है, तुरंत बाद खाना।

0: खाना है,
1: बस ये ध्यान
0: गैप
1: रखना
0: नहीं
1: है,
0: रखना है।
1: गैप नहीं करना कोई। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो एक 60 किलो के व्यक्ति के लिए लगभग 1200 ग्राम खाना पर्याप्त होता है। अब उससे अगर उसे ज्यादा लेना है तो फल और सलाद की मात्रा तो बढ़ा सकता है, लेकिन पके हुए भोजन की मात्रा को उसे नियमित करना पड़ेगा, संयमित करना पड़ेगा।
0: मतलब हमारे सलाद के बाद का जो
1: हाँ
0: आइटम
1: हाँ
0: था
1: हाँ हाँ
0: जी।
1: हाँ जो घर का बना हुआ है उसको नियमित और संयमित करना पड़ेगा। अगर दो खानी है तो दो ही खानी है।
0: जी
1: और एक नियम है आयुर्वेद का कि जो हमारा पेट है 50% कच्चे भोजन से भरना चाहिए। कच्चे भोजन का मतलब फल और सलाद, 25% पका हुआ भोजन,
0: 50+25
1: 25
0: जी
1: 75% हो गया, और बाकी का 25% हमेशा खाली रहना चाहिए हवा और पानी
0: पानी।
1: के लिए। हम कुछ भी खाएंगे गैस बनाएगा, पानी चाहिए उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो इतना पेट तो हमें खाली छोड़ना होगा।
0: आजकल तो खाली छोड़ते ही नहीं।
1: कहाँ छोड़ते हैं, ओवर ईटिंग, चीज में स्वाद आना चाहिए, डस्टबिन की तरह भरते जाते हैं।
0: पेट के लिए नहीं, जीभ के लिए खा रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ हाँ
0: वो बताते हैं ना कि भूख से कोई नहीं मरता, ओवर ईटिंग से ही हम मरते
1: ओवर ईटिंग
0: हैं।
1: से मरते
0: और
1: हैं,
0: वही सारी समस्याओं की जड़
1: जड़
0: है,
1: है
0: जितने भी रोग हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे
1: पेट
0: पेट से ही
1: से,
0: शुरू हो रहे हैं।
1: सारे पेट से शुरू होते हैं। जो उदर फैक्ट्री है ना, पेट
0: जी
1: की फैक्ट्री, यही रोगों का जनक है और यही इलाज भी करता है। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें इसमें इतना ज्यादा खा के रोग डालने हैं या संयमित और नियमित खा के उन रोगों को भगाना है, ये डिसीजन हमारा रहेगा।
0: अब जैसे हम बात कर रहे थे कि योग जो है थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य को हमारे संतुलित जरूर करता है, तो आजकल जो चूंकि तनाव से भरा माहौल है, हर तरफ हमारे टेंशन ही टेंशन है, चिंता से आदमी जो है जला जा रहा है, तो ऐसे में कुछ रोजमर्रा की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ छोटे मोटे क्या वो तरीके अपना सकते हैं कि इन टेंशन जैसी चीजों से, या कहें कि जो चिंता हमें सताती हैं, उनसे हम दूर हो सकते हैं।
1: देखिए, जब भी हम चिंताग्रस्त या तनावग्रस्त हों, अगर हम भर के सांस खींचें तो सिर्फ खींचने से और छोड़ने से ही,
0: लंबी सांस
1: हाँ जी हाँ जी, हमारी चिंताएं और जो तनाव है सर का
0: जी
1: वो कम हो जाता है सिर्फ एक बार खींचने से। तो फिर क्यों ना यहीं से शुरुआत कर दें,
0: बिल्कुल
1: इतना तो कर ही सकते हैं। इसके लिए तो किसी योगाचार्य की भी जरूरत नहीं है, यहीं से शुरू करें,
0: जी,
1: सांस
0: सबसे
1: खींचें।
0: आसान तरीका है कि जब भी हमें लगे कि हमको कहीं तनाव है, हमको कहीं कोई चिंता सता रही है, तो लंबी ठंडी सांस लीजिए
1: सांस भरें और
0: और
1: छोड़ें,
0: छोड़ें।
1: और ये प्रक्रिया 8 से 10 बार कर लें।
0: बहुत बढ़िया तरीका आपने सुझाया है हमारे श्रोताओं को। अब वही बात है कि हमारे व्यस्त जीवन में इसको किस तरह अमल में लाना है,
1: अमल में
0: ये तो
1: लाना
0: सबको
1: है,
0: सोचने की ज़रूरत
1: ये
0: है।
1: अपने ऊपर
0: आपको
1: है,
0: वो
1: ये तो
0: समय तो निकालना पड़ेगा कि जहाँ 2-4 बार आप सांस खींचें और छोड़ें, तो
1: कुर्सी पर
0: कम से
1: बैठे
0: कम
1: बैठे
0: बैठे
1: कर
0: बैठे
1: सकते
0: ही
1: हैं ये
0: सही।
1: काम,
0: हाँ, ये करें तो सही।
1: हम और आप चाहें तो यहां बैठ के कर सकते हैं।
0: और डॉक्टर साहब, जो सबसे मजे की बात है कि वो पीढ़ी जिसके कंधे पर दारोमदार है इस देश को आगे ले जाने का, युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं, वो सबसे ज्यादा त्रस्त है मानसिक
1: हाँ
0: स्वास्थ्य से, उसको ज्यादा सबसे है टेंशन, वो सबसे ज्यादा जूझ रहा है इस डिजिटल गैजेट्स की दुनिया से,
1: हाँ
0: तो उनको ज्यादा जो अनिश्चितताएं हैं उनके इर्द गिर्द, उनसे निबटने की, उनसे जूझने की आवश्यकता है, तो उनके लिए आप अगर कुछ मार्गदर्शन के लिए बताना चाहें।
1: जी, देखिए, सबसे पहले तो युवा पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा कि टेंशन सिगरेट और शराब पीने से कम नहीं होती।
0: जिसकी शरण में वो जाते हैं अब।
1: जाते हैं तो पहले तो जहां आप जा रहे हैं उस जगह को बदलिए, और मैं फिर वही कहूंगा कि अनुशासन तो लाना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए भी अनुशासन की जरूरत पड़ती है कि नहीं भाई, हम फिक्स करते हैं टाइम टेबल को, इतने घंटे हमें ये पढ़ना है, इसके बाद फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। जब ये अनुशासन पढ़ाई में हो सकता है तो ये शरीर के लिए क्यों नहीं हो सकता? हमें पूरा जीवन ये शरीर के साथ चलना है, इस चीज को हमें समझना ही पड़ेगा। और जिसके साथ पूरा जीवन गुजारना हो, अगर वही बीमार है तो फिर कैसे गुजारेंगे आप?
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और प्राकृतिक उपचार। इस विषय पर डॉक्टर रामवीर सिंह से बात कर रहे थे अनिंद्र सिंह। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। संध्या के 4 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं सीआरपीएफ की तरफ से जय हिंद बोलता हूं। और ये मैं एक प्योर नॉस्टेल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, और जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वहीं नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूं कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल

0: सिक्योरिटी फोर्स है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस बल का पार्ट हूं, मैं इस बल का हिस्सा हूं और मुझे यहां कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी, होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं, और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये नल मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह, और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार है भेजिए जरूर।

संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं।

0: हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था वर्दी की तरफ, एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था, बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है चारों तरफ, आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने ले लिया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती हैं, तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तीन चार पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू, आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीजें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ?
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर, सीआरपीएफ ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल वीआईपी सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें एनएसजी और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है, बाकी ये जितने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और इन सब की सिलेक्शन उस यूपीएससी के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास वन गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?

0: ये मैं एमबीए करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था. एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी. तो ऑफ कोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे. तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई. और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और
1: गर्व की बात है।
0: गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात. तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे, और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था. मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए. तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया.
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकारी का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था, उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी के भाव थे. मेरे मेरे मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो. और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ, देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे. तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे, और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था.
1: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं, वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा, ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके एमबीए या फिर आप मान लीजिए आपके जो आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता सीआरपीएफ तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
0: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने. आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था. मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था. खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था. तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में. वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं. आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व तो एक डिफरेंट, एक
1: अलग
0: अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है. तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा सीआरपीएफ में भी. यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: अपने,
0: हाँ, बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी. उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है.
1: जी, तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा. इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है, आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए.
0: जी जी
1: जी, तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए, और तमाम बच्चे, यूथ

या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही एक वीर यहां पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियार और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं।

0: है। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है, और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, सीआरपीएफ, जब आप सीआरपीएफ का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं सीआरपीएफ के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ, तो सबसे पहले हम सीआरपीएफ को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें सीआरपीएफ के बारे में।
1: सीआरपीएफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस सीआरपीएफ की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में, जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे सीआरपीएफ के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यूई थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है, और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को 1 अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का, जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
0: जी, निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे, और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हो, कौन कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए, सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है, और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया, और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक, अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा, फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी मतलब

0: अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेटों के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना।
0: वाह,
1: क्या बात है। तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते, होने के अलावा सीआरपीएफ का एक

0: मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाना चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: वाह क्या
0: बात। तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: वाह क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअली और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है, और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है, सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके? तो क्या आपके किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे, क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिया आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है। चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जिसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो वो ना करें। तो आप

0: देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के। CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है। आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: वाह क्या बात है। जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। कैसा होता है?
0: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर। आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड, तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिस्ट्रप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी।
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है। आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन करता, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत। बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है। क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वो अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जुबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहा हूं, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ आप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं सीआरपीएफ ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि

0: हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
1: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र में बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
0: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और मैं थैंकफुल हूँ।
1: जी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी, आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी, आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
0: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
1: हाँ जी
0: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरा, मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिनाका गीत माला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताजा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूं मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए।
1: बिल्कुल जी। और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
1: बिल्कुल
0: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स से एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है।
0: निसंदेह
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज आपका, आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय

0: उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी। अगर आप कहें तो आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो, या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से।
1: धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद,
0: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है। आइए सुनते हैं अब हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को

0: अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना हो।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार्क ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची।

शाम 5:10 का समय रहेगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या का। शाम 5:30 का समय रहेगा हमारे युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा महिला स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता। साथी होगी हिबा जाफरी की वार्ता, जिसका विषय रहेगा स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में बाधक है कुपोषण। साथी होंगे सेगमेंट्स आज का सवाल।

क्वेस्ट वर्ल्ड, हेल्थ प्लस और जानिएगा आज की टिप। इस सभी के साथ साथ आनंद लीजिएगा अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम का समय याद रखिएगा शाम 5:30।

शाम 6 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम्यालोक का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा ईद उल अजहा बकरीद और महिला के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस और विश्व भूख दिवस, विश्व महावारी स्वच्छता दिवस। साथ ही होगी श्रीमती नीरज सिंह से वार्ता, जिसका विषय होगा गौ आधारित प्राकृतिक खेती। साथ ही होंगे सेगमेंट्स नई खोज, मंडी भाव, मौसम का हाल और आनंद लीजिएगा कुछ लोकगीतों का भी। शाम 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मजदूर मंडल का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा श्रमिक और सेहत। साथ ही जानकारी लीजिएगा देश दुनिया की, जानिएगा आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, कुछ सेहत टिप्स और आनंद लीजिएगा अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का। शाम 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज की वार्ता का विषय होगा हम, हमारा भोजन और शून्य भूख। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अनुपम सारस्वत। शाम 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, बकरीद का त्योहार और कुर्बानी के मायने, जिसमें सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी से बातचीत करेंगे अनिंद्र सिंह। रात्रि 8 बजे का समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम शब्द गीत का। रात्रि 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। कंट्री वाइज इनसाइट्स आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका सर्जना का, जिसमें आज होगी वार्ता जिसका विषय होगा संस्कृति का सजीव दस्तावेज है रंगमंच। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुशील कुमार सक्सेना और होगी कहानी जिसका विषय होगा कायाकल्प। कहानीकार होंगे अरुण डंग और होगा काव्य पाठ रजाक अहमद द्वारा। रात्रि 10:30 का समय रहेगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज आप सुनिएगा ख्याल गायन। राग भवानी बहार में कलाकार होंगे जसराज पंडित और सुनिएगा राग बागेश्री में, जिसमें आज की कलाकार होंगी शुभ्रा तालेगांवकर। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या, जिसमें आज का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गुड्डी से। वाणी जयराम की आवाज में गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है वसंत देसाई ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म द बर्निंग ट्रेन से, सुषमा श्रेष्ठ, पद्मिनी कोल्हापुरे और साथियों की आवाज में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है।

कार्यक्रम सुर संध्या में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अंकुश से शेखर साव का और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज में। अभिलाष के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कुलदीप सिंह ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म अमर अकबर एंथनी से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: टूटी हुई तस्वीर बनती है तेरे दरबार में बिग

श्रोताओं, अमर अकबर एंथोनी फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संध्या। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, सुबह की भागदौड़ हो, कॉलेज की टेंशन हो, ऑफिस का काम हो या घर की जिम्मेदारियाँ, हमारी जिंदगी इतनी तेज हो चुकी है कि अक्सर हम दूसरों का तो ध्यान रखते हैं लेकिन खुद को ही भूल जाते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि घर की माँ, बहन या बेटी

नमस्कार दोस्तों, सुबह की भागदौड़ हो, कॉलेज की टेंशन हो, ऑफिस का काम हो या घर की जिम्मेदारियां, हमारी जिंदगी इतनी तेज हो चुकी है कि अक्सर हम दूसरों का तो ध्यान रखते हैं लेकिन खुद को ही भूल जाते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि घर की माँ, बहन या बेटी सबका ख्याल तो रखती हैं लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो अक्सर कह देती हैं, अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। और यही मैं ठीक हूँ कई बार बहुत बड़ी परेशानी की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम फिटनेस, डाइट, स्किन केयर जैसी बातों पर खूब चर्चा करते हैं लेकिन महिलाओं की असली स्वास्थ्य समस्याओं पर खुलकर बात करने से आज भी कई लोग हिचकिचाते हैं। पीरियड्स हो, एनीमिया हो, मानसिक तनाव हो या हार्मोनल बदलाव, कई बातें आज भी घरों में धीरे से कही जाती हैं या बिल्कुल दबा दी जाती हैं। और शायद इसी सोच को बदलने के लिए हर साल आज के दिन महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं को उनकी सेहत के प्रति जागरूक किया जा सके और ये समझाया जा सके कि उनका स्वस्थ रहना पूरे परिवार और समाज के लिए कितना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसी खास विषय पर आज युववाणी यानी वॉइस ऑफ यूथ में हम करेंगे खुली और ज़रूरी बातचीत। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी शर्मा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा का यूथ स्पेशल कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, हम महिला स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर जागरूकता की ज़रूरत पड़ क्यों रही है, क्योंकि आज भी बहुत सी महिलाएं अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को इतना नज़रअंदाज कर देती हैं जिसकी क्या बात करें। कई बार जानकारी की कमी होती है, कई बार शर्म या डर और कई बार जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि वे खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती। दोस्तों, भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। इसके अलावा PCOD, थायराइड, तनाव, डिप्रेशन, हड्डियों की कमज़ोरी जैसी समस्याएं भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन दुख की बात पता है क्या, कि लोग इन समस्याओं को सामान्य समझकर टाल देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर महिला स्वास्थ्य में हमें ध्यान किन चीज़ों का रखना है? क्या हम उन्हें ऐसे ही समस्याओं को सामान्य मानकर टालते रहना है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ जो महत्वपूर्ण है वह है सही खान पान। पोषण से भरपूर भोजन, हरी सब्जियाँ, फल, पर्याप्त पानी और आयरन व कैल्शियम से भरपूर चीज़ें महिलाओं के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है नियमित जांच। अक्सर लोग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाना कई गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही रोक सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, हर समय मुस्कुराने वाला इंसान अंदर से खुश हो ये ज़रूरी नहीं। घर और काम के बीच संतुलन बनाते बनाते कई महिलाएं मानसिक तनाव से गुजरती हैं। ऐसे में परिवार का सहयोग, हमारा सहयोग, खुलकर बातचीत और आराम ही उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात है कि महिलाओं को अपनी सेहत के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है, मानसिक तनाव कमज़ोरी नहीं है और डॉक्टर से सलाह लेना कोई डर की बात नहीं है। जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। एक माँ स्वस्थ होगी तो बच्चों की परवरिश बेहतर होगी, एक बेटी स्वस्थ होगी तो वह अपने सपने पूरे कर पाएगी और एक मजबूत महिला ही एक मजबूत समाज की पहचान बनती है। तो आइए दोस्तों, आज इस खास दिन हम सब सिर्फ महिलाओं की सेहत पर बात ही ना करें बल्कि ये संकल्प भी लें कि हम अपने घर की हर महिला को उनकी सेहत के प्रति जागरूक करेंगे, उन्हें ये महसूस कराएंगे कि उनका स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना परिवार के बाकी लोगों का। और दोस्तों, जब बात संकल्प की, प्रेरणा की चल रही हो तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम आपसे एक छोटा सा सवाल भी पूछना चाहेंगे। आज उस महान व्यक्तित्व की जयंती है जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और देश सेवा की मिसाल कायम की थी और जिनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं, तो क्या

0: जानते हैं कि वो महान व्यक्तित्व कौन है? यदि नहीं तो सोचिए, इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं युववाणी वॉइस ऑफ यूथ, और आज हम बात कर रहे हैं महिला स्वास्थ्य और जागरूकता की। दोस्तों हमने जाना कि सही जानकारी, सही खान पान और समय पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो एक और ऐसी गंभीर समस्या है जो किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश के विकास को प्रभावित करती है, और वो है कुपोषण। क्योंकि जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता तो उसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं बल्कि शिक्षा, कार्यक्षमता और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। एक कमज़ोर और कुपोषित समाज कभी मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हिबा जाफरी। तो चलिए जानते हैं इनसे स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में बाधक है कुपोषण के बारे में।
3: श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह पंक्तियां भारत में गरीबी तथा भूख की दुख में दशा का जीवंत वर्णन कर रही हैं। अगर पेट खाली हो और दिमाग को पोषण न मिले तो फिर गणित का सवाल हो या जिंदगी का हिसाब, सब गड़बड़ हो जाएगा। सोचिए, जो बच्चा दूध की जगह सिर्फ नमकीन पानी पीकर बड़ा हो, वो राष्ट्र का भविष्य कैसे बनाएगा? कुपोषण सच में पूरे देश की बैटरी लो कर देता है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें या तेज रफ्तार इंटरनेट में नहीं बल्कि वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य में छिपी होती हैं। जब नागरिक स्वस्थ, सशक्त और ऊर्जावान हों तभी वो शिक्षा की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, उद्योग की गति दे सकते हैं, विज्ञान और तकनीक में नई क्रांति ला सकते हैं। लेकिन अफसोस, भारत जैसे विकासशील देश में आज भी कुपोषण एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो हमें पीछे खींच रही है। यह केवल बच्चों की हड्डियां ही कमजोर नहीं करता बल्कि हमारे सपनों, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति की प्रगति को भी कमजोर बना देता है। कुपोषण का अर्थ है शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में न मिलना। यह स्थिति या तो अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन के रूप में प्रकट होती है या भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, अथवा अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन के रूप में, जब अत्यधिक असंतुलित भोजन से मोटापा और अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। भारत में मुख्यतः अल्प पोषण ही प्रमुख समस्या है। स्वतंत्रता के 7 दशक बीत जाने के बावजूद भारत में कुपोषण की स्थिति विशेषकर बच्चों और महिलाओं के बीच आज भी गंभीर चिंता का विषय है। भले ही भूख और कुपोषण की दरों में पहले की तुलना में कुछ कमी आई हो, लेकिन भारत अब भी विश्व कुपोषित आबादी वाला देश बना हुआ है। ऐसे समय में जब पूरा देश विश्व गुरु बनने का सपना संजो रहा हो, तब भी यदि करोड़ों लोगों को पेट भर भोजन और पोषक आहार न मिल सके तो यह सपना अधूरा ही रहेगा और समाज के लिए अन्यायपूर्ण भी। आखिरकार मनुष्य चाहे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म की ऊंचाइयों को क्यों न छूले, उसकी पहली और बुनियादी आवश्यकता संतुलित और पर्याप्त आहार ही है। आज़ादी के 79 वर्ष बाद भी भारत भूख और कुपोषण से जूझ रहा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर और गंभीर श्रेणी में था। 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 31-35% बच्चे अविकसित और 19% बच्चे कम वजन से ग्रस्त हैं। NFHS 5 के अनुसार 7% बच्चे गंभीर रूप से क्षीण हैं, जबकि 23% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है जिससे कुपोषित शिशुओं का जन्म होता है। महिलाओं व किशोरियों में अनीमिया व्यापक है। लगभग 57% महिलाएं और 67% छोटे बच्चे एनीमिक हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि कुपोषण राष्ट्र की प्रगति को कमजोर बना रहा है। कुपोषण एक बहुआयामी समस्या है जिसके पीछे अनेक कारण हैं। गरीबी और अशिक्षा के चलते गरीब परिवार पर्याप्त व संतुलित भोजन नहीं ले पाते और पोषण की जानकारी का भी अभाव रहता है। गंदगी, दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से स्थिति और बिगड़ती है। बाल विवाह, लिंग भेदभाव और असंतुलित आहार की प्रवृत्ति भी कुपोषण को बढ़ावा देती है।

0: साथ ही जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भोजन की उपलब्धता घट जाती है, जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है। कुपोषण के कुछ परिणाम हैं। नंबर 1, शारीरिक प्रभाव। बच्चों में विकास रुक जाता है, वो कमजोर और बीमार रहने लगते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं और शिशुओं में जन्म के समय कम वजन का होना पर्याप्त है। नंबर 2, मानसिक प्रभाव। मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है, जिससे स्मरण शक्ति, सीखने की क्षमता और एकाग्रता पर असर पड़ता है। बच्चे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं और भविष्य में कुशल मानव संसाधन नहीं बन पाते। नंबर 3, सामाजिक प्रभाव। कुपोषित व्यक्ति समाज और परिवार पर बोझ बन सकता है, जिससे सामाजिक असमानता और निर्धनता की स्थिति बनी रहती है। नंबर 4, आर्थिक प्रभाव। अस्वस्थ श्रमिक वर्ग राष्ट्र की उत्पादकता घटा देता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और गरीबी और कुपोषण एक दुष्चक्र चलता रहता है। भारत सरकार ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। नंबर 1, ICDS यानी एकीकृत बाल विकास योजना। बच्चों और माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करना। नंबर 2, मिड डे मील योजना यानी विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। नंबर 3, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। नंबर 4, पोषण ट्रैकर और तकनीक का उपयोग, वास्तविक समय में बच्चों की स्थिति की निगरानी करना। नंबर 5, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना। कुपोषण से मुक्ति के कुछ उपाय भी हैं। नंबर 1, गरीबी उन्मूलन, रोजगार और आय के अवसर बढ़ाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नंबर 2, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाना। नंबर 3, स्वच्छता और शुद्ध पानी यानी बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। कुपोषण ऐसा है जैसे पेड़ की जड़ों को दीमक लग जाए। ऊपर से पेड़ चाहे हरा दिखे, पर अंदर ही अंदर वो खोखला होता रहता है। अगर हमें भारत को मजबूत बरगद जैसा बनाना है, तो सबसे पहले इसकी जड़ों यानी नागरिकों के स्वास्थ्य को मजबूत करना होगा। कुपोषण का अंत ही भारत की नई शुरुआत है। जब हर थाली में अनाज और हर जीवन में पोषण होगा, तभी भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि विश्व का मार्गदर्शक भी बनेगा।
1: दोस्तों, हिवा जाफरी की इस बातचीत से हमें ये समझने का अवसर मिला कि कुपोषण सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि देश के विकास के रास्ते में खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बात को समझा जाए तो स्वास्थ्य और भोजन का रिश्ता बहुत गहरा है दोस्तों, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य तभी संभव है जब हर व्यक्ति तक पर्याप्त और पौष्टिक भोजन पहुँच सके। लेकिन सोचिए, आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें दिन में 2 वक्त का खाना तक सही तरीके से नहीं मिल पाता। कहीं लोग भूख से जूझ रहे हैं तो कहीं कुपोषण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। और इसी गंभीर मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल आज के दिन विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ भूख की समस्या के बारे में बात करना नहीं, बल्कि ऐसे समाधान ढूंढना भी है जिससे हर व्यक्ति तक भोजन पहुंच सके। और जब समाधान की बात आती है तो भारत सरकार कैसे पीछे रह सकती है? दोस्तों, भारत में भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था काम करती है जिसे कहते हैं PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने राशन की दुकानों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जहाँ सरकार द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। दरअसल दोस्तों, यही व्यवस्था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाती है। अब सवाल आता है कि आखिर PDS सिस्टम है क्या, एक्चुअली में क्या है? तो सरल शब्दों में कहें तो ये सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों तक गेहूँ, चावल, चीनी और अन्य ज़रूरी खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर पहुँचाई जाती है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश में जहां बड़ी आबादी आर्थिक चुनौतियों का सामना करती है, वहां PDS सिस्टम लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बना है। खासकर दोस्तों, कोरोना काल को तो हम भूल ही नहीं सकते। हमने देखा कि किस तरह राशन व्यवस्था ने करोड़ों लोगों तक पहुँचाया भोजन और उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब बात करते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, फिर इसे

गोदामों में सुरक्षित रखा जाता है और उसके बाद राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वह है राशन कार्ड, जिससे ज़रूरतमंद परिवारों की पहचान हो सके। लेकिन दोस्तों, हर व्यवस्था की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियाँ हैं। कई जगहों पर लोगों को पूरा राशन नहीं मिल पाता, कहीं जानकारी की कमी होती है तो कहीं भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। हालांकि अब डिजिटल सिस्टम और आधार लिंकिंग जैसी व्यवस्थाओं के जरिए इसे और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज़रूरी बात है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है कि कोई भूखा ना रहे। अगर हमारे आसपास कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करना भी मानवता है, क्योंकि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है दोस्तों। तो विश्व भूख दिवस हमें ये याद दिलाता है कि विकास तभी सही मायनों में सफल होगा जब हर व्यक्ति को सम्मान के साथ भोजन मिल सके, और PDS जैसी व्यवस्थाएं इसी दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए आज हम भी संकल्प लें कि भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, जागरूक नागरिक बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अब प्रोग्राम में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ले चलते हैं आपको मनोरंजन की दुनिया में।

0: दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अभी हमने बात की भूख, पोषण और स्वास्थ्य की, और अगर हम सच में एक स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं तो हमें उन विषयों पर भी खुलकर बात करनी होगी जिनके बारे में आज भी लोग झिझक महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जरूरी बातें सिर्फ इसलिए दबा दी जाती हैं क्योंकि समाज उन्हें खुलकर बात करने वाला विषय ही नहीं मानता। लेकिन सच तो ये है कि जागरूकता वहीं से शुरू होती है जहां चुप्पी खत्म होती है, और ऐसा ही एक बेहद जरूरी विषय है महावारी स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन। दोस्तों, हर साल आज के दिन विश्व महावारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अब इस दिन का उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों? लोगों को ये समझाना कि पीरियड्स कोई शर्म या छुपाने की बात नहीं बल्कि महिलाओं के जीवन की एक सामान्य और प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। लेकिन आज भी दोस्तों हमारे समाज में पीरियड्स को लेकर कई मिथक और गलत धारणाएं मौजूद हैं। कई लड़कियां इस विषय पर खुलकर बात नहीं कर पाती, स्कूल जाने से बचती हैं और सही जानकारी के अभाव से अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा बैठती हैं। अब सवाल आता है कि आखिर महावारी स्वच्छता इतनी जरूरी क्यों है? दोस्तों, अगर इस दौरान साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो संक्रमण और कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सही जानकारी और स्वच्छता दोनों बहुत जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है साफ और सुरक्षित सैनिटरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, चाहे सैनिटरी पैड हो, टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप। जो भी इस्तेमाल करें उसे समय समय पर बदलना और साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जागरूकता दोस्तों, अक्सर गांव और छोटे क्षेत्रों में आज भी लड़कियों को पीरियड्स के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती। कई बार वे डर जाती हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके शरीर में क्या हो रहा है। ऐसे में परिवार, स्कूल और समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस विषय पर खुलकर और सही तरीके से बात की जाए। दोस्तों, पीरियड्स कोई कमजोरी नहीं है, ये महिलाओं की प्राकृतिक जैविक प्रतिक्रिया है और इसके सामान्य रूप से स्वीकार करना ही एक जागरूक समाज की पहचान है। तो सबसे जरूरी बात इस दौरान महिलाओं को सिर्फ स्वच्छता ही नहीं बल्कि भावात्मक सहयोग का भी जरूरत होती है। कई बार शरीर में दर्द, थकान और मूड बदलाव जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे में परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत मायने रखता है। आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवस पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इस विषय को शर्म नहीं बल्कि जागरूकता और सम्मान के नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब बातचीत खुलेगी। और दोस्तों, इसी सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वापस चलते हैं मनोरंजन में।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

दोस्तों आप पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में, जहां हम जानेंगे आज के सवाल का उत्तर। तो हमने आपसे पूछा था कि आज किस महान व्यक्तित्व की जयंती है जिन्होंने अपने विचार, साहस और देशभक्ति से युवाओं को प्रेरित किया। इसका सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आज का दिन एक और खास संदेश भी लेकर आता है, क्योंकि आज मनाया जा रहा है ईद अल अधा यानी बकरा ईद। इस त्योहार में कुर्बानी का अर्थ सिर्फ किसी चीज का त्याग करना नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों, अहंकार और डर, आलस्य को छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना भी है। असल मायनों में कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, नई चीजें सीखनी, चुनौतियों का सामना करना और खुद को बेहतर बनाना ही असली हिम्मत है। और शायद यही संदेश आज के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है कि बदलाव से डरिए मत, बल्कि उसे अपनाइए। तो दोस्तों इसी प्रेरणा, सकारात्मक सोच और जागरूकता के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी शर्मा, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

राम राम किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीण लोक अपने रेडियो साथी अनुराधा के साथ। और साथियों, कैसे हैं आप सब? साथियों, आज ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद है। आप सभी को बकरा ईद की शुभकामनाएं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के आदेश का पालन करने के लिए अपने सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देने का संकल्प दिया था। उनके इसी श्रद्धा और समर्पण की याद में हर वर्ष बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार अहंकार, लालच और बुराइयों को छोड़कर प्रेम, त्याग और मानवता के रास्ते पर चलने का संदेश देता है। तो साथियों, बकरा ईद की शुभकामनाओं के साथ अब बात करते हैं अपनी चर्चा की। आज हमारी चर्चा का विषय है

है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस। साथियों, हर साल 28 मई को महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, जागरूकता पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक महिला ही स्वस्थ बच्चे, मजबूत परिवार और समृद्ध समाज की नींव रखती है। वैसे भी साथियों, कहा गया है ना कि स्वस्थ नारी सुखी परिवार का आधारशिला होती है। वे पूरे परिवार की एक तरह से जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर होती है, और आज के दौर में तो वही महिलाएं घर संभालने के साथ साथ खेत, दफ्तर, शिक्षा, व्यापार और यहाँ तक कि हम कहें कि हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये सारी भूमिका निभाते निभाते अक्सर महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं, और यही लापरवाही आगे चल के उन्हें कई बीमारियों से ग्रसित कर देती है, जैसे एनीमिया, कमजोरी, थकान, मधुमेह, रक्तचाप और कई गंभीर बीमारियां उनका कारण बन जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी बेकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई महिलाएं खून की कमी, कमजोरी और पोषण की समस्या से जूझ रही हैं। इसका प्रमुख कारण है कि समय पर भोजन न करना, पर्याप्त आराम न मिलना और नियमित स्वास्थ्य की जांच न करना, ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं साथियों, उनको तो अतिरिक्त देखभाल और पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम उनके भोजन में हरी सब्जियां, दालें, दूध और फल को शामिल करें। समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच जरूर कराएं। रोज थोड़ा व्यायाम या योगा करें। गर्भावस्था में डॉक्टर की सलाह और टीकाकरण अवश्य कराएं। मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लें। साथियों, आज सरकार भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान और आयुष्मान भारत योजना। इसका लाभ लेकर महिलाएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर या बना सकती हैं। साथियों, हमको एक बात समझनी होगी कि महिला का स्वास्थ्य केवल उसका निजी विषय नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब घर की माँ, बेटी, बहन स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार में खुशहाली आएगी। और साथियों, आपको पता है कि आज विश्व महामारी स्वच्छता दिवस भी है। ये दिवस भी हमें महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश देता है। महामारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इस दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सही जानकारी, साफ सफाई और पौष्टिक भोजन महिलाओं के स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लें। अंत में साथियों, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि घर की खुशियों की पहचान है नारी, घर की खुशियों की पहचान है नारी, हर परिवार की शान है नारी, उनके स्वास्थ्य का जो रखे ध्यान वही सच में करता उनका सम्मान। आइए साथियों, इसी के साथ आपको ले सकते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनाते हैं ये लोकगीत मनोज शर्मा की आवाज में।

0: साथियों, ग्रामीण जीवन की खुशहाली और खेती की समृद्धि का सबसे मजबूत आधार है हमारी गौ माता। आज के समय में जब रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरता घट रही है, लागत घट रही है और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, तब गौ आधारित प्राकृतिक खेती एक नई उम्मीद बनकर हमारे सामने आई है। तो साथियों, इस विषय में अगर आप और भी अधिक जानना चाहते हैं तो सुनते हैं आज की हमारी वार्ता गौ आधारित प्राकृतिक खेती। वार्ताकार है नीरज सिंह।
1: कृषि मूलस्य जीवनम। कृषि हमारा जीवन है, पशु हमारा धन है, उद्यान हमारी संस्कृति है और गाय हमारी माता है। प्राकृतिक खेती न केवल हमारी प्राचीन परंपरा रही है बल्कि आज की परम आवश्यकता है। सुभाष पालेकर जी ने प्राकृतिक खेती को आध्यात्मिक खेती बताते हुए कुछ सिद्धांत दिए हैं। गौ आधारित प्राकृतिक खेती का सिद्धांत बहुत कुछ प्राकृतिक जंगल के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां सभी जीवधारी पशु पक्षी जमीन जनजातियां एवं वायुमंडल स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। साथ ही हमारी प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित सदुपयोग होता है। प्राकृतिक खेती हमारी प्राचीन परंपरा रही है और आज

की समय की मांग भी है। पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती आध्यात्मिक खेती के चार सिद्धांत हैं। मल्चिंग, भूमि को ढकना, बेड व नाली व्यवस्था द्वारा जल की बचत, बहुफसली पद्धति एवं अन्य विविध सिद्धांत। मल्चिंग, देशी केंचुए एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के कार्य करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए एवं भूमि की नमी को सुरक्षित करने हेतु भूमि को ढकना मल्चिंग कहलाता है। सूक्ष्म पर्यावरण का आशय पौधों के बीच हवा का तापमान 20 से 32, नमी 65 से 72% तथा भूमि सतह पर अंधेरा है। परिणाम स्वरूप देशी केंचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को उपयुक्त वातावरण मिलता है, साथ ही भूमि की नमी का वाष्पन नहीं होता है। यह ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकता है तथा खरपतवार को नियंत्रित करता है। पौधों की जड़ें सीधे पानी नहीं लेते बल्कि मिट्टी के कणों के बीच 50% हवा व 50% वाष्प के मिश्रण से होते हैं जिन्हें पौधे लेते हैं। सतह से ऊंचे तैयार बेड पर फसलों की बुवाई कर नालियों द्वारा पौधों की आवश्यक सिंचाई के रूप में उपलब्ध कराने से पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। साथ ही नालियों को भी मल्चिंग द्वारा ढक दिया जाता है जिससे नमी का वाष्पन कम होता है। बुवाई में पौधों की कतारें उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके और पौधों को ऊर्जा मिल सके। मिश्रित फसल लेने से फसलों की जड़ें तथा तना अलग अलग स्तर से अपनी अपनी खुराक भूमि से लेते हैं और एक दूसरे के सहयोगी एवं पूरक होते हैं। सह अस्तित्व के आधार पर रोगों, कीटों से बचाव तथा नाइट्रोजन का बंटवारा होता है। साथ ही उचित फसल चक्र अपनाने से भूमि को नाइट्रोजन एवं अन्य आवश्यक तत्व स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। मिश्रित फसल, सह फसली फसलें, एकीकृत फसल पद्धति, सस्य विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित कार्यों आदि में समन्वयन स्थापित करने से फसलों की अलग से यूरिया एवं अन्य तत्व देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खरपतवार बायोमास को खेत के बाहर नहीं ले जाना है बल्कि खेत में ही सड़ाना है। कृषि वानिकी, खेत के पास पेड़ होना आवश्यक है जिससे पक्षी कीटों का भक्षण करने के साथ साथ परागण का कार्य कर सकें। भूमि एवं जल संरक्षण, मेड़बंदी के द्वारा खेत में अधिक से अधिक पानी एकत्रित होना चाहिए। देशी नस्ल साहिवाल, गिर जो गुजरात में मिलती है, हरियाणा, गंगातीरी उत्तर प्रदेश में मिलती है तथा बिहार में भी मिलती है, लाल सिंधी पंजाब हरियाणा में मिलती है, थारपरकर राजस्थान में मिलती है, बचेर केरल में मिलती है, बचौर बिहार में मिलती है, डागी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पशुओं का प्रयोग करें। देखिए, प्राकृतिक खेती के लिए देशी गाय का होना आवश्यक है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में गाय का अत्यंत ही उपयोगी है। गौ पालन से गाय के दूध से घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। 1 ग्राम देशी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। केवल एक देशी गाय से ही 10 से 30 एकड़ प्राकृतिक खेती की जा सकती है। गाय के गोबर में गुड़ एवं अन्य पदार्थ डालकर किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, से सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाकर तैयार किया जा सकता है। देशी गौमूत्र भी खनिजों का भंडार है। विदेशी गाय यथा जर्सी, होलिस्टीन आदि प्रजातियां उपयोगी नहीं हैं। देशी गाय से तैयार खाद उत्पाद, प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार गाय के गोबर और मूत्र से तैयार बीजामृत, जीवामृत तथा घन जीवामृत है, जो किसान द्वारा स्वयं के सामग्री एवं साधनों से अत्यंत कम लागत में तैयार किया जा सकता है। इससे किसान का अन्य खर्चा नहीं होगा और किसान की बचत भी होगी। अब मैं बीजामृत बनाने की विधि बताऊंगी। 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम चूना तथा 1 मुट्ठी रसायन मुक्त मिट्टी, जिसे आप पीपल के पेड़ के नीचे से भी ले सकते हैं, 20 लीटर पानी में मिलाकर 24 घंटे रखकर बनाएं। इस मिश्रण को दिन में 2 बार लकड़ी से घोलें। तैयार बीज अमृत को 100 किलोग्राम बीजों पर छिड़काव कर उपचार किया जा सकता है। अब मैं जीवामृत बनाने की विधि बताऊंगी। जीवामृत को गौमूत्र 5 से 10 लीटर, गोबर 10 किलो, गुड़ 1 किलो, दलहन आटा 1 किलो, 1 मुट्ठी जीवाणु युक्त मिट्टी यानी कि 100 ग्राम, पानी 200 लीटर मिलाकर ड्रम को जूट की बोरी से ढककर छाया में रखकर बनाया जाता है। सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से घुमाते रहें। 48 घंटे बाद छानकर 7 दिन के अंदर इस जीवामृत को प्रयोग कर लेना चाहिए।

0: सिंचाई पानी के साथ 200 लीटर जीवामृत सिंचाई के समय पानी के साथ टपक विधि से धीरे धीरे खेत में पानी के साथ बहाया जाना चाहिए। छिड़काव द्वारा पहला छिड़काव बुवाई के एक माह बाद एक एकड़ में 100 लीटर पानी 5 लीटर जीवामृत मिलाकर तथा दूसरा छिड़काव 21 दिन बाद एक एकड़ में 150 लीटर पानी में 10 लीटर जीवामृत मिलाकर करें। तीसरा व चौथा छिड़काव 21-21 दिन बाद एक एकड़ में 200 लीटर पानी के साथ 20 लीटर जीवामृत मिलाकर करें। आखिरी छिड़काव प्रति एकड़ में 200 लीटर पानी व 5 से 10 लीटर खट्टी छाछ यानी कि मट्ठा मिलाकर करना चाहिए। घन जीवामृत बनाने की विधि, जिसे सूखी खाद भी कहते हैं। घन जीवामृत जीवाणु युक्त सूखी खाद है, जिसे बुवाई के समय या पानी देने के 3 दिन बाद भी दिया जा सकता है। गोबर 100 किलो, गुड़ 1 किलो, आटा, दलहन 1 किलो, मिट्टी जीवाणु युक्त 100 ग्राम, उपयुक्त सामग्री में इतना गौमूत्र लगभग 5 लीटर मिलाएं, जिससे पेस्ट जैसा बन जाए। इसे 48 घंटे छाया में बोरी से ढककर बनाएं, तत्पश्चात छाया में फैलाकर सुखाएं तथा बारीक कर बोरी में भरकर 6 माह तक प्रयोग कर सकते हैं। एक एकड़ में 1 कुंटल घन जीवामृत का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक खेती के लाभ, उत्पादन की न्यूनतम लागत। यह एक न्यूनतम लागत तथा अधिकतम लाभ की कृषि पद्धति मानी जाती है, बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। प्राकृतिक खेती में सिंथेटिक रासायनिक का उपयोग नहीं होने से स्वास्थ्य जोखिम तथा खतरा समाप्त हो जाता है तथा भोजन में उच्च पोषक तत्व प्रदान करता है। रोजगार सृजन, प्राकृतिक खेती नए उद्यमी, मूल्यवर्धन, स्थानीय क्षेत्रों, विपणन आदि में रोजगार के सृजन में सहायक और इससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा। पर्यावरण संरक्षण, यह बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि, जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन एवं नाइट्रोजन पद चिन्हों के साथ जल का अधिक न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करती है। जल की कम खपत, वाष्पीकरण के माध्यम से अनावश्यक जल के नुकसान को रोकने के लिए मिट्टी को कवर करते हैं। प्राकृतिक खेती प्रति बूंद फसल की मात्रा को अनुकूलित करती है। मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करना, जीवाणु आधारित प्राकृतिक खेती मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाता है। प्राकृतिक खेती की वजह से हम रासायनिकों का खाने में जो भोजन है उसमें रासायनिकों का उपयोग नहीं होगा और इसलिए हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, इसलिए प्राकृतिक खेती बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए प्राकृतिक किसानों को सबसे ज्यादा भरोसा स्वयं पर करना होगा और प्राकृतिक खेती को अपना कर भविष्य को सुरक्षित करना होगा।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे हमारी वार्ता गो आधारित प्राकृतिक खेती। वार्ता करते थे नीरज सिंह। आशा है साथियों कि आपको ये वार्ता काफी पसंद आई होगी और आपको काफी मदद मिली होगी। तो आइए इसी के साथ लेते हैं छोटा सा अंतराल।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: साथियों, अभी हमने बात करी अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महावारी दिवस की। क्या आप जानते हैं कि आज एक दिवस और भी है? जी हाँ, आज है विश्व भूख दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज भी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है, कई बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए साथियों, ये दिवस हमें ये सिखाता है कि भोजन की बर्बादी रोकें, जरूरतमंदों की मदद करें और अन्य का सम्मान करें। तो आइए साथियों, इस दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अन्य की बर्बादी नहीं करेंगे और जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहेंगे। इसी के साथ साथियों, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट नई खोज की तरफ। साथियों, भारतीय कृषि के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कई क्रांतिकारी बदलाव और आविष्कार हुए हैं जो खेती को आसान, किफायती और अधिक उपज देने वाला बना रहे हैं। इसी एक आविष्कार में बात करते हैं AI आधारित जीन संपादन। साथियों, भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला प्लांट ओपन क्रिस्पर विकसित किया है। यह एक AI प्लेटफॉर्म है जो फसलों के डीएनए में ऐसे बदलाव करता है जिससे वे पानी कम पानी में बेहतर उत्पादन देती हैं और मौसम के बदलावों को आसानी से सहन कर लेती हैं।

होती है। इसी के साथ साथियों अब आपको ले चलते हैं आगरा मंडी की तरफ और जानते हैं कि आगरा मंडी में हमारी फसलों के क्या भाव चल रहे हैं। तो आगरा मंडी में टमाटर का भाव रहा 1500 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में। वहीं टिंडे का भाव रहा 23 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 26 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में। प्याज का भाव रहा 1150 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में। वहीं आम का भाव रहा 42 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 39 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में। खरबूजा का भाव रहा 1500 रुपए लेके 1800 रुपए के बीच में। वहीं नींबू रहा 3700 से लेके 4000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में। इसी के साथ आपको आज बता देते हैं कि आगरा का मौसम कैसा है। तो आज आगरा में सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। नौतपा के चलते गर्मी में लोगों को काफी परेशान किया है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान करीबन 31 से 32 डिग्री के बीच रहा है। 3-4 बजे के करीब आसमान में बादल छा गए, जिससे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। साथ ही शाम को तेज हवाएं या हल्की बारिश होने की उम्मीद है। तो साथियों हम लोग को सलाह है कि दोपहर के समय खेतों पर काम करने से बचें, फसलों की सिंचाई सुबह या शाम को करें तथा पशुओं को ठंडी जगह पर रखें। इसके साथ ही साथियों नौतपा चल रहा है तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हो सके तो घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही जरूरी है तो छाता, गमछा या कोई भी सिर में टोपा लगा के निकलें। साथ में पानी की बोतल रखें, ताजी खाना खाएं, पूरे आसन के कपड़े पहने, लू से बचने की कोशिश करें, आम पना पिए, छाछ पने और अगर लू लग भी जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसी के साथ साथियों अब आपका मनोरंजन कराते हैं और सुनते हैं मनोज शर्मा की आवाज में ये गीत।

इसी के साथ साथियों, आज के हमारे कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। आशा है आज की प्रस्तुत जानकारियां और बातचीत आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होंगी। जाते जाते साथियों, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मेहनत की मिट्टी में ही सफलता के बीज उगते हैं, मेहनत की मिट्टी में ही सफलता के बीज उगते हैं। इसलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने गांव, समाज और देश के विकास में अपना योगदान देते रहिए। इसी के साथ अपनी रेडियो साथी अनुराधा को अनुमति दीजिए। राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीलोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

श्रमिक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। नमस्कार, मैं हूं संतोष वर्मा। आज के कार्यक्रम में आपसे बात करने के लिए, देश दुनिया की कुछ खबरें बताने के लिए। कार्यक्रम में गीत संगीत का भी आनंद लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हमारे काम और रोज की जिंदगी पर असर डालने वाली इस तेज गर्मी से बचाव की। अपने देश की प्रगति में हम श्रमिकों की सबसे बड़ी भूमिका है। खेतों में मेहनत करने वाले किसान हो, भवन निर्माण में लगे हमारे भाई बहन हो, या रोज की सेवाएं देने वाले हमारे श्रमिक साथी, सभी अपने श्रम से समाज और देश की नींव को मजबूत बना रहे हैं। पर लगातार काम और जिम्मेदारियों के बीच हम अपने स्वास्थ्य पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते, जिससे थकान, अनियमित भोजन

कम आराम और मौसम की मार शरीर को कमजोर बनाने लगती है। इसीलिए जरूरी है दोस्तों कि अपनी मेहनत के साथ अपने स्वास्थ्य का महत्व भी पहचानें। तेज धूप और गर्म हवाएं शरीर को जल्दी थका देती हैं, ऐसे में विशेष सावधानी की जरूरत है। यानी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, नींबू पानी, आम का पना।

आराम करना भी शरीर के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, केवल शारीरिक मेहनत ही नहीं, मानसिक तनाव भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। परिवार की चिंता, काम का दबाव और आर्थिक जिम्मेदारियां कई बार मन को थका देती हैं। ऐसे में परिवार और साथियों के साथ बातचीत करना, थोड़ा समय हंसी मजाक और आराम करना अच्छा रहता है। नियमित और संतुलित भोजन शरीर को ताकत देता है, इसीलिए खाने में दालें, हरी सब्जियां और मौसमी फल जरूर शामिल करें। अच्छी सेहत के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है। काम के बाद हाथ पैर और चेहरा धोना, साफ पानी का इस्तेमाल करना, साफ कपड़े पहनना और आसपास स्वच्छता बनाए रखना हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। इस तरह अपने तन मन के प्रति सतर्क रहकर हम खुद को बीमारियों से मुक्त, सेहतमंद बनाए रख सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारी मेहनत भरी जिंदगी में आने वाली कुछ छोटी छोटी समस्याओं से तो दोस्तों हम थोड़ी सी समझदारी दिखाकर भी बच सकते हैं या इनसे राहत पा सकते हैं। जैसे अगर दिन भर काम करने के बाद शरीर में भारीपन या थकान महसूस हो तो रात को सोने से पहले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर इसमें पैरों को 10 मिनट तक डुबो कर रखना, इससे थकान कम होती है और नींद भी अच्छी आएगी। यदि धूप और पसीने की वजह से सिर दर्द हो तो पुदीने की पत्तियों को पानी में डालकर पीना या नींबू और काला नमक मिलाकर पीने से आराम मिलेगा। गर्मी के मौसम में सौंफ भी काफ़ी फायदेमंद है। थोड़ी सी सौंफ रात में पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पीना शरीर को ठंडक देता है। इसके अलावा दोस्तों, गर्मियों में पसीने और धूल की वजह से खुजली, फुंसियाँ या त्वचा में जलन जैसी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। ऐसे में नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर इस पानी से नहाने पर ज़रूर आराम मिलेगा। नीम में अनेक औषधीय गुण हैं। नीम की पत्तियों के पानी से नहाना त्वचा को रोगमुक्त और चमकदार बनाए रखता है। नीम की पत्तियों को जलाकर घर में उनका धुआं करें तो इससे मच्छर पास नहीं आते और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव होता है। मच्छरों से होने वाली बीमारियां हों या और कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या, हमेशा हमारी सावधानी और जागरूकता ही हमें इनसे बचाती है दोस्तों। इसीलिए अपने हर कार्यक्रम में हम अच्छे स्वास्थ्य की बातें करते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर और प्रसन्न चित्त मन हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाता है। जब मन खुश हो, तन स्वस्थ हो और जीवन में संतुलन हो तो हमारी मुस्कान में, हमारी बातों में भी अपने आप एक मीठापन आ जाता है। यानी हमारा बोलना ऐसा हो जाता है कि सबको हम अपनी ओर खींच पाते हैं, अपना बना पाते हैं।

श्रमिक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। कार्यक्रम में अब बारी है ज्ञान सागर की। आज 28 मई है दोस्तों। इतिहास के पन्नों में यह दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं और महान व्यक्तियों की याद दिलाता है। इन्हीं में से एक नाम है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी वीर सावरकर जी का। आज प्रखर विचारक और राष्ट्रभक्त वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती है। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, हम भी उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हैं। और आइए आज के कार्यक्रम में ज्ञान सागर में बात करते हैं इन्हीं के बारे में। वीर सावरकर जी का जन्म 18 मई 1883 को हुआ था। कम उम्र से ही उनमें देशभक्ति की प्रबल भावना थी। जब अनेक क्रांतिकारी अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, सावरकर जी ने भी अपने विचारों से, लेखन से और संगठन क्षमता से देशवासियों में देश प्रेम की भावना जागृत की। विदेश

ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और इसके लिए कठोर सजा भी झेली। उन्हें बंदी बनाकर अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में रखा गया था, जिसे काला पानी की सजा कहते थे। वहां की कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे केवल क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक और किसानों मजदूरों की बात करने वाले महान देशभक्त थे। वे देश के औद्योगिक विकास और मजदूरों के अधिकारों के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके कारखानों में काम करने वाले मजदूर खुशहाल ना हों। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि श्रमिकों को उनकी मेहनत का सही पारिश्रमिक मिलना चाहिए, काम के घंटे तय होने चाहिए, उनके स्वास्थ्य की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। वे कहते थे कि मजदूर और किसान इस देश की रीढ़ हैं, इन्हें मजबूत और समृद्ध बनाना हम सबका कर्तव्य है। सावरकर जी ने जाति व्यवस्था में भेदभाव और छुआछूत का भी कड़ा विरोध किया। जब वो रत्नागिरी में नजरबंद किए गए थे, तब उन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना कराई, जहां हर समाज और हर वर्ग के लोग एक साथ बैठकर पूजा करते थे। उन्होंने सहभोज की भी शुरुआत की, जहां सब ऊंच नीच का भेद भूलकर एक साथ खाना खाते थे। हम सबके लिए भी सावरकर जी के जीवन का यही संदेश है दोस्तों, कि भेदभाव से दूर रहकर सबसे बनाकर चलें, साहस और धैर्य बनाए रखें, मेहनत, अनुशासन और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहें। एक बार फिर सावरकर जी को आज उनकी जयंती पर नमन करते हैं। और अब बात करेंगे कार्यक्रम में दोस्तों देश दुनिया की कुछ खबरों की, लेकिन पहले आपके लिए आज का प्रश्न। प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर कब और किसने पहली बार सफल चढ़ाई की थी? जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम मजदूर मंडल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रमिक दोस्तों, आइए जानकारी लेते हैं अब पिछले हफ्ते की देश दुनिया की कुछ खबरों की। सबसे पहली खबर अपने शहर की। आगरा में 9 जून को सुबह 11:30 बजे प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर परिसर में डाक अदालत लगेगी। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, एटा, इटावा, मैनपुरी और बुलंदशहर के ऐसे परिवाद जो अब तक निस्तारित नहीं हुए हैं, वह 5 जून सुबह 11 बजे तक सहायक निदेशक डाक सेवाएं कार्यालय पोस्ट मास्टर जनरल आगरा को भेज सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने विगत शुक्रवार को जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड का उद्घाटन किया, जिनका मकसद देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता सेवाओं द्वारा देखभाल व्यवस्था को मजबूत करना है। जीवन ऐप को बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सामाजिक परिवेश को डिजिटल मंच के जरिए बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप में सरकारी योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी, आपातकालीन सहायता एवं सहयोग सेवाएं और विभाग समर्थित वरिष्ठ नागरिक गृहों का विवरण है। इसी तरह शतायु नाम का डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया। इसे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ऑर्केस्ट्रा, डांस ग्रुप, मसाज पार्लर और स्पा में बच्चों से काम कराए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने

केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाल संरक्षण और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जवाब मांगा है। एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़कियों को सिर्फ इसीलिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ देनी चाहिए कि स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन और लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है। कोर्ट ने छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराने और स्कूलों में अलग शौचालय के लिए जारी दिशा निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि वैवाहिक विवादों में केवल सामान्य और बिना ठोस तथ्यों पर आधारित आरोपों के आधार पर पति के हर रिश्तेदार के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता। और अब अंत में दोस्तों बात प्रधानमंत्री जी की अपील के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री ने देश भर में बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और एक दूसरे की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक तापमान के बीच खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से निकलते समय पानी साथ लेकर जाएं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से जरूरतमंदों को पानी उपलब्ध करवाने की भी अपील की और बोले कि जो लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर मटकों में पानी रखते हैं वो समाज के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सावधानी नहीं बरतने पर हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में सतर्कता से लोगों की मदद करना उनकी जान बचा सकता है। तो दोस्तों ये थी देश दुनिया की कुछ खबरें और आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये गीत।

श्रमिक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। और आपको याद होगा दोस्तों कि कार्यक्रम में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उम्मीद है इसका जवाब भी आपको पता होगा। प्रश्न था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई कब और किसने की थी। तो इसका जवाब है दोस्तों सन 1953। 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंचकर इतिहास रच दिया था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है,

मौसम भी बेहद कठिन होता है। तेज बर्फीली हवाएं, फिसलन और अत्यधिक ठंड इस यात्रा को बहुत चुनौतीपूर्ण बना देती है। कई पर्वतारोहियों ने इससे पहले भी एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी 1953 में मिली। न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नार्गे ने साहस और धैर्य के साथ यह कठिन मिशन पूरा किया। इसके लिए तेंजिंग नार्गे का नाम भारत और नेपाल दोनों जगह बड़े सम्मान से लिया जाता है। एडमंड हिलेरी को भी उनकी इस उपलब्धि के लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली। माउंट एवरेस्ट की यह विजय हमें सिखाती है दोस्तों कि मेहनत, हिम्मत और मजबूत इरादों से इंसान बड़ी से बड़ी चुनौती भी पार कर सकता है। तो हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए और वहां पहुंच जाइए जहां पहुंचना चाहते हैं। और इसी संदेश के साथ अब मुझे यानी संतोष वर्मा को आज का मजदूर मंडल कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। हमारा अगला प्रसारण हिंदी में समाचार, उसके बाद सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। दोनों ही कार्यक्रम अनुप्रसारित होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए सुनते हैं सबसे पहले हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक

0: देव रॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah formally submitted his resignation today. Addressing media, he confirmed that the resignation letter was officially handed over to the Governor's Secretary in Bengaluru. Mr. Siddaramaiah said he requested the governor to invite the chief minister designate D.K. Shivakumar to assume office as his government enjoys an absolute majority in the assembly with the support of over 136 MLAs. He informed that the high command had offered him a Rajya Sabha seat, which he added he had humbly refused. Saying that he is not interested in national politics, the outgoing chief minister said that he will continue to work for the people of the state. Siddaramaiah became the Chief Minister of Karnataka for the second time in May 2023 after the Congress secured victory in the assembly elections. He previously served as the Chief Minister from 2013 to 2018. He has the distinction of being the longest serving Chief Minister of the state, completing 8 years in 2 tenures. With his resignation, the long drawn power tussle in the state has come to an end. Union and Home and Corporation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in Gandhinagar Lok Sabha constituency today.
2: Our government's resolve is to identify and deport every single infiltrator from across the country. For this purpose, Prime Minister Narendra Modi ji has decided to constitute a demographic change committee. This high-powered committee will examine the causes behind the artificial demographic changes taking place across the country, suggest measures to address them, and also consider whether any new laws are required for this purpose. The demographic change committee will submit its report within 1 year, and we will work towards preventing artificial demographic changes.
3: Demographic change jo hai usko rokne ka hum kaam karenge.
1: Mr. Shah recalled the contributions of Veer Savarkar on the occasion of his birth anniversary. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET.

0: G 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website nta-cuet.nta.nic.in. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav held a high-level meeting with the AI Curriculum Task Force in New Delhi today. The meeting was a part of government's efforts to collaborate with the industry for a comprehensive overhaul of the artificial intelligence curriculum to better equip learners for emerging technological trends. The discussions during the meeting focused on strengthening industry-academia collaboration and aligning AI education with future technological requirements. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today released over 10,000 crore rupees to 12 states under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen PMAYG through video conferencing. These states include Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Speaking on the occasion, Mr. Chauhan said that 3 crore 91 lakh houses have already been accorded approval under Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen PMAYG. A great voice of Urdu literature has fallen silent forever. Famous poet and literary figure Bashir Badra passed away today in Bhopal, Madhya Pradesh. He was 19 years old. He was 91 years old. According to his family, he breathed his last at around 12 noon. He will be laid to rest at a cemetery near Bhopal, Talkies at 7:30 this evening. Bashir Badra gave Urdu poetry a new identity. He wrote in simple, everyday language. His style was different from traditional poets. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Sattvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज हम आपके लिए लाए हैं वार्ता हम हमारा भोजन और शून्य भूख। आज की वार्ताकार हैं डॉक्टर अनुपम सारस्वत।
2: मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं, और वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर के ठोस घटक जैसे हड्डियां और दांत पृथ्वी तत्व से बनते हैं। जल तत्व शरीर में रक्त, पानी व शरीर के अन्य तरल अंशों के रूप में होता है। अग्नि तत्व का काम भोजन को पचाना, अवशोषित करना और आत्मसात करना है। वायु तत्व शरीर में गतिशीलता और श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। शरीर में मौजूद रिक्त स्थान आकाश तत्व का रूप है, जैसे आमाशय का रिक्त स्थान। पंच तत्वों से बने इस भौतिक शरीर का जन्म के उपरांत भी वृद्धि और विकास जारी रहता है, और इस विकास क्रम में भोजन की महती भूमिका रहती है। भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। भोजन के पोषक तत्व शरीर के ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव का कार्य करते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा भोजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन से ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन होता है, और जिस भोजन में ये तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं वो संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। स्वस्थ जीवन ही मनुष्य का धन है। अच्छा भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति बीमारी से दूर रहता है और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। पोषक तत्वों से परिपूर्ण संतुलित आहार का सेवन हमें बहुत सी शारीरिक बीमारियों से बचाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। शाकाहार सर्वोत्तम आहार है। यह पूरे विश्व में ट्रेंड के रूप में उभर रहा है, जिसके पीछे प्रमुख कारण मांसाहार से होने वाली बीमारियों से निजात पाना है। खाना हमारे लिए है, हम खाने के लिए नहीं। यदि हम इस सिद्धांत को स्वस्थ शरीर का मूल मंत्र मानकर भोजन करेंगे तो निसंदेह वह भोजन हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। कहते हैं हमें भोजन उतना ही करना चाहिए जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो, पर स्थिति ये है कि कुछ लोग अधिक खाना खाने से मर रहे हैं तो कुछ भुखमरी से। अच्छे भोजन और उचित पोषण तक पहुँच पाना मानव अधिकार है। जब सदस्य कुपोषित होते हैं तो समाज को नुकसान होता है। इससे उत्पादकता

प्रभावित होती है और स्वास्थ्य सेवा की लागत बढ़ती है। भूख मानव विकास को सीमित करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे अन्य सतत विकास लक्ष्य अप्राप्य हो जाते हैं। समझ रहे यदि अधिकारों को, कर्तव्यों को खूब निभाओ, भूखा इंसा कोई न सोए, जग में ऐसी मुहिम चलाओ। अपनी अपनी रोटी खाकर यूं तो सब सो जाते हैं, पर उन पर बीते हैं कैसी जो भूखे रह जाते हैं। अपनी रोटी बांट के खाओ, व्यर्थ अन्न ना कभी बहाओ, नैतिकता सिखलानी है तो पहले सबकी भूख मिटाओ। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इसी उद्देश्य के साथ हुई कि सभी को सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन मिल सके। 1945 से लगातार 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है और इसके द्वारा लोगों को भूख और कुपोषण के प्रति जागरूक किया जाता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने में संतुलित आहार की मौलिक भूमिका के बावजूद दुनिया भर में कई लोग विभिन्न कारणों से भूख से जूझ रहे हैं। गरीबी अक्सर भूख का मूल कारण होती है। यह भ्रष्टाचार, खराब बुनियादी ढांचा, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारणों से उत्पन्न होती है। जब लोग अपने परिवार के लिए आवश्यक भोजन का खर्च नहीं उठा पाते, तो इससे बच्चों का शारीरिक और भावनात्मक विकास सीमित हो जाता है व भूख और गरीबी का चक्र चलता रहता है। पूरे विश्व में कोई भूखा न रहे, इस वाक्य को ध्येय बनाकर संयुक्त राष्ट्र ने अपने सतत 17 विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य जीरो हंगर यानी शून्य भूख रखा है। इसकी शुरुआत सन 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इस उद्देश्य के साथ की थी कि दुनिया में हर व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिल सके, ताकि वह सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सके। जीरो हंगर के तहत संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक भूख को खत्म करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पोषण में सुधार करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। इस जीरो हंगर चैलेंज में सरकारें, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र की कंपनियां, धार्मिक नेता और विश्व भर के नागरिक शामिल हुए हैं। इस प्रोग्राम का मकसद कृषि और बागवानी प्रथाओं को लागू करके भूख और कुपोषण से निपटना है। इसके तहत पोषण केंद्रित कृषि प्रणालियों को लागू किया जाता है व छोटे किसानों की आय और उत्पादकता को दोगुना करने की कोशिश की जाती है। भोजन की बर्बादी को कम करना व वंचित लोगों तक उसकी पहुंच बनाना ही इस मिशन का उद्देश्य है। हम खाद्य उत्पादन व वितरण प्रणाली में सुधार करके विकासशील देशों में भुखमरी समाप्त करने के लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त कर सकते हैं। हम खाद्य सुरक्षा और शांति के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक स्तर पर जीरो हंगर का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी भी काम किया जाना बाकी है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर किसी को भोजन उपलब्ध हो व हर किसी के पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अधिक प्रोत्साहन और मदद देने की आवश्यकता है, ताकि वे सिर्फ सरकारी सहायता कार्यक्रमों पर निर्भर न रहें। ऐसी नीतियों का निर्माण होना चाहिए जो लोगों को लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। हम सभी की प्रतिबद्धता इस दिशा में होनी चाहिए कि सभी को पौष्टिक, सुरक्षित व पर्याप्त भोजन मिल सके। कोई कुपोषण का शिकार न हो, किशोरियों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों की पोषण संबंधी जरूरत पूरी की जा सके। शून्य भूख लक्ष्य को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता में सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। देश और सरकारों की कर्मठता के साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी इस दिशा में योगदान अपेक्षित है। हम अन्न को बर्बाद न करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लें। यदि समर्थ हैं तो जरूरतमंद को अन्न दान करें और उसे सबल बनाने का प्रयास करें, जिससे आगे वह धन कमाकर स्वयं परिवार का पेट पाल सके। ऐसी संस्थाएं जो जरूरतमंदों तक अन्न पहुंचाती हों को दान करें, संस्था के विषय में पूर्ण जानकारी के उपरांत। अपनी विलासिताओं को कम कर दूसरों को अन्न मुहैया कराएं। बांटने से खुशी सदा बढ़ती है।
एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर 500 रुपए की कॉफी वह खुशी नहीं

0: देगी जो उस धन से दूसरों की भूख को शांत कर पाने का संतोष। एक खा रहा भर भर थाली, है दूजे का बर्तन खाली। एक अधिक खाकर बीमार, दूजा भूख से है लाचार। कुछ तो सबकी जिम्मेवारी, तड़फ भूख की होती भारी। उसकी भूख मिटानी होगी, समता हमको लानी होगी। विश्व स्तर पे देखो यूं तो जीरो हंगर मिशन है जारी, पर हर नर और नारी की अपनी अपनी जिम्मेवारी, पर हर नर और नारी की अपनी अपनी जिम्मेवारी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था हम, हमारा भोजन और शून्य भूख। वार्ताकार थे डॉक्टर अनुपम सारस्वत। इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही देर में।

0: बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ, कहा किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन, कहा शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार, प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान, लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा।
4: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।

0: सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन, थाना बैरक, अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भैंसोरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AK शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है।
2: लखनऊ ऑलरेडी शिवरी में और भेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ ऑलरेडी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं, उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा।
0: इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में शामिल करना है।
3: आज लखनऊ स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ा है। भरवारा मल्लौर वार्ड में भी हमने ट्रांसफर स्टेशन लगाया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में हमारे कम्प्लीट 51 ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे, 24 पूरे हो गए और लखनऊ में कहीं भी कूड़ा ना दिखे, इसका मेरा पूरा प्रयास है।
0: अयोध्या में कल 29 मई को राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी

0: किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लोग ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में नमाज में शामिल हुए। वहीं शिया समुदाय ने आसिफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह नमाज अदा करने के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम ने भी 30 मई तक पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या, बाराबंकी, पीलीभीत, श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। आगरा में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर आज देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप शुक्ला से सुभाष खन्ना की बातचीत। विषय है भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दौरे और संभावनाएं।
5: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हम खेल के इस कार्यक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, किसी ऐसी विधा पर बात करते हैं जो स्पोर्ट्स में निहित होती है या खेल में निहित होती है। और जैसा आपको पता ही है कि जीवन में खेल बहुत जरूरी है। केवल और केवल उस विधा में करियर बनाने के अलावा भी आप में नेतृत्व क्षमता, आप में सहयोग, आप में एकता, आप में आगे बढ़ने की, लगातार संघर्ष करने की, वो ढेरों

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी

0: माटी मेरा देश। श्रोताओ, आज बकरीद के मौके पर खास हम आपके लिए लाए हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है बकरीद का त्यौहार और कुर्बानी के मायने। वार्ता जिसमें सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी से बातचीत करेंगे अनिंद्र सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार और आदाब। आकाशवाणी के आज के

0: का वास्तविक अर्थ क्या है, असली मायने क्या है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जैदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, मैं बता दूं, जैदी साहब ताजमहल मस्जिद इंतजामिया कमेटी के भी चेयरमैन हैं और पर्यटन विकास समिति के भी अध्यक्ष हैं। जैदी साहब, आज आकाशवाणी के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को पहले तो बकरीद की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह सबको मोहब्बत, अमन और इंसानियत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। जैदी साहब, हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं कि बकरीद यानी ईद अल अजहा जिसको हम बोलते हैं, तो बकरीद का जो मूल संदेश इस त्योहार को मनाने का वो क्या है?
1: पहले तो श्रोताओं को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। बकरीद एक जज्बा है। इस्लाम में बकरीद को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है
0: जी
1: उसको कुर्बान करने का एक जज्बा है, और इसके पीछे एक पैगंबर हुए हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनको खुदा की तरफ से एक ख्वाब दिखाई दिया। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दें।
0: जी
1: तो उन्होंने सुबह उठे, उन्होंने सोचा कि सबसे प्यारी चीज़ हमारी क्या है। तो उनके पास ऊँट थे, उन्होंने
0: जी
1: 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। उसके बाद फिर रात में जब सोए उस पर उनको ख्वाब आया कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दें। फिर से सुबह जब उठे तो उन्होंने सोचा कि हमने सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दी, 100 ऊँट कुर्बान कर दिए, आज हम 200 ऊँट कुर्बान किए देते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म के अनुसार अल्लाह के
0: राह में
1: राह में उन्होंने 200 कुर्बान
0: 200
1: और
0: कुर्बान
1: ऊँट
0: कर
1: कुर्बान
0: दिए।
1: कर दिए। उसके बाद फिर उनको तीसरे दिन ख्वाब दिखा कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि हमारी सबसे प्यारी चीज़ क्या है। तो उन्होंने देखा कि हमारी सबसे प्यारी चीज़ तो हमारा बेटा जिनका नाम इस्माइल था जो है। तो उन्होंने सोचा कि अब हमारा सबसे प्यारा बेटा यही है, अब इसी की कुर्बानी हम की देते हैं। तो उन्होंने अपने अहलिया से कहा कि इस तरह से हमें ख्वाब में नज़र आया है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दें, और हमारी सबसे प्यारी चीज़ तो बेटा है हमारा। तो उनकी अहलिया ने भी कहा कि अगर अल्लाह का ये हुक्म है तो अपने बेटे को कुर्बान कर दें। बाप थे जो है, उन्होंने क्या सोचा कि अब हम अपने बेटे को किस तरह से कुर्बान करेंगे। उन्होंने अपने बेटे को बताया तो बेटे ने भी कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है, अगर हम अल्लाह के राह पे कुर्बान हो रहे हैं तो इससे अच्छी हमारे लिए और क्या बात हो सकती है। तो वो भी तैयार हो गए। अब जब वक्त आया कुर्बानी का तो बेटे ने कहा कि अब्बा आप अपने आंखों पे पट्टी बांध लें जिससे कि आप देख करके आपका कहीं इरादा नहीं बदल जाए या हाथ ना चले आपके जो है। खैर उन्होंने पट्टी बांधी और उनको जो है कुर्बानी के लिए उनको लिटाला। जब उन्होंने लिटाला तब अल्लाह का हुक्म आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम पे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा उन्होंने अल्लाह ताला ने कि आप जल्दी जाओ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए कुर्बान करने जा रहे हैं, आप बेटे को हटा करके आप उसके बदले दुम्बा रख दें। जो दुम्बा यानी एक बकरे की नस्ल होती है वो दुम्बा कहलाता है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन गए और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा करके दुम्बा रख
0: रख
1: दिया
0: दिया और उसकी
1: और
0: कुर्बानी
1: उसे
0: हो।
1: कुर्बान दे दी।
0: जी जी
1: जब उन्होंने पट्टी खोली तो उन्होंने देखा कि सामने तो दुम्बा है और हमारा बेटा जो है खड़ा हुआ है। तो इससे जाहिर ही होता है कि अल्लाह का जो हुक्म है तो वो सारी इंसानियत के लिए है।
0: अल्लाह हमको अपने भीतर जो बुराइयां हैं, अहंकार है, लालच है, नफरत है, स्वार्थ है, जो कभी कभी हमको प्रिय होता है और शायद हमें पता नहीं लगता, तो अल्लाह चाहता है कि हम ऐसी प्रिय चीजों की कुर्बानी दें।
1: बिल्कुल, मतलब कुर्बानी का मतलब है कि हम जिस चीज़ से ज़्यादा, बहुत सी चीज़ें ऐसे कि घमंड है, घमंड को त्याग
0: कुर्बान
1: दें जो
0: कर
1: है,
0: दें। जी
1: कुर्बान कर दें जो है।
0: यही असली
1: और
0: कुर्बानी है।
1: जी
0: अक्सर लोग जो है कुर्बानी को केवल एक धार्मिक रस्म के तौर पर देखते हैं, जबकि इसके मायने तो बहुत बड़े हैं, व्यापक हैं। आप क्या समझते हैं?
1: जो बकरी की कुर्बानी जब हम देते हैं तो कुर्बानी का जो गोश्त होता है जो, तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जो। पहले कुर्बानी होती है, कुर्बानी की दुआ पढ़ी जाती है, कुर्बानी होती है, उसके बाद उसके पीस होते हैं। उन सारे पीसों को, पूरे बकरे के पीसों को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद 3 हिस्से लगाए जाते हैं उसके, एक तो खुद का होता है, एक गरीबों का होता है और एक रिश्तेदारों का होता है। इन सब में बांटा जाता है क्योंकि जो भी चीज़ें अल्लाह ने यह भी कहा कि जो भी चीज है उसको मिल बांट करके खाओ, और हमारा पड़ोसी जो है चाहे वो कोई भी हो, पड़ोसी भूखा ना रह जाए, तो सबसे पहले फर्ज
0: कोई भी जरूरतमंद हो पड़ोसी
1: सबसे पहले तो हमें

0: में पड़ोस में बांटना चाहिए जो, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अच्छा अच्छा तो सब अपने पास रख लें और जो वैसा हो गोश्त उसको रिश्तेदारों में या गरीबों में बांट दें, तो एक तरह से वो कुर्बानी मानी नहीं जाएगी। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि सबको समान रूप से उस बकरे में से सबको समान रूप से वो सारी चीजें मिल जाएं जो ये।
1: कहने का अर्थ यह है कि जो आप त्याग कर रहे हैं उसमें संवेदना की भावना अगर नहीं
0: बिल्कुल,
1: है
0: तो
1: तो
0: बेकार
1: फिर
0: है
1: जो
0: ये,
1: है वो त्योहार या कुर्बानी देने का जो मकसद है वो ही अधूरा रह जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो इस्लाम जो है वो कुर्बानी का अर्थ ये बताता है कि आप जरूरत, आपने जैसे कहा कि वो तीन हिस्सों में बांटते हैं, माने जरूरतमंदों की मदद करना और बराबरी के भाव से बांटें
0: जी,
1: उसको, उसमें कहीं आपका अपना स्वार्थ न छुपा हो, और इंसानियत की सेवा करना, ये सबसे बड़े भाव हैं जो एक कुर्बानी के पीछे छुपे हुए हैं। ये केवल एक जानवर की कुर्बानी तो नहीं होती, लेकिन अपने भीतर जो छुपे हुए दुर्भाव हैं, दुर्गुण हैं, लालच
0: बिल्कुल सही कह रहे
1: है
0: हैं।
1: ना, तो इनकी कुर्बानी ज्यादा जरूरी है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी ऐसे जो कटुता है, तनाव है, विभाजन है, ऐसी परिस्थितियां हमारे चारों ओर नजर आती हैं। तो ऐसे में बकरीद जैसे त्योहार का जो संदेश है वो कितना प्रासंगिक हो जाता है।
0: देखिए, इस्लाम या आप कोई भी मजहब हो,
1: जी
0: तो सबसे पहले तो इंसानियत। हम जो हैं पूजा पाठ कर लें, नमाज पढ़ते रहें, हज कर जाएं, अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, दूसरों के प्रति प्यार नहीं है, दूसरों के प्रति मोहब्बत नहीं है, और हम दूसरों के काम नहीं आते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, तो ऐसे चाहे वो नमाज हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे हज हो, वो सारी चीज़ें बेकार हैं। अल्लाह ने कहा है कि खिदमत खल्क जो है
1: दूसरों की खुशी में
0: सबसे,
1: आपको
0: जी
1: अगर अपनी खुशी नजर आ
0: सबसे
1: रही
0: बड़ी
1: है।
0: चीज़ है खिदमत खल्क। अगर हम किसी की सेवा करते हैं, किसी गरीब की सेवा करते हैं, चाहे वो पैसे से सेवा हो, हाथ पैरों से सेवा हो, अगर हम एक सड़क पे पत्थर अगर रखा हुआ है, अगर हम उसको भी हटाते हैं, तो वो भी एक पुण्य का काम है, वो भी एक इंसानियत ही है कि कोई उससे टकरा ना जाए।
1: असलियत में आपका भाव ये तय करता है कि आपकी जो कुर्बानी है, आपका जो त्याग है, आपका जो समर्पण है, आपकी जो सेवा है, वो किस भाव से की जा
0: भाव
1: रही
0: से
1: है,
0: की जाती
1: वो
0: है जी,
1: मायने रखता है।
0: सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम 1 लाख का बकरा ले आए, कि हम 50 लाख का ले आए। अच्छा, कुर्बानी का भी एक तरीका है जी, कुर्बानी हर आदमी के लिए नहीं है, जिसके ऊपर जो हैसियत है जिसकी। अब ये नहीं कि हम पैसे उधार लेकर के बकरा ले आए, जा करके किसी से पैसे लिए उधार ले आए और हमने कुर्बानी कर दी,
1: तो
0: वो ये तो
1: ऐसी
0: कुर्बानी
1: कुर्बानी
0: नहीं है,
1: जो है
0: बेकार
1: वो
0: है जी।
1: कुर्बानी बेकार।
0: मतलब ये हमारे अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए, हमारी हैसियत होनी चाहिए कि हम जो हैं बकरा ला करके उसको कुर्बान
1: कहने
0: करें
1: का मतलब यह है कि आप जिस चीज की भी कुर्बानी करना चाहते हैं वो आपके पास आपके अपनी हैसियत के अनुसार होनी चाहिए, आप दूसरों
0: और
1: के उससे तय नहीं कर सकते कि वो भाव आपके अपने हैं, आपकी अपनी हैसियत
0: हिसाब से
1: के
0: जो
1: हिसाब
0: है।
1: से हैं।
0: और ये भी नहीं है कि हमें पड़ोसी का तो हमें जो भी कर्ज देना है और हम उसका कर्ज अदा ना करके हम कुर्बानी के लिए बकरा ले आए, ये भी उचित नहीं है,
1: बिल्कुल
0: ये भी
1: ठीक।
0: नहीं बताया। चाहे वो हज हो, हज में भी है कि आप अपने सारे जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उससे आप मुक्त हो गए हों, उसके बाद आप हज करने के लिए जाएं। हज फर्ज है, लेकिन
1: ऐसा
0: तभी
1: नहीं हो कि आप घर के परिवार की, समाज
0: हम
1: की जिम्मेदारी को
0: जिम्मेदारी
1: धता बता के और
0: उसके
1: हज
0: बाद हज
1: कर
0: करने
1: रहे हैं,
0: चले जाएं
1: तो
0: जी,
1: वो ऐसी हज किसी काम की नहीं है,
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: सिर्फ दिखावे भर
0: दिखावे
1: की
0: के
1: है।
0: लिए है जी।
1: आज जरूरत इसी बात की है जैदी साहब कि त्योहारों को नफरत फैलाने का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का एक माध्यम बनाने की जरूरत है।
0: हमारे हिसाब से तो त्यौहार भी इसीलिए रखे गए हैं। वैसे तो आदमी जो है अपने अपने कामों में मशगूल रहता है, कभी कभी मिलता है, लेकिन त्यौहार के टाइम पे आदमी एक दूसरे से मिलता है, चाहे वो
1: हम
0: होली हो, चाहे दिवाली हो,
1: बिल्कुल
0: ईद
1: ठीक
0: हो,
1: बात।
0: बकरीद हो, हम लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मिलते हैं, और करीब करीब ऐसे मौकों पर सारे लोग एक दूसरे से मिल ही लेते हैं, और जब हम मिलेंगे
1: सारे गिले शिकवे जो है ये
0: दूर हो जाते
1: त्योहार
0: हैं
1: जैसे मौकों
0: और
1: पे
0: प्रेम बढ़ता है
1: प्रेम
0: उससे
1: बढ़ता
0: जी।
1: है।
0: जब हम
1: बिल्कुल
0: गले
1: ठीक।
0: मिलते हैं एक दूसरे से, तो हमारा जो दिल जो है एक दूसरे के करीब होता है जी।
1: और हिंदुस्तान को अगर देखा जाए जैदी साहब, तो हिंदुस्तान की खूबसूरती भी यही है कि जहाँ पर एक साझी संस्कृति की विरासत, यहाँ एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के साथ भाईचारा। आप चूंकि ताजमहल उर्स कमेटी और मस्जिद इंतजामिया कमेटी से भी जुड़े हैं और इस चीज़ को बखूबी समझते होंगे कि जो आगरा की एक पहचान है सुलह कुल की नगरी की, एक जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब की एक जो विरासत है, वो आपको हर जगह हर त्योहार में हर उसमें जो है नजर आएगी। आप क्या कहेंगे?
0: नहीं बिल्कुल, चाहे मैं होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, सब एक दूसरे से खुशी खुशी मिलते हैं।

0: और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं जो, और यही एक ये सुलह नगरी भी है जो है, सुलह कुल की नगरी है। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने सुलह कुल का प्रोग्राम भी कराया था फतेहपुर सीकरी में। तो इस तरह के प्रोग्राम भी आगरे में होने चाहिए, जिससे कि ये दर्शाए कि जो हिंदू मुस्लिम एकता
1: जो एक सांस्कृतिक नगरी की
0: सांस्कृतिक
1: पहचान
0: नगरी की
1: है
0: पहचान
1: आगरा
0: है वो
1: की,
0: दे सके
1: वो
0: जो।
1: तो हम दे
0: चाहिए कि
1: सकें।
0: ताजमहल, आगरा तो एक
1: ताजमहल अपने
0: अपने आप
1: आप
0: में
1: में
0: एक
1: प्रेम, प्यार, मोहब्बत का तो एक
0: मोहब्बत
1: पैगाम
0: के
1: देता शहर है।
0: पैगाम देता है जो, एक
1: जी
0: ताज नगरी है, मोहब्बत का शहर है ये। और ऐसे ही ताजमहल भी एक मोहब्बत की निशानी के रूप में ही देखा जाता है, और इसी से पूरा दुनिया ताजमहल को देखने के लिए, इस प्रेम की नगरी में प्रेम की इमारत को देखने के लिए आती है जो।
1: बिल्कुल ठीक
0: और हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही प्रेम पूरे हिंदुस्तान में बरकरार रहे, और जो लोग इस भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारा ये संदेश है इस आपके मन से कि अपनी धारणाओं को बदलें, और जो प्यार मोहब्बत में रहने का जो मजा है वो नफरत में रहने का मजा नहीं है, बिल्कुल नहीं
1: बिल्कुल।
0: है।
1: ताजमहल जो है वो प्रेम का ही प्रतीक नहीं है, ये हमारी एक साझी जो
0: विरासत है जो,
1: विरासत है उसका भी प्रतीक है।
0: और एक हमारे भारत का गौरव है
1: बिल्कुल
0: ताजमहल, भारत का गौरव है।
1: सही
0: चाहे वो दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, वो ताजमहल बिना देखे नहीं जाता है, तो कशिश है उस।
1: उस प्रेम के जो प्रतीक बना हुआ है वो कशिश आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, खास तौर से युवा है, उन तक पहुंचाए जाने की भी जरूरत है। तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे
0: बिल्कुल
1: त्योहार के मौके पे जब आप कुर्बानी का त्योहार बकरीद हम मनाने जा रहे हैं, आप आज के युवाओं को आप क्या समझते हैं कि क्या सीख लेने की आवश्यकता है?
0: आज की युवा पीढ़ी में जो आज यंग जनरेशन आ रही है आज, उसमें कुछ बुराइयां पनपने लगी हैं, चाहे वो नशा हो, शराब हो, जुआ हो, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां आज की युवा पीढ़ी में देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती हैं जो। सबसे बड़ी बात कि बच्चों को आज ये चाहिए कि अपने बड़ों का सम्मान करे और इन सब बुराइयों से दूर रहे, तो इनका अपना भविष्य भी जो है उनका उज्ज्वल होगा। और आजकल एक स्टंट और चल रहा है, मोटरसाइकिलों पे सड़कों पे स्टंट करते हैं, उससे
1: अपने आप को
0: अपने
1: दिखावे की जो
0: दिखावा
1: संस्कृति
0: जो
1: आ
0: दिखावा
1: गई
0: है
1: है
0: जो
1: आज
0: है,
1: की पीढ़ी में, उससे
0: तो
1: आपका
0: दिखावे से
1: तात्पर्य
0: दूर
1: है।
0: रहना चाहिए।
1: युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि पैसा है, प्रसिद्धि है, अपने आप को ताकतवर दिखाने की जो नीयत है वो शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इंसान किसी के काम नहीं आ रहा है और
0: बिल्कुल सही,
1: समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अपने माँ बाप का अगर सम्मान नहीं कर रहा है, तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है
0: बिल्कुल
1: शायद।
0: सही है,
1: और ये त्योहार जो हैं वो हमको संवेदनशील बनाते हैं, ऐसी चीजों के प्रति संवेदनाएं पैदा करते हैं जहां पर हम इन चीजों के प्रति कम से कम वो भाव पैदा कर पाएं कि हमको असलियत में इंसान बनने की जरूरत।
0: सब चीजों की जरूरत है, आपने बिल्कुल सही कहा है जी।
1: अच्छा
0: और
1: जदी साहब, एक चीज जो और आजकल मैं महसूस करता हूँ, उस पर भी आपके ख्यालात जानना चाहूंगा, कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में त्योहारों का जो स्वरूप है वो भी बिगड़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि त्योहारों की जो अहमियत है, त्योहारों की जो एक आत्मीयता है, वो क्या कम हो रही है?
0: ये मोबाइल जब से आए हैं, सोशल मीडिया है, उससे लोगों के बीच में दूरियां कम हो गई हैं। उसका कारण है कि व्हाट्सएप पे ही कह देते हैं ईद मुबारक, होली मुबारक, जबकि हम जब आपस में मिल करके मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे के घर जाके मुबारकबाद देते हैं, उससे प्रेम बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, और आत्मीयता नजर
1: कायम
0: आती है
1: होती
0: जो,
1: है, बिल्कुल
0: कायम
1: ठीक
0: होती है
1: बात
0: जो।
1: है।
0: तो इसलिए आज सोशल मीडिया पे बहुत से मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन आदमी देख ही नहीं पाता है कि देखा है कि नहीं
1: तो वो
0: देखा,
1: जो
0: यही मालूम
1: आपसी
0: पड़ता है
1: संवेदना
0: कि
1: है वो शायद कहीं ना
0: वो
1: कहीं
0: कहीं ना कहीं
1: जुड़ाव।
0: खत्म हो रही है, कम हो रही है जो। सोशल मीडिया भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरी जरूरी है, लेकिन ऐसे मौकों पर कम से कम आदमी को
1: ये जो
0: आपस
1: त्योहार
0: में
1: हैं
0: मिलने चाहिए
1: वो
0: जो, हाँ
1: ज्यादा
0: ज्यादा अहमियत है
1: अच्छे
0: जो,
1: मौके हैं
0: उसमें
1: जहां पर
0: मिलने
1: एक
0: जुलने का
1: दूसरे
0: जो।
1: के प्रति आप जो है केवल तस्वीर भेज के या दिखावा करके या केवल एक मैसेज भर भेज के वो अपना फॉर्मेलिटी ना कर दें,
0: फॉर्मल
1: है ना?
0: मैसेज भेज करने से
1: त्योहार का
0: फॉर्मेलिटी हो
1: असली
0: जाती है जो,
1: आनंद
0: हाँ
1: तो रिश्तों में है, त्योहार का असली आनंद तो मुलाकातों में
0: मुलाकातों
1: है,
0: में
1: त्योहार
0: जो,
1: का असली आनंद तो एक दूसरे के लिए दुआ करने में है, एक दूसरे के साथ जज्बात शेयर करने में है।
0: अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप भी खैरियत से रहें? नमस्ते, एक दूसरे से नमस्ते हो गई, हाथ जोड़ गए, फिर हम मिल लिए, तो हार्ड एक दूसरे से मिल गया, तो इससे मोहब्बत बढ़ती है जी।
1: अच्छा जदी साहब, त्योहार के जो मौके होते हैं उसमें साफ सफाई या जो हमारा इर्द गिर्द का पर्यावरण वातावरण होता है या जो हमारी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो भी

0: महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे
1: बिल्कुल।
0: त्योहार के मौकों पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे सुनने वालों को?
1: चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, तो सबसे पहले आदमी अपने घर की सफाई करता है, और घर की सफाई से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की भी सफाई करनी चाहिए।
0: सबसे
1: सबसे
0: इंपॉर्टेंट
1: इम्पोर्टेंट है मन की सफाई। हमने घर तो साफ कर लिया, रंग रोगन हो गया, लेकिन हमने अपने मन में जो गंदगी थी, जो मैल था, उसको अगर साफ नहीं कर पाए तो ऐसा मकान को भी सफाई करने से हमारे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए है कि
0: बिल्कुल
1: हमने साफ कर लिया, लेकिन हमें सबसे पहले अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। जैसे कि होली होती है, होली का मतलब क्या है ये कि बुराइयों को दफन करना, लेकिन देखने में आता है कि होली के त्यौहार पे ही लोग लड़ाई झगड़ा इस तरह का करने लगते हैं। तो हमने बुराई को जलाया तो नहीं, जबकि मतलब है कि बुराई को जला देना जो है। तो बुराई, अपने मन की भी सफाई, इन त्योहारों के मौके पर अपने मन की भी सफाई करना बहुत आवश्यक है। और
0: कोई भी
1: अगर
0: धर्म
1: कोई
0: हो
1: भी वहाँ कोई
0: वो
1: देखे
0: हमेशा
1: कोई भी धर्म
0: अनुशासित
1: देखे
0: रहने की शिक्षा देता है।
1: कोई भी धर्म हो, वो गलत बात तो बताते ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज इंसानियत, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, गलत काम ना करना, अच्छे कामों को करना, ये सारे धर्म जो है यही सिखाते हैं।
0: अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना, सार्वजनिक स्थानों को जो है नुकसान ना पहुंचाना, किसी को हमारे किसी काम से असुविधा ना हो, एक हम जिम्मेदारी पूर्ण अपना व्यवहार रखें,
1: बिल्कुल सही,
0: ये भी इबादत के हिस्से
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: ये भी बात है जो मैं कहता हूँ, खिदमत खल्क तो
0: हाँ, बात
1: किसी
0: वहीं आ
1: वो
0: जाती है कि
1: जी
0: सबसे
1: खिदमत
0: जरूरी
1: खल्क
0: है कि
1: जो है
0: हमारी भावनाएं क्या हैं, उसमें करुणा है या
1: या
0: नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है जी।
0: इंसानियत है या नहीं है। जब एक इंसान दूसरे आदमी के दुख को समझता है, उसके बारे में सोचता है, तो समाज अपने आप बेहतर बनता
1: बेहतर
0: जाता
1: बनता
0: है।
1: है बेशक।
0: हर मजहब इंसान को एक दूसरे से जोड़ने की ही तो बात करता है, और अगर हम सब अपने दिलों में मोहब्बत रख लें, ज़रूरतमंदों की मदद कर लें, नफरत से दूर रहें, हमारी आगरा की जो पहचान है साझी सांस्कृतिक विरासत की, तो शायद हमारे लिए जो है वो असली इबादत यही है। और जैदी साहब, बड़े ही आसान और सरल से शब्दों में आपने जो आज बातें हमारे सुनने वालों के साथ शेयर की हैं, मुझे लगता है कि बकरीद का जो असली मायने हैं, असली संदेश है, वो हमारे श्रोताओं तक अवश्य पहुंचा होगा। आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद देना चाहता हूँ आकाशवाणी को, जिन्होंने हमें यहाँ पर आप लोगों से बात करने का मौका दिया। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद की मुबारकबाद देता हूँ।
0: श्रोताओं नमस्कार, आदाब, और आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था बकरीद का त्योहार और कुर्बानी के मायने, जिसमें सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी से बातचीत की थी अनिंद्र सिंह जी ने। श्रोताओं, आज बकरीद का त्योहार तो हमें याद है, लेकिन इसके साथ साथ आज वीर सावरकर की जयंती है। दोस्तों, वीर डी सावरकर का नाम हम सभी ने सुना है, इनके बारे में हम बात करेंगे, पर तब तक के लिए आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: रहने दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के

0: माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: दोस्तों, आज वीर सावरकर यानी वीर डी सावरकर की जयंती है। आज वीर दिनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर पूरा राष्ट्र उस महान क्रांतिकारी को श्रद्धापूर्वक नमन करता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की स्वतंत्रता और राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही वीर सावरकर केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वो एक महान राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, लेखक, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी के विचारक भी थे। दोस्तों, उनका जीवन साहस, त्याग, संघर्ष और अटूट देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं के मन में देश प्रेम की ऐसी ज्योति जलाई थी जिसने अंग्रेजी शासन की नींव तक हिला दी थी। साथ ही वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना कर युवाओं को देश की आजादी के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को नई पहचान दी और भारतीयों में क्रांति की भावना को प्रबल किया। वे उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने ये विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता केवल प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि साहस और संघर्ष से प्राप्त होती है। उनके क्रांतिकारी विचारों से भयभीत होकर अंग्रेजों ने उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा भी दी थी। लेकिन साथ ही उनका जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो हर कठिन परिस्थिति में भी अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और सामाजिक एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। उनके विचार आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और संगठित भारत के निर्माण पर आधारित थे। आज जब हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तब हमें उन महान बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसकी वजह से ये आजादी हमें मिली है। साथियों, वीर सावरकर यानी वीडी सावरकर का जीवन हर युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका संघर्ष हमें यह संदेश देता है कि यदि इरादे मजबूत हों और मन में राष्ट्र प्रेम की भावना हो, तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। आज उनकी जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश की एकता, संस्कृति और सम्मान की रक्षा करेंगे तथा अपने कर्मों से भारत को और अधिक मजबूत और गौरवशाली बनाएंगे। साथियों, वीर सावरकर का जीवन सदैव हमें देशभक्ति, साहस और आत्मबल की प्रेरणा देता रहेगा। इसी क्रम में आइए सुनते हैं एक गीत।
2: दिखाए छुप छुप करती रेल चलाए सीटी देकर।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत और आज का हमारा शब्द है दुपट्टा। तो आइए सुनते हैं इसी क्रम में कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म पाकीज़ा से लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने।

श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मुझसे शादी करोगी से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

शुद्धम ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अखियों से गोली मारे से, सोनू निगम, अलका याग्निक, संजीवनी और साथियों की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कौन है जो सपनों में आया से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मुझे कुछ कहना है से अनुराधा श्रीराम की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म पार्टनर से सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाज में। शब्बीर अहमद के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, पार्टनर फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 106.1 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म पुकार से, शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी, जावेद अख्तर और राजकुमार संतोषी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म

श्रोताओं, ताल फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा आज का चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। हमारा अगला प्रसारण समाचार संध्या बस कुछ ही देर में है।

0: संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य के सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई दी गई। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमान के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमान के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधीन्द्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान।
3: आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमान के साथ संसदीय नेता के चयन

0: और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना

देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त

0: किया है।
1: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिगारों से खिताब करते हुए डीके शिव कुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदु किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी।

0: सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज आइंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
1: देही तरक्कियात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो खवातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकों, खासतौर पर खवातीन, गरीबों और बच्चों के मामलात से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया अख्तियार करे जिससे शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गैंगटॉक में अलंकरण परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने अमनो कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश भी की।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का बाजाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरे में BDT यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के CSIR कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर इतवार के रोज कर्नाटक में ही श्री सनती पार्क का इफ्तिताह करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुजाकरात, बहसो मुबासे, इतफाक राय और इख्तलाफी राय की इजाजत देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली कानून साज असम्बली में 1930 तक मरकजी कानून साज असम्बली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाईयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिरला ने कहा कि इस मजमुए से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि यह हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख, विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज करें जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानून साज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सैमाही जरीदे का भी आगाज किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, दिल्ली काबीना वजीर प्रवेश साहब सिंह और दिल्ली कानून साज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस तकरीब में शिरकत की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तेलंगाना में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 5 साल में 200 इंटरसिटी रेलगाड़ियां बनाएगा। इन ट्रेनों को कम दूरी के सफर के लिए पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। जनाब

0: वैष्णो ने रेलवे के वजीर ममलिकत रवनीत सिंह बिट्टू और आला एहलकारों के साथ मीटिंग में हाजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमली शक्ल देने के मंसूबों का जायजा लिया। ये रेलगाड़ियां तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलेंगी और हर ट्रिप में ये कई जगह रुकेगी ताकि लोग कस्बों और शहरों के दरमियान आसानी के साथ सफर कर सके। इस तरह इन ट्रेनों के जरिए लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में सफर के लिए नया कम खर्च मुतबादल मिल जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने ट्विशा शर्मा की सास गिरी बाला सिंह को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है, जो एक रिटायर्ड जिला और सेशन जज हैं। उन्हें ट्विशा शर्मा की मौत से मुतालिक केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिहायशगाह पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर तलाशी ली और उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सपहर 5:10 पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सीबीआई की एक अदालत में पेश किया गया और इससे पहले उनकी तिब्बी जांच की गई। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को तश्वीशनाक बताते हुए और जारी तफ्तीश के पेश नजर उनकी पेशगी जमानत मनसूख किए जाने के एक दिन बाद की गई है। ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई थी। उनके ससुराल के अफराद ने इसे खुदकुशी का केस बताया था, जबकि ट्विशा के कुंबे ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में डोरीमल के मकाम पर घने जंगलों में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई का ये छठा दिन है। हिफाजती दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया और यहां दहशतगर्दों के छिपने की मुश्तबा जगहों पर ताजा फायरिंग की और ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। इब्तदाई सुराग रसानी से मालूम हुआ था कि 2 या 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलात पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीकेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ इश्तराक से मुतालिक मामलात पर बातचीत की। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का आज भोपाल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुनबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद आज दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नजदीक कब्रिस्तान में आज शाम की गई। बशीर बद्र एक तवील अरसे से निसियान की बीमारी में मुबतला थे। वो उर्दू शायरी को जदीद तर्ज में ढालने और आसान लबो लहजे में शेर कहने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलें भारत और बैरून मुल्क काफी ज्यादा मकबूल हुई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। ये लाफानी अशार बशीर बद्र की शायरी की जान है। नहायत सलीस अल्फाज मगर तासुरात बहुत गहरे, गुर्बत पर मबनी जज्बात लेकिन ख्यालात आफाकी। उनकी शायरी में मोहब्बत, फुरकत, रिश्ते, अलहदगी और रोजमर्रा की जिंदगी के खामोश पोशीदा जज्बात पाए जाते हैं। बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को एक ऐसी जबान अता करके एक नई जहद बख्शी जो आम लोगों के दिल के बहुत करीब है। उनके अशार मुशायरों में तो गूंजते ही थे, साथ ही अक्सर व बेशतर गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बहुत से मुशायरों की निजामत भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में की। बशीर बद्र को 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था और उनके मजमूए कलाम आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड अता किया गया था। न्यूज डेस्क से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के साइंसदान डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों को शदीद गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी।
2: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31

0: तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया।
1: कौमी राजधानी खत्ते के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। दो भारतीय पहलवान आज वियतनाम के शहर दनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रोम जुमरे में सचिन कलप्पा शिरोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11-4 से शिकस्त दी, जबकि रुद्र किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भारत की पीवी संधू और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: countrywide.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
1: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
2: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, इस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
2: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पर सभी को जो

गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है, लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है, लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़

0: ये शुरुआती लक्षण है और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए, और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
1: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
0: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी लग रही है, या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा, जैसे मैंने बताया, नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं, और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें, जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए, हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, देड़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें, जो पीक आवर्स होते हैं जो कहते हैं 12

0: से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसपे से वेपोरेशन काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए, धूप रहते मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी कर लें, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के लोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए। और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें, ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ रहता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
0: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटें नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका सर्जना। कार्यक्रम सर्जना में सबसे पहले आइए सुनते हैं वार्ता, जिसका विषय है संस्कृति का सजीव दस्तावेज है रंगमंच। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुशील कुमार सक्सेना।
1: संस्कृति का सजीव दस्तावेज है रंगमंच। आइए शुरुआत करते हैं पहले शब्द संस्कृति से। अपनी रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में हम अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु यह संस्कृति वास्तव में है क्या? संस्कृति के शाब्दिक अर्थ के द्वारा जो परिभाषा हमें ज्ञात होती है, अगर उसकी बात करें तो किसी भी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का नाम ही संस्कृति है। अक्सर सभ्यता और संस्कृति का एक साथ प्रयोग किया जाता है और कुछ लोग तो दोनों को एक ही मान बैठते हैं। सभ्यता से किसी समाज की भौतिक क्षेत्र की प्रगति सामने आती है, जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति का भान होता है। मन और आत्मा की संतुष्टि के लिए इंसान अपने अंदर जो कुछ खोजकर उसका विकास करता है, वही संस्कृति है। और मनुष्य की मन की भूख ही तो उसे संगीत, साहित्य, कला, मूर्ति, वास्तु आदि के क्षेत्र में खींचकर ले जाती है। कला, संगीत, साहित्य, वास्तु विज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी कुछ तो संस्कृति के मुखरित पक्ष हैं। आइए अब अपने विषय के दूसरे शब्द रंगमंच की ओर मुड़ते हैं। रंगमंच यानी सामान्य अर्थों में नाटक का मंच, या अंग्रेजी में कहें तो थिएटर, वह स्थान जहां नाटक, नृत्य, खेल आदि हों। और विस्तार में जाएं तो एक ऐसा स्थान जहां दर्शकों के बैठने का स्थान हो और नाटक आदि के मंचन हेतु सामने अलग स्टेज हो। इस पूरे स्थान को प्रेक्षागृह, रंगशाला या नाट्यशाला या थिएटर या ओपेरा नाम दिया गया। रंगमंच का प्रारंभ कब हुआ, इस पर अगर विस्तार से बात की जाए तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, किंतु संक्षेप में कहें तो यूनान और रोम की प्राचीन सभ्यता में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रंगमंच के होने के प्रमाण मिलते हैं, किंतु 2वीं शताब्दी में न केवल रंगमंच को कामदेव का स्थान माना जाने लगा, वरन 8 शताब्दियों तक तो इसे बहिष्कृत ही कर दिया गया। 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य पुनः बाइबल की कथाओं की नाट्य प्रस्तुतियों से पुनर्जीवन इसको मिला और फिर 14वीं शताब्दी में यह पूर्ण जीवंत हो उठा। और उसके बाद सन 1590 से 1620 ईस्वी तक शेक्सपियर के नाटकों ने जिस प्रकार इसे मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया, वह उत्तरोत्तर आज भी विकास की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है। अगर अपने देश की बात करें तो इसका प्रारंभ और उसके सूत्र ऋग्वेद में मिल जाते हैं। भरत मुनि, जिन्हें भारत में नाटक का पुरोधा माना जाता है, उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा ने ऋग्वेद से कथोपकथन, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाटक का निर्माण किया। संस्कृत साहित्य में उच्च कोटि के नाटकों का बाहुल्य है। भास, हर्ष, कालिदास जैसे नाटककारों ने नाटक लिखे और उनके नाटक आज भी विश्व स्तर पर रेखांकित किए जाते हैं। आधुनिक युग में पारसी थिएटर ने जो गति पकड़ी तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इप्टा आदि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने इसकी गति को बरकरार रखा। निश्चय ही सिनेमा और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल्स के आने से रंगमंच की लोकप्रियता कम हुई, किंतु उनका एक विशिष्ट दर्शक वर्ग तो बना ही रहा। संस्कृति और रंगमंच में एक बड़ा ही निकटतम संबंध है, जिसके कारण रंगमंच को संस्कृति का सजीव दस्तावेज माना जाता है। एक बहु प्रचलित उक्ति

0: है, साहित्य समाज का दर्पण है। रंगमंच इसी साहित्य के विभिन्न रूपों का और उनके प्रदर्शन का माध्यम है। कविता, नृत्य, गीत, नाटक सभी तो रंगमंच के माध्यम से जन जन तक पहुंच पाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो रंगमंच साहित्य को जनता से जोड़ने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। हमारी संपूर्ण संस्कृति जो समाज के मानस में तरंगित होती रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित भी होती है, वह या तो लिखित साहित्य के रूप में संरक्षित रहती है या रंगमंच के माध्यम से मंचित होकर निरंतर प्रवाहमान होती रहती है। रंगमंच ने इसी कारण संस्कृति के सजीव दस्तावेज होने का सदा से उत्तरदायित्व वहन किया है। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि शब्द जब दृश्य और श्रव्य माध्यम से रूपाकार होते हैं, तब उनकी क्षमता कई कई गुना बढ़ जाती है। रंगमंच ने अपनी इस क्षमता का न केवल हमेशा ही उपयोग किया, वरन इसके माध्यम से सांस्कृतिक चेतना को भी जगाए रखा। वैदिक युग की जो संस्कृति थी, वह हर्ष भास और कालिदास के नाटकों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। उस समय की संस्कृति में आश्रम व्यवस्था, यज्ञ, 16 संस्कार समाज की जीवनचर्या का अनिवार्य हिस्सा थे और ये उस समय रचे गए मंचन योग्य रचनाओं में प्रचुरता से मिलता है। रामायण और महाभारत काल तक आते आते हमारी संस्कृति में काफी कुछ जुड़ चुका था, जिसमें नियोग प्रथा, वचन पालन के प्रति कठोरतम समर्पण, शस्त्र विद्या का चरमोत्कर्ष उस काल की संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा थे और ये सब कुछ हमें उस युग में रची रंगमंचीय सामग्री में स्पष्ट नजर आता है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के काल में जब बौद्ध एवं जैन धर्म हमारी संस्कृति का हिस्सा बना, तो तमाम सारी नूतन परंपराएं भी हमारी संस्कृति में समाहित हो गईं, जिनमें अहिंसा परमो धर्म और जी और जीने दो जैसे सिद्धांतों का कठोरता से पालन हमारी संस्कृति की मुख्य धारा में शामिल हो गए और ये उस काल में रचे रंगमंची प्रदर्शनों में बहुमत से नजर आते हैं। देश के हर भाग की संस्कृति को रंगमंच ने न केवल प्रश्रय दिया, वरन जन जन से जोड़े रखा। लोक नृत्य हो, शास्त्रीय नृत्य हो, या लोक मंगल को समर्पित लोक कथाएं, या इन सबको स्वयं में समेटकर कथा रूप में सजाते संवारते नाटक, सभी को रंगमंच ने एक जीवंत दस्तावेज के रूप में सहेजा और गति दी। यदि रंगमंच न होता तो आल्हा, रामलीला, कालबेलिया, घूमर, रास, पाईडंडा, सैत्रीय, जात जैसी सांस्कृतिक धरोहरों को हम कभी भी जीवित नहीं रख पाते। रंगमंच का सबसे बड़ा योगदान तो यह है कि वह वहां जहां लिपि की पहुंच नहीं हुई, जहां कागज और कलम या ऐसे अन्य माध्यमों से मानव अनभिज्ञ था, वहां भी वहां की संस्कृति को रंगमंच ने जीवित रखा। आज कहा जाता है कि सिनेमा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से रंगमंच बिखर रहा है, उसे दर्शक नहीं मिलते, उसकी उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, किंतु अगर जरा सा दृष्टि बदल कर देखा जाए तो ये दोनों माध्यम रंगमंच का विकल्प बनकर ही तो उभरे हैं और उनकी पहुंच का दायरा भी रंगमंच की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा है। दूसरी ओर ये भी सत्य है कि बेशक बड़े नगरों और महानगरों में रंगमंच की लोकप्रियता घटी हो, किंतु गांव कस्बों में, जिनमें आज भी भारत की 60% आबादी तो रहती ही है, आज भी वहां किसी न किसी रूप में रंगमंच न केवल जीवित है, वरन अपनी भूमिका का भी पूरी जिम्मेदारी से निर्वाह कर रहा है। संक्षेप में कहा जाए तो रंगमंच आदिकाल से संस्कृत की जीवंतता को समेटकर उनके दस्तावेज बने रहने की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और थोड़े बहुत समयानुसार परिवर्तन के बावजूद उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और वे मुख्यधारा में रचा बसा एक ऐसा इतिहास है जिसके बिना किसी भी समाज की आज कल्पना भी नहीं की जा सकती।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था संस्कृति का सजीव दस्तावेज है रंगमंच। वार्ताकार थे डॉक्टर सुशील कुमार सक्सेना। कार्यक्रम सर्जना में इसी क्रम में आइए सुनते हैं कहानी जिसका विषय है कायाकल्प और कहानीकार हैं अरुण डंग।
2: तुम्हारे लिए कैलाश का रिश्ता आया था, घर वालों को पसंद था, पर ऐन मौके पर तुमने सबकी हां में अपनी ना मिलाकर घर वालों को हठात हतप्रभ कर दिया था। पूरे दिन घर में खलबली रही थी, हर किसी ने तुम्हारे जहन में आग भरी थी। दादी ने हाय कैसी लड़की है, हमारे जमाने में तो ऐसा ना था कहकर पूरी तरह से तुम्हें अंदर ही अंदर

अंदर छील दिया था। तुम क्रोध में मिच मिचाकर धड़धड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई थी और धड़ाम से अपने को पलंग पर गिरा दिया था। तुम्हारे व्यथित दिल में गजब की कुलबुलाहट थी। कुछ क्षण पश्चात ना जाने क्या सोचकर तुम पलंग से छोटे स्टूल पर आ ली थी और यूं ही घंटों बैठी रही थी। तुम्हें कोई गहरी सोच थी। तुम्हारी संगमरमरी देह पर कब आकर अंधेरा बिखर गया तुम्हें शायद मालूम भी ना पड़ा था। काफी देर बाद तुमने अपने को अकड़ा हुआ महसूस किया था। अपनी पीठ को सीधा करने के लिए तुम पीछे की दीवार का सहारा लेना चाहती थी। अपनी हथेलियों को दो पंखड़ियों की भांति फैलाकर तुमने अपने सिर को उसमें समो दिया था। तुम्हारी मोटी आंखों से ढुलकते मोटे मोटे आंसू तुम्हारी कोहनियों तक ढुलक गए हैं। तुम अपनी कपोलों को धीमे धीमे अपनी हथेलियों से सहलाती किसी गहरे विचार में डूब गई हो। तुम्हें सहसा ही लगा मानो सदैव की भांति बैडमिंटन का रैकेट उठाए उपवन की तरह महकता तुम्हारे जीवन में बहारें भरता राजीव तुम तक आ गया है और धीमे से तुम्हारा नाम उसने पुकारा है। सुधा, तुमने हौले से पलकें उठाकर उसे निहारा है और आप पलक निहारती ही जा रही हो। खेल कर आए हो? हाँ सुधा, आज फाइनल था। क्या हुआ? मैं जीता, वह भी लव पर। लव पर बाजी? तुम चकित भाव से रुककर बोली, लव पर बाजी राजीव, खेल के मैदान में ही तुम जीत सकते हो, जीवन के नहीं। तुम्हें मालूम नहीं राजीव, तुम क्या कुछ हारने जा रहे हो। एक ऐसा खेल जो फिर दोबारा शायद ना खेला जा सकेगा। मैंने जब भी कोई खेल खेला है सुधा, कभी हारा नहीं, भले ही यह किसी भी प्रकार का हो। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम कुछ हारने जा रही हो तो मुझे याद कर लेना। पराजय को विजय में बदलने की अपनी क्षमता से मैं परिचित कराऊंगा। ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? भाभी की आवाज तुम्हें अकस्मात आपे में ले आती है और तुम पालती खोलकर सीधी खड़ी हो जाती हो। सामने गर्म बल्ब के शीशे से टकरा कर चूर होते हुए पतंगे तुम्हारे लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे थे। ना जाने कौन सी शक्ति तभी तुम्हारे अंदर घर कर गई थी और तुमने सीधा अपने बेडरूम में जाकर राजीव को फोन मिलाया था और एक ही सांस में ही कह गई थी, राजीव आज भी फाइनल है, देखना तुम इसमें विजयी होते हो या नहीं। आज तुम्हारी क्षमता मुझे देखनी है और देखना है तुम्हारे अंदर संघर्ष करने का मादा। मैं प्रतीक्षा करूंगी। गई रात तक उसी छत पर जहां हम मिला करते थे, आज भी मिलेंगे अगली राहों पर मिलकर चलने के लिए। बिना राजीव का उत्तर दिए तुमने फोन बंद कर दिया है। बैठक में दृढ़ भाव से तुमने राजीव के पक्ष में आवाज बुलंद करके कोहराम मचा दिया है। तुम्हारे पिता से तुम्हारी ये उद्दंडता सहन नहीं की गई है और बेशर्म कहकर तड़ाक से तुम्हारा चेहरा लाल कर दिया है। ऐसा लगने लगा है मानो सारा का सारा खून सिमट कर तुम्हारे कोमल कपोलों पर आ गया है और छा गया है। परंतु तुम्हारे अपने निश्चय में कहीं भी फिसलन नहीं आई है और ना ही तुम कहीं विचलित होती दिखाई देती हो। तुमसे एक कोर भी नहीं निकला गया है। तकिए की ओट में सिर धम से डालकर तुम पलंग पर उल्टी पड़ी रहीं, बीच में कभी कभी हल्की सी घड़ी देख लिया करती हो। रात के 9 बजे कमरे को खाली देखकर तुम अपनी छत की ओर दौड़ी हो। तुम्हारी छत से भवानी प्रसाद जी की भी छत मिलती है। यहीं तुम राजीव को आने के लिए कहा था। तुम्हारे पहुंचने से पूर्व भी राजीव वहां उपस्थित था। उसके चौड़े कंधे से लगकर तुम बेतहाशा रोई हो। राजीव ने तुम्हें दिलासा दिया है। मत रो सुधा, चुप हो जाओ। तुम्हारी मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू अच्छे नहीं लगते। घबराती क्यों हो? मैं जो हूं तुम्हारा। तुम्हें उसकी बात इतनी असर कर गई थी कि तुम उसे अपना मानकर अब पराये से लगने वाले पिता को छोड़ देने का निश्चय भी तत्काल कर बैठी थी। अभी राजीव आएगा, तुमने सब तैयारी कर ली है, अब तुम प्रतीक्षा में न

0: बिछाए बैठी हो। छत पर इस समय तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। रात्रि का समय, पूर्ण निस्तब्धता। अचानक नीचे से किसी कुत्ते के रोने की आवाज तुम्हें और पूरे वातावरण को चीर देती है। शायद भवानी प्रसाद जी ने उसे डंडों से मारा है। नेहात गुस्सैल आदमी है। कुत्ते के बाद वह अपनी पत्नी की ओर मुखातिब हुए लगते हैं। क्यों आने देती हो इस घटिया किस्म के जानवर को घर के अंदर? कितनी बार कहा था मत डाला करो इसके आगे रोटी के टुकड़े। एक टुकड़ा इन्होंने खा लिया तो यहीं पड़े रहेंगे। मारो पीटो मजाल है, चौकट छोड़ जाए सब चौपट कर देंगे। एक बार फिर निस्तब्धता। हर वस्तु मौन शांत, पर तुम्हारे मन मस्तिष्क में बला का तूफान। एक घटिया किस्म का जानवर एक टुकड़ा रोटी का खाने के पश्चात घर छोड़ने को तैयार नहीं। मैं तो इंसान हूँ, सारी उम्र इस चौकट से खाया है, माँ के सीने से लगकर ना जाने कितना अमृत पिया है, फिर भी एक डांट से ही इतनी बौखलाहट। आओ सुधा चलो, तुम अभी विचार ही रही होती हो कि राजीव आ जाता है। तुम गंभीर मुद्रा में भारी पैरों से उसके पीछे चल देती हो। सीढ़ियों से तुम बामुश्किल उतरी हो। तबीयत तो ठीक है ना? तुमसे अब भी कोई उत्तर नहीं बन पा रहा। भवानी प्रसाद जी के दरवाजे की सांकल खोलते ही तुम्हारे आगे कराता हुआ कुत्ता आ जाता है। तुम पर एक और आघात। रुक क्यों गई सुधा? बस राजीव बस, मैं अब आगे ना जा पाऊंगी, मुझे यहीं छोड़ दो। बस अपने मन में कोई भ्रम ना पालना, मैं सहर्ष तुम्हारे साथ हर संघर्ष करने को तैयार हूँ, पर ऐसे नहीं। इस घर के प्रति भी मेरा फर्ज है, उसे यूं ही नहीं त्यागना चाहती। अच्छा हो तुम लौट जाओ। ये तुम्हें क्या हो गया सुधा? कुछ नहीं राजीव, बस इतना समझ लो कि इस अभिशप्त शरीर को एक घटिया किस्म के जानवर ने शाप मुक्त कर दिया। तुम लौट आई हो। छत पर पहुंचते ही तुम्हारी नज़र मुझ पर गिरी है। उन्होंने तुम्हारी तुम लौट आई हो घर पर पहुंचते ही तुम्हारी नज़र अपने पिता पर गिरी है। उन्होंने तुम्हारी हर गतिविधि देखी है। आंखों में उनके प्रेम स्नेह के आंसू उमड़ आए हैं और तुम्हारा ललाट किसी विश्वास के बिंदुओं की तरह चमचमा रहा है। कुछ देर में ही तुम उनकी बाहों में होती हो।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कहानी जिसका विषय था कायाकल्प। कहानीकार थे अरुण डंग। कार्यक्रम सर्जना के क्रम में अंत में आइए सुनते हैं रजाक अहमद से ये काव्य पाठ।
2: कि देश जो गुलाम था तो एक होके लड़े सभी, और देश जो गुलाम था तो एक होके लड़े सभी। मेरे प्यारे भारत की अजब कहानी है। कि देश जो गुलाम था तो एक होके लड़े सभी, मेरे प्यारे भारत की अजब कहानी है। और 26 जनवरी संविधान लागू हुआ, बामा भीमराव की ये अमर जुबानी है। कि 26 जनवरी संविधान लागू हुआ, बाबा भीमराव की ये अमर जुबानी है। तो शेखर सुभाष अशफाक व भगत ने तो और होके कुर्बान हमें दे दिए निशानी है। कि शेखर सुभाष अशफाक व भगत ने तो होके कुर्बान हमें दे दिए निशानी है। और अपना तिरंगा अब झुकने न पाए कभी, अपना तिरंगा अब झुकने न पाए कभी। आओ आज मिलकर कसम उठानी है। अपना तिरंगा अब झुकने न पाए कभी, आओ आज मिलकर कसम उठानी है। और दूसरा छंद देखें कि तीन रंग का तिरंगा लहरा रहा है कैसा हमारे देश में। कि तीन रंग का तिरंगा लहरा रहा है कैसा, और देश के शहीदों को तो इससे ही प्यार था। कि तीन रंग का तिरंगा लहरा रहा है कैसा, देश के शहीदों को तो इससे ही प्यार था। और तोड़ के गुलामी वाली सारी हम जंजीरें, तोड़ के गुलामी वाली सारी हम जंजीरें, कर दे आजाद देश यही तो खुमार था। तोड़ के गुलामी वाली सारी हम जंजीरें, कर दे आजाद देश यही तो खुमार था। तो हरे से हो।

भूरा रंग शांति का, तिरंगे के रंग के हरे से हो हरा भरा, और भूरा रंग शांति का, और केसरिया में वीरों का अलग बलिदान था, और लाला जी हो लाजपत गांधी सुखदेव गुरु, लाला जी हो लाजपत गांधी सुखदेव गुरु, मेरे देश पे तो जन जन कुर्बान था, लाला जी हो लाजपत गांधी सुखदेव गुरु, मेरे देश पे तो जन जन कुर्बान था। अब ये कुछ मुक्तक पेश करता हूं, उनको भी देख लें आप।

आज बुढ़ापा जीवन की दुश्वारी है। एक बाप ने चार चार बेटे पाल दिए, एक बाप ने चार चार बेटे पाल दिए, चार पे बाप अकेला अब तो भारी है, चार पे बाप अकेला अब तो भारी है। और दूसरा देखें कि अपने वतन की मिट्टी में खो जाएंगे, अपने वतन की मिट्टी में खो जाएंगे, धरती माँ की गोद में हम सो जाएंगे, धरती माँ की गोद में हम सो जाएंगे, अपने भारत देश की इज्जत की खातिर, अपने भारत देश की इज्जत की खातिर होकर के कुर्बान अमर हो जाएंगे, होकर के कुर्बान अमर हो जाएंगे। ये हमारे वीर शहीदों का जज्बा था और ऐसा ही उन्होंने किया, और आज सरहद पे भी हमारे वीर सैनिक ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही उनकी सोच है। आगे देखें आप एक मुक्तक और कि सब देशों में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है, कि सब देशों में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है, लड़ बैठेगा आपस में तो सबका ही नुकसान है, कि सब देशों में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है, लड़ बैठेगा आपस में तो सबका ही नुकसान है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने ही कुर्बानी दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने ही कुर्बानी दी, और तेरा मेरा क्यों करते हो सभी का हिंदुस्तान है, तेरा मेरा क्यों करते हो सभी का हिंदुस्तान है। ये माँ के लिए मुक्तक जो काफी मशहूर है, इसे भी देख लें आप कि कभी लोरी सुनाती है कभी खाना खिलाती है, कभी लोरी सुनाती है कभी खाना खिलाती है, अगर मैं रूठ भी जाऊं तो एक पल में मनाती है, कभी लोरी सुनाती है कभी खाना खिलाती है, अगर मैं रूठ भी जाऊं तो एक पल में मनाती है, और मेरी माँ बड़ी भोली इसे गिनती नहीं आती, मेरी माँ बड़ी भोली इसे गिनती नहीं आती, मैं रोटी एक मांगू तो वो लेकर चार आती है, मेरी माँ बड़ी भोली इसे गिनती नहीं आती, मैं रोटी एक मांगू तो वो लेकर चार आती है। और बचपन में जो मिलता था वही प्यार मिल गया, बचपन में जो मिलता था वही प्यार मिल गया, और माँ ने छुपाया गोद में संसार मिल गया, माँ ने छुपाया गोद में संसार मिल गया, कि मेरे माँ बाप के सजदे सफर में साथ रहते हैं, मेरे माँ बाप के सजदे सफर में साथ रहते हैं, और मैं जब तक घर ना आ जाऊं दुआ में हाथ रहते हैं, मैं जब तक घर ना आ जाऊं दुआ में हाथ रहते हैं। और बचपन में जो मिलता था, बचपन में जो मिलता था वही प्यार मिल गया, और माँ ने छुपाया गोद में संसार मिल गया, माँ ने छुपाया गोद में संसार मिल गया। और ये कुछ छंद हैं, क्योंकि हम अलीगढ़ और आगरा हाथरस मथुरा ये क्षेत्र ऐसा है कि ये ब्रज क्षेत्र है, और मथुरा में तो कृष्ण गोपियों का प्रेम प्रसंग मशहूर था, तो मैं कुछ कृष्ण गोपियों की शान में कुछ छंद पेश करना चाहता हूं, इनको भी आप देख लें कि मुरली बिहारी के सो नाचहू नचावे तोए, और मुरली बिहारी के सो नाचहू नचावे तोए, कभी तो इधर कभी उधर घुमात है। शब्द देखें आप कि मुरली बिहारी केसो नाचहू नचावे तोए, और कभी तो इधर कभी उधर घुमात है।

और बस में कियो है तो ये बड़ो दुख हो बे मोई, कि बस में कियो है तो ये बड़ो दुख हो बे मोई, नाजुक उंगलियों से पैर दबो बात है। बस में कियो है तो ये बड़ो दुख हो बे मोई, और नाजुक उंगलियों से पैर दबो बात है। तो मैं हूं तो पेवारी श्याम, जपू बस तेरो नाम, और देखो जब तो को मेरो जियो ललचात है। गोपी कहती है कृष्ण जी के लिए कि मैं हूं तो पेवारी श्याम, जपू बस तेरो नाम, और देखो जब तो को मेरो जियो ललचात है, और आ जाना हमारे पास टूटी जाए मोरी आस, कि आ जाना हमारे पास टूटी जाए मोरी आस, अपने जुगनिया को काहे तड़पात है। आ जाना हमारे पास टूटी जाए मोरी आस, अपने जुगनिया को काहे तड़पात है। और ये छवि भी देख लें आप, कृष्ण जी सामने थे लेकिन उनकी छवि बहुत प्यारी थी, और एक दिन उन्होंने जब मुकुट पहन लिया तो फिर क्या हुआ, ये भी आप देख लें कि माथे के मुकुट ने बढ़ाई और शोभा आते, कि माथे के मुकुट ने बढ़ाई और शोभा आती, सूरज के जैसी या में चमक निराली है। कि माथे के मुकुट ने बढ़ाई और शोभा आती, सूरज के जैसी या में चमक निराली है। बिजली सी दौड़ गई बंधन हूं तोड़ गई, और बिजली सी दौड़ गई बंधन हूं तोड़ गई, देखन को तो पे जब वो नजर जो डाली है। बिजली सी दौड़ गई बंधन हूं तोड़ गई, देखन को तो पे जब वो नजर जो डाली है, तो सजी हूं तिहारे लिए बनी हूं तिहारे लिए। गोपी कह रही है कि सजी हूं तिहारे लिए बनी हूं तिहारे लिए, और नाम के तिहारी मैंने बिंदिया लगा ली है। कि सजी हूं तिहारे लिए बनी हूं तिहारे लिए, और नाम के तिहारी मैंने बिंदिया लगा ली है। और लागी है मिलन प्यास कोई नहीं आस पास, कि लागी है मिलन प्यास कोई नहीं आस पास, दिल का बगीचा श्याम तेरे लिए खाली है। लागी है मिलन प्यास कोई नहीं आस पास, दिल का बगीचा श्याम तेरे लिए खाली है। और देखिएगा आप कि धरा ये महान यहां पैदा हुए रस खान, कि धरा ये महान यहां पैदा हुए रस खान, आत्मा बसी है यहां रहीम कबीर की। कि धरा ये महान यहां पैदा हुए रस खान, आत्मा बसी है यहां रहीम कबीर की। हमीद की कुर्बानी सबकी जुबानी आज, कि हमीद की कुर्बानी सबकी जुबानी आज, वतन परस्ती यहाँ पीर और फकीर की। हमीद की कुर्बानी सबकी जुबानी आज, वतन परस्ती यहाँ पीर और फकीर की। तो वादा है हमारा देश जान से है प्यारा हमें, और हम ना झुकेंगे हमें कसम जमीर की। कि वादा है हमारा देश जान से है प्यारा हमें, और हम ना झुकेंगे हमें कसम जमीर की। और है हमारी आन वान मान सम्मान सब, जमी एक इंच भी ना देंगे कश्मीर की। है हमारी आन वान मान सम्मान सब, जमी एक इंच भी ना देंगे कश्मीर की। ये छंद देशभक्ति का है, हमारी देश की तारीफ है इसमें। आइए देखिएगा आप कि भारत हमारा ऋषि मुनियों का इतिहास, और भारत हमारा ऋषि मुनियों का इतिहास, पाक तेरे पास कोई ऐसी ना नजीर है। कि भारत हमारा ऋषि मुनियों का इतिहास, और पाक तेरे पास कोई ऐसी ना नजीर है। और सैकड़ों मिसाल बेमिसाल मेरे भारत की, कि सैकड़ों मिसाल बेमिसाल मेरे भारत की, देखने को आए ताज जैसी तस्वीर है। सैकड़ों मिसाल बेमिसाल मेरे भारत की, देखने को आए ताज जैसी तस्वीर है। तो दधीच की हड्डियों से बज्र बनाए गए, और दधीच की हड्डियों से बज्र बनाए गए, तोड़ी नहीं मान मर्यादा की लकीर है। और अपना तो समझौता एक बार हो चुका है, अपना तो समझौता एक बार हो चुका है, आंख खोल देख ले उठा के तहरीर है। अपना तो समझौता एक बार हो चुका है, आंख खोल देख ले उठा के तहरीर है। और आजकल की परंपरा जो है, आजकल लोगों में जो आ जाती है थोड़ी बहुत, उसके लिए एक छोटा सा गीत एक अंतरे का है कि छप्पर से क्या महल में आए,

हाथ मिलाना बंद कर दिया, छप्पर से क्या महल में आए, हाथ मिलाना बंद कर दिया। जरा सी शोहरत मिली तुम्हें तो, जरा सी शोहरत

दिया। और अंतरे में देखें आप कि पहले तो सुख दुख की बातें आकर के बतलाते थे,

0: कर दिया। जरा सी शोहरत मिली तुम्हें तो फोन उठाना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रज़ाक अहमद से काव्य पाठ। इसी के साथ हमारा आज का साहित्यिक पत्रिका का कार्यक्रम सर्जना यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 10:31 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं ख्याल गायन राग भवानी बहार में। कलाकार हैं जसराज पंडित।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ख्याल गायन राग भवानी बहार में, कलाकार थे जसराज पंडित। आइए सुनते हैं इसी क्रम में ख्याल गायन राग बागेश्री में, कलाकार हैं शुभा तलेगांवकर।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे ख्याल गायन राग बागेश्री में कलाकार थी शुभा तलेगांवकर। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

0: nic.in. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।